0: मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: बुधवार 30 सितंबर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का।
2: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। मध्य रात्रि से रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रस्तावित 11 में से 8 उपाय लागू हो गए हैं। नए प्रावधानों से सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था और सख्त हो गई है। कई तरह के यातायात उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ा दिया गया है। ये उपाय मुख्य रूप से वाहन चलाने की शर्तों, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित हैं। एक और बदलाव, 30 अक्टूबर से यातायात जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस पहली जनवरी 2027 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था

0: को और मजबूत करने की घोषणा के बाद सड़कों पर पुलिस मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। और दागुचे स्थित एक मंदिर में कल हुए एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में एक मचान गिरने से ये हादसा हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे सामी के आपात चिकित्सा दल ने 39 वर्षीय एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और हादसे में 22 वर्षीय रविशंकर शाह भी गंभीर रूप से घायल रहे हैं। कृषि उद्योग मंत्रालय मॉरिशस में रोपे जाने वाले फलों और सब्जियों के लिए एक डिजिटल ट्रेसबिलिटी प्रणाली विकसित कर रहा है। भविष्य में उत्पादों के साथ एक QR कोड जोड़ा जाएगा जिससे कि उत्पादन संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध हो सके। और आज 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जा रहा है। अनुवाद केवल एक भाषा को के शब्दों को दूसरी भाषाओं में बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच अर्थ विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि ऊंचाइयों पर हल्के बादल छाए रहेंगे। आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 5:52 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर। पूरा बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दे। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
3: बुधवार 30 सितंबर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। सुप्रभात आप सभी को। देखते ही देखते सितंबर महीने की अंतिम तारीख तक हम पहुंच गए हैं। जी हाँ, और कल एक नया महीने का आरंभ होगा। आज एक नए दिन का आरंभ हुआ है। कहते हैं कि नया दिन जो होता है नए जीवन के समान होता है। तो जो भी आशाएँ हैं आपके, जो भी सपने हैं आपके, जो भी इच्छाएँ हैं, ईश्वर उन सभी को पूर्ण करे ऐसी कामना हम करते हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर का हाथ यदि हमारे सर पर हो तो हमें किसी और चीज़ से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए, ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम भोर की बेला इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। कुछ क्षणों में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सनातन धारा। उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर। और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो श्रोताओं, चलिए यहाँ पर आज के इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं। जिसे आप भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, जिसे आप सुनेंगे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।

नयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय पितृपक्ष और पितृश्राद्ध। महालय का प्रारंभ तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही हो जाता है। महालय का अर्थात होता है पूर्णिमा से युक्त रहता है। और महालय किन के लिए सबसे उत्तम होता है? जो श्रेष्ठ पुरुष है, ऋषिगण और विशेष करके गुरुगण, महर्षि आदि, सन्यासी आदि लोगों के लिए सबसे उत्तम तिथि होता है महालय। पूर्णिमा के समय, भाद्रपद मास के पूर्णिमा के समय श्राद्ध करना, पिंड दान करना अति उत्तम। जितने लोग अपना तिथि नहीं जानता, अपना तिथि न जानने के कारण या तो महालय के दिन आप पिंड कर सकते हैं या अमावस्या तिथि में आप लोग पिंड कर सकते हैं। इसलिए महालय का प्रारंभ होता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा। परंतु पितृपक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष गत पथ से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक रहता है, अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से जो पितृपक्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। इस पक्ष में विशेष रूप से पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि होता है। मनुष्य के लिए मुख्य तीन ऋण शास्त्र में वर्णित है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों का अर्थात अलग होता है। देव ऋण उतारना है तो पूजा पाठ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर ऋषि ऋण को उतारना है तो ज्ञानी बनना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए। पढ़ लिख करके विद्वान होने से ऋषि ऋण को हम सब लोग उतारते हैं। और पितृ ऋण पितरों के लिए तर्पण करना, पिंड दान करना और पितर को खुश करने के लिए विवाहित जीवन लेकर के पुत्र पौत्र को प्राप्त करने से पितृ ऋण उतरता है। इसलिए यज्ञ आदि द्वारा देव ऋण, स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण उतारा जाता है और पितृ ऋण श्राद्ध के द्वारा उतारा जाता है। इस ऋण का उतारने जाने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि की अभिवृद्धि के लिए अनेक यंत्र एवं प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए एक पुत्र का सबसे बड़ा पूजा अर्चना धर्म यही सिखलाता है कि जब उसके माता या पिता न रहे तो उसका श्राद्ध अति उत्तम से पिंड आदि दान करना चाहिए। उसका सबसे परम धर्म और कर्म यही होता है पुत्र के लिए कि अपने माता पिता का श्राद्ध पिंड दान अवश्य करें। श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है जो श्रद्धा से किया जाए कभी भी। इसलिए पंडित जी हमेशा यही कहते हैं, गुरु जी हमेशा यही कहते हैं, जब श्राद्ध करते हैं तो श्रद्धा से, भक्ति से, क्रोध से नहीं, अहंकार से नहीं। हम सब लोग मटेरियल लाइफ में जीते हैं, जब भी पिंड दान करते हैं तो ये नहीं, ऐसा नहीं, जो उसके मन में अच्छा लगे वो करता है, नहीं दान करना नहीं चाहता। इसलिए इन सभी चीज़ों को अगर नेट के माध्यम से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम सब लोग आधुनिकीकरण जीवन में जी रहे हैं।

तो इसलिए पितृ के लिए क्या क्या दान करना चाहिए, कैसे श्राद्ध करना चाहिए ताकि पितृ ऋण से हम सब लोग, इसलिए कभी भी आज हम सब लोग क्या देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, पंचांग देखते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं, तो हमेशा क्या देखा जाता है कि आपको दोष लगा है। कौन सा दोष लगता है? पितृ दोष। तो पितृ दोष कैसे लगा आपको? नाग दोष है, पितृ दोष है, सब प्रकार का दोष कैसे लगता है? तो जब आप अपने पितृ ऋण को नहीं चुकाते, पितरों का श्राद्ध नहीं करते, तो इसलिए आपके कुल में न कि सिर्फ रोग आता है बल्कि आपके खानदान में आपका वंशज नहीं बढ़ता, संतान प्राप्त नहीं होता। इसलिए पितर का पूजन करने से, श्राद्ध करने से, पिंड दान करने से, अन्न दान करने से, ब्रह्म भोज ब्राह्मण को भोजन करवाने से आपका कुल का उद्धार होता है, पितरों का कल्याण होता है और आपके पितर प्रसन्नचित होते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म किया जाता है। परंतु शब्द पितरों के लिए किए गए पिंडदान आदि के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वो तो मर गया, मर गया, लेकिन मरने वाला वो क्या खाते? नहीं, आत्मा परमात्मा, शरीर को आत्मा से निकल जाता है तब कहते हैं कि मृत्यु काल किसे कहते हैं? शरीर नाशवान होता है क्योंकि ये शरीर पांच तत्व का है लेकिन आत्मा मरता नहीं। इसीलिए 84 लाख योनि कहा गया, कर्म के मुताबिक उसका जन्म होता है और पुनर्जन्म किस रूप से होता है उसके कर्म के मुताबिक। इसलिए श्राद्ध में अनेक प्रकार के पिंड बताया गया है, वार्षिक पिंड भी कहा गया है, षोडशी पिंड भी कहा गया है, दशगात्र कहा गया है और 10 दिनों का जो पिंड होता है वो कहा जाता है, महापातर आता है, एकादशी पिंड होता है और जो हम लोग श्राद्ध कहते हैं, जो हम सब लोग पितृपक्ष में पिंड दान करते होते हैं, पार्थ पिंड कहा जाता है। पार्थ इसलिए क्योंकि यह हर साल में आता है, हर साल में जो पिंड हम सब लोग करते हैं इसीलिए कहा जाता है कि हर साल पितृपक्ष के समय पिंड दान करने से अनेक उत्तम फल प्राप्त होता है। और ऐसा तो शास्त्र कहा जाता है कि अभी जिस जीवन को हम लोग जीते हैं उस जीवन के आधार से आप सब लोगों को पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारे पास 4 भाई या 5 भाई है लेकिन हम लोग कॉमन फैमिली में नहीं है, पहले सभी लोग एक जगह पर रहते थे, एक घर में रहते थे तो एक ही पास में पिंड करते थे, लेकिन आज का दुनिया अलग अलग है, एक भाई यहाँ नहीं है तो एक भाई दूसरे गांव में है और एक भाई अपने घर में, कोई अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग रहने के कारण भी शास्त्र ये भी बताया जाता है कि अगर आपके भाई के पास आप जाकर के पिंड नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, अन्न नहीं निकाल सकते तो 5ों भाई का भी अधिकार है। शास्त्र में यही बताया गया कि 5ों का अधिकार है अपने अपने घर में, अपने अपने माध्यम के अनुकूल, अपने गुरु के ज्ञान के अनुकूल आप सभी लोग अपने अपने घर के कल्याण के लिए, अपने परिवार के हित के लिए पिंड दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही भाई करे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि हम मैं पिंडा नहीं करूंगा, मेरा 12 भाई कर रहा है तो हो जाएगा। नहीं, 12 भाई के यहाँ जब पिंड हो रहा है तो आपको भी वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर भाग लेना चाहिए। अगर आप करना नहीं चाहते अपने घर में तो सभी को एक जगह पर कर रहे हैं तो सभी को एक साथ मिल करके उसमें भाग लेना चाहिए, दान करना चाहिए, पिंड श्रद्धा से करनी चाहिए, तब जा करके उसका पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं तो उसने कर लिया तो मेरे को करना ज़रूरी नहीं है। नहीं, आपको भी, क्योंकि आपका भी माता पिता है, न कि सिर्फ एक ही भाई का माता पिता नहीं है बल्कि सभी का माता पिता है, तो सभी लोगों को एक साथ अगर मिल करके नहीं कर सकते तो सभी लोगों को अपने अपने घर में करना चाहिए। पिंड दान करने के लिए सबसे उत्तम चीज़ यही होता है कि आपको

याद होनी चाहिए कौन सा तिथि, जिस तिथि में मृत्यु हुआ है उस तिथि में पिंड दान करेंगे तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। जिसको उत्तम तिथि पता नहीं है तो विशेष करके अष्टमी, अष्टम्याम तिथियाम, अष्टमी के दिन या तो अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन अगर आप लोग पिंड दान करते हैं तो सभी का प्राप्त होता है। इतना सुंदर मुहूर्त होता है। ज़रूर अपने माता पिता के लिए, अपने कुल के लिए पिंड दान करें। अगर पिंड दान नहीं कर सकते हैं तो ज़रूर तर्पण अवश्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। आचार्य जी को इस कार्यक्रम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सवेरे के 6:18 यहाँ पर होने को है, बुधवार का दिन है। चलिए अभी से लेकर 6:30 तक चंद खूबसूरत गीत हम आपके लिए चलाने वाले हैं। कहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते चलते बहुत कुछ हम सीख पाते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों को हम जान पाते हैं, सही गलत के बीच हम निर्णय ले पाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे लिए क्या भला है, इन सब की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। और इन सभी अनुभवों को किस तरह से हम अपने जीवन में उतारते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, उससे समझना बहुत आवश्यक होता है। उन सभी बातों को अपने जीवन में जो है संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कब क्या पता किस अनुभव की आवश्यकता हमें आगे चलकर पड़े। क्योंकि जो हम अच्छा देख रहे हैं उससे तो हमारा भला होता ही है, यदि किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं या कोई बुराई का सामना हमें करना पड़ा है, तो वो बुराई भी अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: जी हाँ, ये जीवन पथ मेरा, पता नहीं हमारे ये जो जीवन की राहें हैं हमें कहाँ ले जाएंगी, किस दिशा में ले जाएंगी। इसलिए आने वाले हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते ही देखते सवेरे के 6:25 होने को है और इस अगले गीत के साथ भोर की बेला ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि 6:30 जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में, भोर की बेला। इस प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया, आपके प्यार भरे साथ के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत की ओर।

6:30 हैं, समय हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। मध्य रात्रि से रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रस्तावित 11 में से 8 उपाय लागू हो गए हैं। नए प्रावधानों से सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था और सख्त हो गई है। कई तरह के यातायात उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ा दिया गया है। ये उपाय मुख्य रूप से वाहन चलाने की शर्तों, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित हैं। एक और बदलाव, 30 अक्टूबर से यातायात जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस

0: 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह से लागू। सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने की घोषणा के बाद सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। मॉरिशस कमर्शियल बैंक यानी कि MCB ने 30 जून 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 20 बिलियन रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया। दागोचिया के एक मंदिर में कल एक दर्दनाक हादसे में एक स्काफोल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। और आज 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन दिवस मनाया जा रहा। अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच अर्थ, विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। और अब समाचार विस्तार से। मध्य रात्रि से रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रस्तावित 11 में से 8 उपाय लागू हो गई हैं। इसकी घोषणा कल परिवहन मंत्री उस्मान मऊमद ने की। इन नए प्रावधानों से सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था और सख्त हो गई है और कई तरह के यातायात उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ा दिया गया है। ये उपाय मुख्य रूप से वाहन चलाने की शर्तों, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित हैं। गंभीर यातायात उल्लंघनों के लिए दोषी पाए जाने वाले चालकों को अब कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाना और वाहन जब्त किया जाना शामिल हैं। कुछ मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इन नए प्रावधानों के माध्यम से अधिकारियों का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना और खतरनाक माने जाने वाले ड्राइविंग व्यवहार पर अधिक सख्ती से कार्रवाई करना है। सुनते हैं परिवहन मंत्री उस्मान मऊमद को। उर्वशी बिकारी ने उनसे बात की। विवरण विधिमा सुबनन का है।
1: कानून की धारा 123A(1) रोड रेज पर आधारित है। बहुत से लोग रास्ते पर सही व्यवहार नहीं करते हैं, वे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, यहां तक कि वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए जुर्माना 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए है। 1 साल जेल की सजा भी हो सकती है। डेंजरस ड्राइविंग में किसी की जान लेना, इसके लिए जुर्माना दुगना हुआ है। जब पुलिस किसी चालक या मोटरसाइकिल चालक को रोकती हैं और वे नहीं रुकते हैं, इसके लिए जुर्माना 25,000 रुपए और 1,00,000 रुपए के बीच है। कानून की धारा 125 में सड़कों पर रैली करना, इसके लिए जुर्माना 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए है। जहां तक गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना है तो ब्लूटूथ की समस्या को सुलझाया जा चुका है, लेकिन अगर मोबाइल फोन आपके हाथ में है तो पुलिस जुर्माना देगी। इसके लिए पेनल्टी पॉइंट्स 5 से 10 हैं। जो वाहन अपने एग्जॉस्ट पंप को मॉडिफाई करता है, इसके लिए जुर्माना 10,000 रुपए है।
0: एक और बदलाव जर लागू होगा। 30 अक्टूबर से यातायात जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। फिलहाल वाहन चालक कोरेक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी देख सकते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विवरण की जांच कर सकते हैं। ICT मंत्री अविनाश राम टोहल को अब सुनते हैं, जिनसे बात की उर्वशी बिकारी ने। विवरण विधिमा सिबोरन का।
1: जहाँ तक डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का सवाल है, ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, परंतु हम डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेस दे रहे हैं ताकि जनता किसी भी अनसुलझी बातों की पहचान कर सके। स्थापित कानून के अनुसार फोटोकॉपी को मंजूर नहीं किया जाएगा और जब पुलिस नियंत्रण कर रही है तब चालक अपना डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है। अगर किसी चालक के पास उसका अपना डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस या मोबाइल फोन नहीं है लेकिन ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसके लिए कोई जुर्माना नहीं।

0: नहीं होगा। जिन लोगों के पास अपना स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें उनके पास अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
1: कल आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान मामा द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कानून व्यवस्था और मजबूत करने की घोषणा के बाद सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय भरोसी ने दी है। उनके अनुसार पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी का उद्देश्य मुख्य रूप से नए प्रावधानों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने वाहन चालकों से भी अधिक सतर्क रहने और गाड़ी चलाते समय जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की। उनको सुनते हैं विवरण विधिमा से बोलन का।
0: नए सुधार के तहत जिन अपराधों की चर्चा की गई उसके चलते विशिष्ट नियंत्रण किए जाएंगे। अब तक 114 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं पेश आई हैं और 117 लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं। पिछले साल की तुलना में 26 अतिरिक्त जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं पेश आई और 23 अतिरिक्त लोगों की जानें गईं। हर एक जानलेवा सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा है। ये जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने से और ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने से होती हैं। वाहनों को जब्त करने का कानून भी जल्द आएगा। पुलिस हर वक्त सड़कों पर मौजूद रहेगी।
1: खबरों में आगे, मॉरिशस कमर्शियल बैंक यानी कि MCB ने 30 जून 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 20 बिलियन रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 11.3% अधिक है। बैंक का कर पूर्व लाभ 27.6 बिलियन रुपए रहा, जबकि कर के रूप में करीब 6.8 बिलियन रुपए का योगदान दिया गया। ये नेट प्रॉफिट बैंक के शेयरधारकों के हिस्से का है। और अब ये खबर, दागोचिया के एक मंदिर में कल एक दर्दनाक हादसे में एक स्काफोल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सामूहिक आपातकालीन टीम ने मौके पर 39 वर्षीय कुष्णा सिमरन, जो लॉन्ग माउंटेन के निवासी थे, को मृत घोषित किया, जबकि गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय भारतीय नागरिक रविशंकर शाह को इलाज के लिए जीतू अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों मंदिर परिसर में स्वेच्छा से रखरखाव का काम कर रहे थे। सैपिया पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों और इसका फोल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। कृषि उद्योग मंत्रालय मॉरिशस में रोपे जाने वाले फलों और सब्जियों के लिए एक डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली विकसित कर रहा है। इसके तहत भविष्य में उत्पादों के साथ एक QR कोड जोड़ा जाएगा। इसके जरिए उपभोक्ता उस उत्पाद के उत्पादक प्रमाणन संबंधी जानकारी और अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अभी विकसित किए जाने बाकी हैं। पहले चरण में उन किसानों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है जो पहले से ही अच्छी कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं, खासकर मोगी गाप प्रमाणन के माध्यम से। एग्रीकल्चरल सर्विसेज के क्रॉप एंड एग्री फूड सेक्टर के प्रभारी डॉक्टर प्रिया दत्त सुकर ने शैली निर्बन के साथ इस बारे में जानकारी साझा की। उनको सुनते हैं।
2: QR कोड को MSB का सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर सकता है और उसे ये जानकारी मिल सकती है कि किसने रोपाई की है, किस प्रांत में सब्जी कौन सी है, क्या उसे प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन प्राप्त है। तब ग्राहकों को भी आश्वासन होगा, क्योंकि ग्राहक ये जानना चाहता है कि उसने जो सब्जी खरीदी है क्या वो उपभोग के ये उपयुक्त है, कहीं कीटनाशक दवा की समस्या तो नहीं। हमारी समिति है जो देख रेख करेगी ताकि सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए एक कंसल्टेंट की भर्ती की जा सके। जैसे ही वो सॉफ्ट

0: ट्वेक तैयार कर देगा। हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। पोल्ट्री में चूहों के खिलाफ अभियान अब एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। गुरुवार 1 अक्टूबर से नगर पालिका एक व्यापक चूहा नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर रही है, जो केवल सड़कों के किनारे तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बगीचों और यहां तक कि घरों के आंगनों तक भी चलाया जाएगा। चूहों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए अधिकारियों का जोर जागरूकता फैलाने पर भी है, क्योंकि जब तक कचरे का बेहतर प्रबंधन और साफ सुथरा वातावरण सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक चूहों की समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल है। नगर पालिका के कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा चूहों को पकड़ने की तकनीक, सही चारे के चयन और चूहों को खत्म करने वाले नए उत्पादों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि भविष्य के अभियान अधिक प्रभावी बनाए जा सके। इस बारे में पोर्टवी नगर पालिका की स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा शकीना रामजान को सुनते हैं, जिनसे बात की शबनीज उजिया वाहिदाली ने। विवरण विधिमा सिबोरन का।
1: La population des rats dans de l'Arimagon li vraiment alarmante. Ban les rats
2: pérennes. मांगों गली में बहुत सारे चूहे की संख्या पाई जा रही है और स्थिति चिंताजनक है। लोगों के घरों में चूहे घुस रहे हैं और जो सबसे गंभीर है वो ये कि गाड़ियों के केबल और वायरिंग को वो खा रहे हैं। इस गुरुवार को बाग और आसपास में चूहों की संख्या को घटाने का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें नए उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। रोडेंट कंट्रोल यूनिट से मांग की जाती है कि वे नगर पालिका के अफसरों को प्रशिक्षित करें कि कैसे बे ट्रैप्स लगाए जा सकते हैं। जहां तक इस्तेमाल किया जाने वाला जहर की बात है, हम लोग एक नई किस्म के रोडेंटिसाइड को अमल में ला रहे हैं, जिसे मल्टीपल फीडिंग रैट पॉइजन कहा जाता है। चूहों के खिलाफ लड़ाई केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बाशिंदों का भी सहयोग जरूरी है।
0: कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कल श्रम मंत्री रेजा उद्दीम और स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव उचित के साथ एक बैठक की। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के लिए विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर चर्चा हुई। विदेशी श्रमिकों का पहला समूह दिसंबर में मॉरिशस पहुंचेगा। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर इन श्रमिकों के स्वागत, रहने और आवास से संबंधित निर्धारित शर्तों का पालन करें। अब यह आधिकारिक हो गया है। सेंट बार्टोलोम्यूज और रॉयल होलोवे कॉलेज अगले वर्ष से बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कॉलेजों में छात्रों की संख्या निर्धारित न्यूनतम सीमा से नीचे चली गई है। छात्रों को दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा, खासकर उनके निवास स्थान के आसपास के स्कूलों में। जहां तक स्थायी कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें मेटको के अन्य कॉलेजों, सरकारी कॉलेजों या ऐसे अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां उनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। लेकिन केवल छात्रों का स्थानांतरण ही मुद्दा नहीं है, सवाल ये भी है कि इन विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से कैसे सहायता दी जाए, खासकर उन छात्रों को जिन्हें प्राथमिक स्कूल से ही पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य इन छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना और उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकना है, क्या उन्हें नए शैक्षणिक वातावरण में बेहतर ढंग से ढलने में मदद कर सकता है? इन सवालों के जवाब मॉरिशस के समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री और शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर ओम नाथ वर्मा के साथ उनसे बात की शबनीज उजिया वाहिदाली ने। विवरण विधिमा से बोरन का।
3: Il y avait des gens qui étaient moins élèves. Et ça va être Nicolas, peut-être, je m'appelle Gaïa, c'est étudiant. Et il n'a plus beaucoup moins d'enfants avec low ability. N'importe qui l'école.
2: कुछ इलाकों में कम छात्र होते हैं और इन कॉलेजों में पर्याप्त छात्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बहुत से छात्र लो एबिलिटी के हैं। जो भी कॉलेज इन छात्रों का स्वागत करते हैं, वे फाउंडेशन या मेन स्ट्रीम में जाएंगे। उनकी काबिलियत के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूल को छात्रों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनका समर्थन करना चाहिए।

0: की लंबी अवधि में वो बेहतर कर सके।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल

संयुक्त राष्ट्र ने पेशेवर अनुवाद को देश को जोड़ने, संवाद और समझ बढ़ाने तथा विकास और शांति को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम माना है। हर भाषा अपने भीतर किसी समाज का इतिहास, संस्कृति, विचार, अनुभव और ज्ञान समेटे होती है। ऐसे में अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच अर्थ, विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की भूमिका और भी व्यापक हो जाती है, जहां संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है।

खबरों के अंत में मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि मौसम सुहाना रहेगा। ऊंचाइयों पर आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम जो है 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज सूर्योदय हुआ 5:52 पर और सूर्यास्त होगा 6:60 पर।

बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। मध्य रात्रि से रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रस्तावित 11 में से 8 उपाय लागू हो गए हैं। नए प्रावधानों से सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था और सख्त हो गई है। कई तरह के यातायात उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ा दिया गया है। ये उपाय मुख्य रूप से वाहन चलाने की शर्तों, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित हैं। एक और बदलाव, 30 अक्टूबर से यातायात जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने की घोषणा के बाद सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। मॉरिशस कमर्शियल बैंक यानी कि MCB ने 30 जून 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 20 बिलियन रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट दर्ज किया। डागोचिया में एक मंदिर में कल एक दर्दनाक हादसे में एक स्कैफोल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल। आज 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जा रहा। अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच अर्थ विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। 6:50 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है यूसुफ के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार। Your news on MBC Play.

घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6:54 यहाँ पर होने को है। थोड़ी देर में हम बढ़ने वाले हैं शोक समाचार की ओर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।

शुक समाचार सुनिए। शुमे माशिन पारमा काटोन में 74 साल के 74 ईयर ओल्ड श्री रमेश बखूरी, श्री रमेश बखूरी जो रमेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान शुमे माशिन पारमा काटोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पारमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। प्लाटो रोड गुडलैंड में आजागीर दुकान के सामने 89 साल की 89 ईयर ओल्ड श्रीमती धर्मावती राम बनोही, श्रीमती धर्मावती राम बनोही पैदाइशी नाम बिहारी जो धर्मावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे श्री मनोज राम बनोही के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआगोज गुडलैंड्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। श्रीमती डिस्पेंसियर पिटर गाफ्रे में 85 साल के 85 ईयर ओल्ड श्री लक्षणलाल अधीन, श्री लक्षणलाल अधीन जो विनोद से जाने जाते थे और पहले बस जर्मनी के ड्राइवर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री रुद्रदेव अधीन के मकान श्रीमती डिस्पेंसियर पिटर गाफ्रे से उठाकर दाह संस्कार के लिए डागुची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लिखले जुगली क्यूपिप में 93 साल की 93 ईयर ओल्ड श्रीमती बल्कि बीबी रहीमा स्वरूप पैदाइशी नाम जुमिया जो रहीमा से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे इनकी बेटी नाजमा मतुला के मकान लिखलेजो गली क्यूपिप से निकाल कर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रिस्तान ले जा

जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रॉकेट रोड गांव में 74 साल की 74-year-old श्रीदेवानंद हरी, श्रीदेवानंद हरी जो रोहित से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉकेट रोड गांव से उठाकर दाह संस्कार के लिए दाहुची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लाखी रोज आलमा में 49 साल के 49-year-old श्री सिमरन कृष्णा, श्री सिमरन कृष्णा जो श्याम से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे के भाई शानदार कृष्णा के मकान लाखी रोज आलमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की स्मशान भूमि ले जाया जाएगा, ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। फाउंटेन रोड रोशनवा में 79 साल के 79-year-old श्री ज्ञानदत्त पगवा, श्री ज्ञानदत्त पगवा जो प्रेमदत्त से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान फाउंटेन रोड रोशनवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बेलमो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 321 एवेन्यू ओल्यू काट्रोबोन में 56 साल के 56-year-old श्री जवाहरलाल जगेसर जो संजय से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं गुरुवार को दिन के 1 बजे इनके मकान नंबर 321 एवेन्यू ओलिए काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1 PM। एवेन्यू लक्ष्मण पालमा रोड काठोबोन में 58 साल के 58-year-old श्री सूर्य राव नाराजी, श्री सूर्य राव नाराजी जो पुल से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान अविनी लक्ष्मण पालमा रोड काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगार्ड बैतो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड बुनाकर में 73 साल की 73-year-old श्रीमती सत्यावादी मोरी जो पैदाइश नाम सेवाचियाँ जो शेला से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके बेटे गनाडा आजागेन मोगी के मकान मिशन क्रॉस रोड बुनाकई से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुनाकई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9। खेतुलेन सें जुलियन विलाज में 76 साल की 76-year-old श्रीमती सुभावती एम राज पैदाइशी नाम जिनारायण जो सुभावती से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे के बेटे संजीव कुमार सिंह एमराज के मकान खेतुलेन सें जुलियन विलास से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन का दिमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सचुकुलन रोड मिशन क्रॉस रोड लाल माटी में 101 साल की 101-year-old श्रीमती पिचाई मर्डन पैदाइशी नाम कौपेन जो आका पाक्यों से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके भतीजे सदायन अनाथा के मकान सचुकुलन रोड मिशन क्रॉस रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोबुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। पालमा जंक्शन बासें रोड काठोबोन में 74 साल के 74-year-old श्री पतिदेव प्रसिद्ध जो रमेश से जाने जाते थे और पहले समाज सुरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल गुरुवार को दिन के 10 बजे इनके मकान पालमा जंक्शन बासें रोड काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। और लात

लातापी, बल्कि दुदुलेन लातापी बुनाकय में 50 साल की 50-year-old श्रीमती आशा गंगादोस, श्रीमती आशा गंगादोस पैदाइशी नाम गुंडोरी, जो आशा से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके पति श्री पृथ्वीराज गंगादोस के मकान दुदुलेन लातापी बुनाकय से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुनाकय की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7:04 होने को है। आज है बुधवार 30 सितंबर। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। मुताबलॉश के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है मुताबलॉश के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक विलाज मुताबलॉश, शिवाला रोड, लाफोज लेन, ओल्ड रेलवे ट्रैक, विदेशी लेन, पेचीपाके रोड, रॉयल रोड मुताबलॉश, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 1 अक्टूबर को दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीजम मिल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, सीजम मिल के खासकर रॉयल रोड सीजम मिल, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 1 अक्टूबर को कल गुरुवार 1 अक्टूबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी दो जरूरी विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
2: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए नेशंस लीग में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की दूसरी जीत। इंग्लैंड के बाद इस बार लाहोगा ने क्रोएशिया को 4-1 से हराया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये स्पेन का पहला होम मैच था। लामिन यमाल का डबल रहा, मार्क पुबिल और निको विलियम्स भी स्कोर कर पाए। पिछले 40 मैचों में अभी तक स्पेन की टीम को कोई नहीं हरा पाया है। इंग्लैंड की जीत हुई 2-0 से चेक रिपब्लिक के खिलाफ। एंटोनी गोर्डन और हैरी केन का 1-1 गोल। मैच में ऑनल को खेलने का मौका दिया गया, उसी के क्रॉस पर गोल।

बोडन ने स्कोर किया। आज वैसे अन्य मैचों में फिनलैंड और बेलारूस के बीच मैच ड्रॉ 0-0, स्कॉटलैंड की धुलाई हुई, स्विट्जरलैंड ने उसे 3-0 से हराया, स्लोवेनिया 2 नॉर्थ मैसिडोनिया 0, सैन मारिनो 0 अल्बेनिया 3, मोल्डोवा 1 फाओ आइलैंड्स 1, स्लोवेकिया 2 कजाकिस्तान 1, बुल्गारिया 0 एस्टोनिया 0, लुक्जमबर्ग 0 आइसलैंड 3। और कुछ फ्रेंडली मैच भी खेले गए थे, ऑस्ट्रेलिया को हराया ब्राजील ने 4-2 से, वैंडरसन राफिना गुमारेज और विनिसियस जूनियर का एक एक गोल, फिर रशिया ने ईरान को 2-0 से हराया। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में भी कल काफ़ी मैच खेले गए, मोरक्को ने लेसोथो को 2-0 से हराया, फिर गाबों 0 निजेरा 2, इजिप्ट की जीत 5-0 से सूडान के खिलाफ, गाना 2 गाम्बिया 4, सोमालिया 0 आइवरी कोस्ट 2, बेने की जीत 2-1 से मोरिटानिया के खिलाफ, कोमोरो आइलैंड्स की जीत 1-0 से नामीबिया पर, कोंगो 1 कमरून 1 युगांडा 1 लीबिया 1। ग्रुप आई में बुरुंडी 2 अल्जीरिया 2 जाम्बिया 2 टोगो 0, ग्रुप जे में इथियोपिया 0 सेनेगल 1 मोजाम्बिक 4 सूडान 1, ग्रुप के में केप वर्दे 1 रुआंडा 2 लिबेरिया 0 माली 1, और ग्रुप एल में मादागास्कर का ड्रॉ मैच 1-1 तंजानिया के खिलाफ, गिनिया बिसाओ 3 नाइजीरिया 0। मैनचेस्टर सिटी सागा पर नई नई बातें सामने आ रही हैं, शाम कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसगाइज्ड सीक्रेट फंडिंग प्रिय प्रीमियर लीग फाइनेंशियल रूल्स के खिलाफ हैं। जानबूझकर रेवेन्यू क्लब की आमदनी को बढ़ाया गया ताकि खर्च से ज्यादा न हो, यहां 830 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की डील हुई थी। ट्रांसफर न्यूज हमेशा की तरह बिना पैसा खर्च किए खिलाड़ियों को साइन करने की लत लग गई है रियल मैड्रिड को। इस बार रियल मैड्रिड वैन डाइक को साइन करना चाहता है जब अगले साल वो फ्री एजेंट हो जाएगा। कुनाते और अर्नोल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एशियन गेम्स की क्रिकेट टूर्नामेंट में बिना कोई मैच खेले टीम इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुए, एक भी क्वार्टर फाइनल नहीं खेला गया, सब चौपट बारिश के कारण। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा, दूसरा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। इधर वनडे मैच में आज टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये दूसरा वनडे मैच होगा। बैडमिंटन में अफ्रीकन अंडर 19 चैंपियनशिप में मॉरिशस की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई, सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने हमारे जवानों को हराया, और क्लब एम श्रीलंका 2 फ्रेंडली मैच निर्धारित हैं, ये 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को खेले जाएंगे। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: बुधवार 30 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:10, रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी प्यारे श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चलिए यहाँ पर एक बार फिर हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर 9 बजे तक सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में आपका साथ हम देने वाले हैं। सवेरे की एक नई शुरुआत हो गई है। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा ही होता है, और नया दिन अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लेकर आता है। नया दिन सिर्फ एक दिन के रूप में नहीं होता है, इसके साथ कितनी सारी खुशियाँ छुपी होती है, कितनी इच्छाएं हमारी छुपी होती है। हम सोचते हैं ना कि कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, आने वाले दिनों में हम ऐसा चाहते हैं या हम अपने जीवन से वैसा चाहते हैं। क्या पता ये कल वही हो, क्या पता आज वो दिन हो जो आपके सभी सपनों को पूरा कर देगा, आपके सभी इंतज़ार को वो समाप्त कर देगा। अगर आपको किसी खास मौके का इंतज़ार था या किसी खास

0: खास वजह को आप तलाश रहे थे, क्या पता आज ही का वो दिन है जहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए, आपके सभी इच्छाएं पूर्ण हो ऐसी कामना हम करते हैं। और सुप्रभात एक बार फिर से आप सभी को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर सुबह का नजराना प्रोग्राम है, खूबसूरत गाने तराने हमेशा की तरह आपके लिए आज भी हम चुनकर लाए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: दुख वेदना ही मनुष्य जीवन में कठोर तपस्या का रूप धारण कर लेती हैं। यह तपस्या जिसकी सार्थक होती है, उसकी आत्मा तपाए हुए सोने के समान निर्मल, निष्कलुष और उज्ज्वल हो जाती है।

चलिए इन सभी गानों को सुनकर एक अलग ही जो है हम जगह पर जमानों पहुंच जाते हैं, एक हमारी जो मनस्थिति है वो अपने आप बदल जाती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह का विचार हमारे मन में होता है, कहीं ना कहीं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अगर खुश रहेंगे तो खुशी के और भी अनुभव मिलेंगे, और अगर दुख से निकलना ही नहीं चाहेंगे तो फिर सुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो चलिए अब बारी है आपको बताने की, क्या है रेडियो पर आज कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। और अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, 7:40 से आपके डेडिकेशंस को हम शामिल करेंगे। आपके मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा की तरह हमें मिल रहे हैं। 8 आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज, खेल खेले हम। 8:50 पर हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे किरण जानकी से, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9 आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद आप आज की चर्चा इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। 10 के समाचारों के बाद हम एक बार फिर आप सबका साथ देंगे भक्ति धारा इस कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी से। 11 होगा समाचार, उसके बाद आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा सैयदा की पेशकश में। 12 तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सौंदर्य लाहिरी वंदना से। 12:30 मराठी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी प्रीति। 1 आप तमिल भाषा में प्रोग्राम सुन पाएंगे आरसी की प्रस्तुति में। 2:15 से आप सुन पाएंगे गुजराती कार्यक्रम अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 के समाचारों के बाद आपकी पसंद ये कार्यक्रम जारी रहेगा, चलेगा 4 तक। सपेर के 4 आप शीरीष की प्रस्तुति में सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम विविधा। 5 फारी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेतीबाड़ी नामक कार्यक्रम। 5:15 से अंताक्षरी इस प्रोग्राम में आप सबका मनोरंजन करेंगे।

रोशन और उषा। 6 बजे होगा पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड से। 7 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे कलेवानी से। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी कृषालिनी। 7:50 पर नितिन बापू की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम गीत गंगा। रात के 8:10 पर रोशनी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9 से 11 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। और 11 से 12 बजे के बीच गिनीशा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को। और 12 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की।

चलिए, अलबेला फिल्म का ये तराना हमें पता है, बहुत सारे हमारे श्रोताओं का फेवरेट गाना है। अलबेला ये जो फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, लता जी चितलकर और साथियों की आवाज़ों में इस गाने को अभी आप सुन रहे थे। कुछ गाने जो है कितनी सदियों पहले जो है बने थे, आज भी जब इन्हें सुनते हैं तो मानो एक अलग ही ताजगी, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही बहार महसूस होती है ना। किस तरह ये गाने पल में हमारे मूड को बदल देते हैं, पल में हमारे मनस्थिति को बदल देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मुसीबत आ जाए, अपने आप को उस मुसीबत में घेरे रखने के बजाय कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी देता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। कुछ ऐसा देखें, कुछ ऐसा सुने या ऐसे लोगों के पास

बैठे या ऐसे लोगों से बात करें जो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं, जो आपको शांति का एहसास दिलाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते ही देखते सवेरे के 7:31 हो रहे हैं और आपका प्यार भरा साथ हमें यूँ ही मिलता रहता है और आज भी मिल रहा है। सितंबर महीने की 30 तारीख आज, यानी कि ये महीना लगभग ख़त्म होने को चला। देखते देखते 2026 का ये जो नवा महीना है ये समाप्त होने को चला। कल यानी कि गुरुवार को 1 अक्टूबर में हम कदम रखेंगे और बस देखते ही देखते पलक झपकते ही ये साल भी बीत जाएगा। और बस जैसे महीने समाप्त होने को आते हैं ना, मन में ये ख्याल आता है कि पूरे साल में हमने ऐसा क्या है जो किया, क्या है जो हासिल किया, किस लक्ष्य को प्राप्त किया, या क्या है जो ऐसा हम करना चाहते थे और अभी भी नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसा है जो अभी भी नहीं कर पाए हैं तो काफ़ी समय है इस बारे में सोचने का। और सोचिए और अपने हर एक सपने को पूरा ज़रूर कीजिए।

जी हाँ, खूबसूरत सा तराना यशुदास और हेमलता जी की आवाज़ों में, तू जो मेरे सुर से सुर मिला ले। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ज़िंदगी के सुर से सुर मिलाकर चलना पड़ता है, तभी जाकर ज़िंदगी जो है सही पटरी पर चलती है ना। और चलिए, इस गाने को बहुत लोगों ने पसंद किया, और साथ ही थोड़ी देर पहले हमने जो गाना चलाया था अलबेला फिल्म का, भोली सूरत दिल के खोटे, वो गाना भी हमारे बहुत सारे सुनने वालों को अच्छा लगा, कह रहे कि काफ़ी दिनों बाद ये गाना हमें सुनने का मौका मिला, ये हमारे समय का गाना है। बिल्कुल, हम जानते हैं, हम हमारे श्रोताओं की पसंद को अच्छे से पहचानते हैं, और हमारी कोशिश होती ही है हमेशा कि ऐसे गाने तराने, ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लाए जो आपको अच्छे लगे। और चले, यहाँ से डेडिकेशंस का सिलसिला शुरू होता है। तो जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्तों में किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई ख़ास मौका है, तो चलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से। आपकी खुशियों में यहाँ पर हम भी शामिल हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि खुशियाँ जो है बांटने से बढ़ती है, और दुख जो है बांटने से कम होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस खुशी को हम बांटते जाए। और यहाँ पर चलिए, रोजबेल से साकुन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि गाने बड़े अच्छे हैं, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, और ऐसे में अगला गाना ईवा और शेन के नाम और सभी जीवन फैमिली के नाम जो रोजबेल से हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज आया है हमारी प्यारी सुमी जी, ओके ओके, चलिए यहाँ पर बहुत बहुत इस सुंदर मैसेज के लिए माला जी धन्यवाद, आपका भी हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, कनाडा से आपके बेटे किशन सुमारू, उनका जन्मदिन है। ओके, आपके बेटे किशन को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपकी ओर से, उनके पापा सूर्यदेव की ओर से, साथ में उनकी पत्नी है डायन, और साथ में है मिलन, शाइलान, और उनके भाई है उत्तम है, सुयेश है, शिरवान है, और सभी सुमारू परिवारों की ओर से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ। साथ ही सविता पदारत जो नुवेल दिकुवियत रहती है, 60 वर्ष की हो रही है, आपको भी जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सविता जी माला जी की ओर से। और चलिए यहाँ पर एक और मैसेज आया है यहाँ पर, नमस्कार जी, हंसते रहे आप हज़ारों के बीच जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच। अरे वाह, बहुत सुंदर सा मैसेज है ये, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी इस सुंदर मैसेज के लिए। आपकी ओर से गाना जाएगा करुणा, अमृता, कविता, आपके सभी दोस्तों के नाम, आपके पूरे परिवार के लिए। प्रणाम, ये प्रणाम आया है हमें सूरज शर्मा सजादा की ओर से, जो ट्रियोली से हमेशा हमारा साथ देते हैं। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम, आपको भी शुभ दिन हमारी ओर से, और इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए धन्यवाद। सुमी जी, ये गाना पाला, बहुत मौसम सुहाना है। ओके, आपको शायद ये जो गाना हमने चलाया था आपको अच्छा लगा। लक्ष्मी जी, कभी कभार कुछ मैसेजेस ऐसे लिखे होते हैं ना कि समझ में नहीं आता है क्या लिख रहे हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ मौसम भी बड़ा सुहाना है, बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जो परीक्षा दे रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और लक्ष्मी जी, आपके भी इस प्यार भरे मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू से आप हमेशा काम पर जाने के पहले हमेशा हमारे साथ जुड़ती है, एक मैसेज तो भेजती ही है, और कभी कभार मौका मिलता है तो आपका फ़ोन भी हमें मिलता है, तो धन्यवाद इसके लिए। शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, गानों को एंजॉय कर रही है, प्रोग्राम को

कर रही है, साथ में उनके पति है, उनकी बेटियां है और उनके सभी दोस्तों के नाम, और कहा कि एक खूबसूरत सा गाना हमारे लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी। श्यामा रघुनंदन जी, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हुई, हमें भी आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। अलबेला फिल्म का तराना आपको बहुत अच्छा लगा, भोली सूरत दिल के खोटे, आपने कहा कि आपके पिता का ये पसंदीदा गाना था, शायद आपके पिता आज होते तो 100 वर्ष से ऊपर होती उनकी उम्र। तो चलिए, भले अपने चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहती हैं। तो श्यामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला गाना सभी रघुनंदन परिवारों के नाम हम करते हैं। तो अपनी डेडिकेशंस ऐसे ही हम तक पहुंचाते रहिए 4028085 पर, साथ ही आपके मैसेजेस 5251700 पर।

चलिए अभी के लिए तो आपके संदेश ही आपके पैगाम हमें यहाँ पर मिल रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर चलिए डेडिकेशंस का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ लीला जी वाशेरी से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि सवेरे से जो गानों की बरसात हो रही है उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी हमारे सुनने वालों को शुभ दिन वो कह रही है। आपको भी शुभ दिन हम कहेंगे। लीला जी आप हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ती हैं और इतने प्यार से साथ देती हैं। शिवरानी जी ग्रामपुआ से हमारा साथ दे रही है और आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए और हमेशा ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। और यहाँ पर डियर सिस्टर सुनीता जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और यहाँ पर जो है सभी बच्चों को जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको जो है वो शुभकामनाएँ दे रहे हैं, माता सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे ऐसी कामना कर रहे हैं। मैसेज आया है लक्ष्मण सिंह गोविंद जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लक्ष्मण आपके इस सुंदर मैसेज के लिए। गाना जाएगा सभी सिंह गोविंद परिवार के नाम जो क्लेमफो वाकवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके प्यार भरे साथ के लिए धन्यवाद। यहाँ पर यह मैसेज आया है देवी जी की ओर से, कह रही कि यशुदास जी का जो गाना चला था वो उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। हमारे सभी सुनने वालों को शुभ दिन कह रही है और शुभ दिन आपको भी देवी जी।

जी हाँ, चलिए, आपकी भी बातें हमारे मन को छू जाती है, हमारे दिल को छू जाती है। और यहाँ पर स्वस्ति जी का ट्रबोन से साथ दे रही है। और स्वस्ति जी, अगला खूबसूरत सा तराना आपके नाम हम करते हैं, आप भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। जी हाँ, मौसम काफ़ी बदल रहा है, कभी ठंड तो कभी रह रहकर बरसात होती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसे बदलते मौसम में आप सभी अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। और यहाँ पर भतीजे नवीन का जन्मदिन है। नवीन जी, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आपकी मौसी सुनीता की ओर से, मौसी अमृता की ओर से, साथ में रेशमा है, विक्रम है। और यहाँ पर जन्मदिन की हार्दिक बधाई आई है नवीन जी आपको पूरे परिवार की ओर से। तो चलिए, इसी के साथ डेडिकेशंस का ये जो सिलसिला है यहीं पर समाप्त होता है। इतने प्यार से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी सुनने वाले ये जन्मदिन मना रहे हैं, कोई ख़ास मौका है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी खुशियों में हम भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। अब बारी है इस अगले तराने की। इसी के साथ हम बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। तो आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद।

फजर के 8 बजल बा पेश बा अब भोजपुरी समाचार। सबको के नमस्ते। अब हमने के सड़क पर जीरो टॉलरेंस के नीति लागू बाते। मध्य रात्रि से नवा रोड ट्रैफिक एक्ट के 8 गो प्रमुख प्रावधान आधिकारिक रूप से लागू हो गल बा। अधिकारी बोले हवन जा के कर उद्देश्य भारी जुर्माना के जरिए सड़क दुर्घटना और मौत की बरहल संख्या पर रोक लगाए के है। गाड़ी चलाते समय आक्रामक व्यवहार यानी कि रोड रेज अब एगो गंभीर अपराध मानल जाए। एकर खातिर 5 लाख रुपया तक के जुर्माना और 1 बरिस तक के जेल की सजा हो सकी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाइला पर भी कड़ी कार्रवाई हो, एकर खातिर 10 लाख रुपया तक के जुर्माना हो सकी और दोबारा अपराध करला पर 5 बरिस तक के जेल की सजा भी हो सकी। लापरवाही से गाड़ी चलाए के कारण घातक दुर्घटना खातिर जिम्मेदार चालक के खिलाफ भी कड़ा कार्रवाई हो। पहला हला दोषी होला पर 5 बरिस तक के जेल की सजा और दोबारा अपराध करला पर 8 बरिस तक के कठोर कारावास की सजा और 8 लाख रुपये के जुर्माना लगावल जा सकी। शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलेला पर अब गाड़ी के तुरंत रोक के अधिकतम 6 महीना तक खातिर जब्त करल जा सकी। एकर घोषणा काल परिवहन मंत्री उस्मान महमूद करलन। एगो और बदलाव जल्द ही लागू हुई। 30 अक्टूबर से

यातायात जुर्माना के भुगतान ऑनलाइन करल जा सकी। एकर अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह से लागू हो जाए। फिलहाल गाड़ी चालक के कोविक प्लेटफॉर्म के उपयोग करके अपन जानकारी देख सकें जा और अपन ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विवरण के जांच कर सकें जा। और भी काल आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान माओमे द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनी व्यवस्था के और मजबूत करे की घोषणा के बाद रास्ता पर पुलिस के मौजूदगी भी बढ़ावल जाए। ये जानकारी एएसपी विजय भरोसी दिलन। उनकर अनुसार पुलिस के बरहल मौजूदगी के उद्देश्य मुख्य रूप से नवा प्रावधान के बेहतर पालन सुनिश्चित करे के और इस सड़क उपयोगकर्ता के सुरक्षा के मजबूत करे के हा। वो गाड़ी चालक से भी जस्ती सतर्क रहे के और गाड़ी चलाते बजी जिम्मेदार व्यवहार अपनावे के अपील करलन। समाचार में आगे मॉरिशस कमर्शियल बैंक एमसीबी 30 जून 2026 के समाप्त होहुला वित्तीय बरिस में 20 बिलियन रुपया से जस्ती के शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट दर्ज कर लेबा। यानी कि गल बरिस की तुलना में 11.3% जस्ती। बैंक के कर पूर्व लाभ 27.6 बिलियन रुपया रहल बा जबकि कर के रूप में करीब 6.8 बिलियन रुपया के योगदान दिले बाते। डागुचिया के गोवंदिर में काल एगो हादसा में इसका फोल्डिंग गिरला से एगो व्यक्ति की मौत हो गल जबकि एगो दूसर भारतीय मूल के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गल। दुना मंदिर परिसर में स्वेच्छा से रख रखाव के काम करत रहलन जा। सैपिया पुलिस हादसा के परिस्थिति और इसका फोल्डिंग के सुरक्षा व्यवस्था के जांच शुरू कर दे ले बाते। कृषि उद्योग मंत्रालय मॉरिशस में रोपल जाय होला फल और सब्जी खातिर एगो डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणाली विकसित करता। एकर तहत भविष्य में उत्पाद संगे एगो क्यूआर कोड जोड़ल जाए। एकर जरिए उपभोक्ता वो उत्पाद के उत्पादक प्रमाणन संबंधी जानकारी और अपनावल जाय होला कृषि पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करे सकी। एकर खातिर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अभी विकसित करल जाता। पहला चरण में वो किसान के एकर में शामिल करे के लक्ष्य बाते जिनके अक्ते से ही निमन कृषि पद्धति के अपनावता खासकर मोहिगा प्रमाणन के माध्यम से। पोल्ट्री में चूहा के खिलाफ अभियान अब गुनावा स्तर पर पहुंच गल बा। बीफे 1 अक्टूबर से नगर पालिका एगो व्यापक चूहा नियंत्रण अभियान की शुरुआत करता जिन खाली सड़क किनारा तक सीमित नहीं रही बल्कि बगीचा और यहां तक कि घर के आंगन तक भी चलावल जाए। चूहा के पूरी तरह से छुटकारा पाए खातिर अधिकारी जोर जागरूकता फैलाई पर देवता कहे कि जब तक कचरा के बेहतर प्रबंधन और साफ सुथरा वातावरण सुनिश्चित नहीं करल जाए तब तक चूहा के समस्या के स्थायी समाधान मुश्किल रहे। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल काल श्रम मंत्री रेजा उत्तिम और स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव उचित संगे गो बैठक लगेलन। एकर मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र खातिर विदेशी श्रमिक के भर्ती पर चर्चा करल गल। विदेशी कामगार के पहला समूह दिसंबर में मॉरिशस पहुंची। सरकार सुनिश्चित करे खोजता कि नियोक्ता श्रमिक के स्वागत रहे के और आवास से संबंधित निर्धारित शर्त के पालन करियन छ। आज 30 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनावल जात बा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 24 मई 2017 के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित कर ले रहल। संयुक्त राष्ट्र पेशेवर अनुवाद के देशन के जोड़े के संवाद और समझ बढ़ाए के और विकास और शांति के मजबूत करे होला महत्वपूर्ण माध्यम मानेला। कहे कि हर भाषा अपन भीतर कोनो समाज के इतिहास संस्कृति विचार अनुभव और ज्ञान समेटे रहेला। ऐसे में अनुवाद खाली गो भाषा के शब्द के दूसर भाषा में बदले की प्रक्रिया नहीं बल्कि अलग अलग भाषाई समुदाय के बीच अर्थ विचार
और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम है। और फ्रांस में

0: नगर के हाई स्कूल में होल छात्र प्रदर्शन के दौरान 400 से जस्ती लोगन के हिरासत में लेवल गल जिकर में अधिकांश नाबालिग रहल। जानकारी फ्रांस के गृह मंत्री दिलक। प्रदर्शन पेरिस में शुरू होल रहल और कई दिन ले छात्र अपन स्कूल के प्रवेश द्वार के अवरुद्ध कर ले रहलन जा। छात्र के मुख्य मांग कक्षा में जस्ती भीड़ और इस शिक्षक के कमी जैसन मुद्दा शामिल है। अधिकारी के अनुसार मंगर के प्रदर्शन बजे कम से कम 10 गो शिक्षक, कई गो छात्र और 48 पुलिसकर्मी तथा दूसरे सुरक्षा अधिकारी घायल हो लवन स। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रदर्शन के असर कम से कम 400 स्कूल पर पड़ता। एकरे संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भयल। एकर प्रसारण यूसुफ के सहयोग से करल जा। बातें आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: शुक समाचार सुना जाए। इलाके रोज आलमा में 49 बरिस के कहानियों के श्री सिमरन कृष्णा, श्री सिमरन कृष्णा जिनकरा लोग शाम से जानत रहें जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के डूबे जीन कर भाई शानदार कृष्णा के मकान लाहौर रोज आलमा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलमा के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। शिमाशीन पालमा कथबोन में 74 बरिस के श्वासन कातोजों के श्री रमेश बकोरी जिनकरा लोग रमेश से जानित रहें जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर मकान शिमाशीन पालमा कथबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। डुडुलेन लातापी बुनाकय में 50 बरिस के सैकौतों के श्रीमती आशा गंगा दूस पैदाशी नाम गंडोरी जिनकरा लोग आशा से जानत रहें जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन की 1 बजे करपति श्री पृथ्वीराज गंगादूस के मकान डुडुलेन लातापी बुनाकय से उठा के दाह संस्कार खातिर बुनाकय के शमशान भूमि ले जाल जाए। पालमा जंक्शन बासें रोड कथोबोन में 74 बरिस के श्वसन कातोजों के श्री पतिदेव परसिद जिनकरा लोग रमेश से जानत रहें जा और जिनके अक्टे सिक्योरिटी सोशियल के कर्मचारी रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी काल दिन के 10 बजे इनकर मकान पालमा जंक्शन बासें रोड कथबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। सचुकुलन रोड मिशन क्रॉस रोड दालमाटी में 101 बरिस के सौ एनों के श्रीमती पिचाई मर्डन पैदाशी नाम कौपेन जिनकरा लोग आका पाकियों से जानत रहें जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सांझ के 3 बजे इनकर भतीजा सदायन अनाथा के मकान साचुकुलन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोबुआ के शमशान भूमि ले जाल जाए। खेतुलेन सेंट जूलियन विलाज में 76 बरिस के श्वासन से जाके श्रीमती सुभावती एमराज पैदाइशी नाम जीना रायन जिनकरा लोग सुभावती से जानत रहें जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन की 11 बजे इनकर बेटा संजीव कुमार सिंह एमराज के मकान खेतुलेन सेंट जूलियन विलाज से उठा के दाह संस्कार खातिर मेजिन कौडिमास्क के शमशान भूमि ले जाल जाए। मिशन क्रॉस रोड बुनाकय में 73 बरिस के श्वासन थेजों के श्रीमती सत्यावादी मोगी पैदाइश नाम सेवासियों जिनकरा लोग शेला से जानत रहें जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर बेटा गनाडा आजागैन मोगी के मकान मिशन क्रॉस रोड लालमाटी बुनाकय से उठा के दाह संस्कार खातिर बुनाकय के ही शमशान

0: स्मशान भूमि ले जाल जाए। अविनी लक्ष्मण पालमा रोड काथोबोन में 58 बरिस के सैकौचवीतों के श्री सूर्य राव नाराजी, श्री सूर्य राव नाराजी जिनका लोग पुल से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान अविनी लक्ष्मण पालमा रोड काथोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर कोडेगाउट के कोडेगाउट बेहतो के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 321 अविनी ओलिये काथोबोन में 56 बरिस के सेकंड सीजों के श्री जवाहरलाल जगेसर, श्री जवाहरलाल जगेसर जिनका लोग संजय से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी काल बीफे के दिन के 1 बजे इनकर मकान नंबर 321 अविनी ओलिये काथोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। फाउंटेन रोड ओशनवा में 79 बरिस के स्वासंजीदेवों के श्री ज्ञानदत्त पागुआ, श्री ज्ञानदत्त पागुआ जिनका लोग प्रेम दत्त से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान फाउंटेन गली ओशनवा से उठा के दाह संस्कार खातिर बेलमो के शमशान भूमि ले जाल जाए। लिकलेजो गली क्यूपिप में 93 बरिस के 93 के बीबी रहीमा स्वरूप, बीबी रहीमा स्वरूप पैदाइश नाम जुमिया जिनका लोग रहीमा से जानत रलंजा इंतकाल कर गलहमन। जनाजा आज दिन के 11 बजे इनकर मकान, इनकर बेटी के मकान नाजमा मटुला के मकान लिकलेजो गली क्यूपिप से निकाल के दफनाए खातिर बिगाहा के कब्रिस्तान ले जाल जाए। डिस्पेंसरी गली पेटी गाफरे में 85 बरिस के 86 के श्री लक्षणलाल अधीन, श्री लक्षणलाल अधीन जिनका लोग विनोद से जाने रलंजा जिनके 20 जर्मिनी के पुराना चालक रहलन की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा श्री रुद्रदेव अधीन के मकान शमे डिस्पेंसरी पेटी गाफरे से उठा के दाह संस्कार खातिर डाउची के शमशान भूमि ले जाल जाए। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में आजागिया दुकान के सामने 89 बरिस के काथोवैनेवों के श्रीमती धर्मावती राम बनुही, श्रीमती धर्मावती राम बनुही पैदाइश नाम बिहारी जिनका लोग धर्मावती से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी जनबाते आज दिन के 2 बज के आधा इनकर मकान, इनकर बेटा के मकान श्री मनोज राम बनोहे के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआरोज गुडलैंड के शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉकेट रोड घावे में 74 बरिस के श्वासन कातुजों के श्री देवानंद हरी, श्री देवानंद हरी जिनका लोग रोहित से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर मकान गाकेत रोड घावे से उठा के दाह संस्कार खातिर दागोची के शमशान भूमि ले जाल जाए। दशोक में डूबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के दिली हमदर्दी बातें।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जी हाँ, सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स में इनका नाम गिना जाता है। अपने करियर के दौरान लगभग इन्होंने 42 फिल्में बनाई हैं, 4 दशक से भी ज़्यादा फैले अपने करियर में। और जो है इन्होंने ज़्यादातर ऐसी फिल्में बनाई हैं जो पारिवारिक जीवन पर आधारित है, जो सोशल इश्यूज पर आधारित है। और इनकी जो फिल्में ऐसी होती हैं जो लोग देखकर जो है ना एक आम व्यक्ति अपने जीवन से रिलेट कर पाता है, उसके बारे में मतलब कि जोड़ पाता है फिल्मों की कहानियों को, ऐसा लगता है कि मानो ये हमारी ही ज़िंदगी की कहानी है। और चलिए हमारी जो है बात पूरी भी नहीं और यहाँ पर आपके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं, तो उस बॉलीवुड के फिल्म मेकर का नाम बताएं जिनकी आज जन्मतिथि है। चलिए देखते हैं कौन है यहाँ पर लाइन पर। तो 4028085 पर आपके फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। हेलो नमस्कार। हेलो, चलिए कोई है लाइन पर लेकिन बात नहीं कर रहे। कभी कभार बहुत से श्रोता फ़ोन लगाकर बस छोड़ देते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और फिर यहाँ पर आपका लाइन लगता है तो फिर आपसे बात नहीं हो पाती। चलिए कोई बात नहीं, अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो, 4028085 है नंबर हमारा। हेलो, कौन है लाइन पर? हेलो हेलो नमस्ते।
1: हम सुनीत अदब
0: आफिस जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप ऑन एयर हैं, बताइए क्या है जवाब।
1: हाय दिव्या भारती।
0: नहीं, ये जवाब सही नहीं है। चलिए, आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आफिस जी। शुभ दिन आपको हम कहेंगे। हमने कहा कि आज एक बॉलीवुड के एक पॉपुलर फिल्म मेकर का जन्मदिन है, जो फिल्म के डायरेक्टर है, एडिटर है, राइटर है। तो यहाँ पर एक जवाब हमें मिला है दीपा की ओर से, जो कॉन्टरेल से जवाब आया है। इन्होंने लिखा है दीप्ति भटनागर। नहीं, ये जवाब भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार। हेलो, 4028085 है नंबर हमारा। चलिए अब दोबारा कोशिश कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर इनके बारे में तब तक कुछ और बातें जोड़ते हैं। इन्हें प्यार से जो है लोग ऋषिदा के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक छोटा सा हिंट आपको मिल गया है यहाँ पर। हेलो नमस्ते। हेलो हेलो जी, कौन है लाइन पर?
2: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन है?
2: हेलो,
0: हाँ बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। कौन है?
2: शायद मेरा।

0: जवाब मुकेश जी।
1: ओके, चलिए आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन बोल रही है?
0: जी मैं विद्या ओकुली से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी, आपने भाग लिया इसके लिए, शुभ दिन आपको कहते हैं। चलिए बात करते हैं इनकी, जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर डायरेक्टर की थी मुसाफिर इस फिल्म से, जो 1957 में रिलीज़ हुई थी। इनकी दूसरी फिल्म थी अनाड़ी, जो 1959 में आई थी। बतौर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर, हम यहाँ एक्टर के बारे में नहीं पूछ रहे, और उसके अलावा कई अन्य बेहतरीन फिल्में इन्होंने बनाई है, जैसे कि अनुराधा, छाया, असली नकली, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम, गुड्डी, आनंद, बावर्ची, अभिमान। अब शायद आपको पता चलेगा कि हम नाम क्या ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, गुड्डी, आनंद, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, चुपके चुपके, ये फिल्में भी इनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से रही है, जो 70 के दशक में आई थी। वहीं पर मिली इस फिल्म को कौन भूल सकता है, वहीं गोलमाल, खूबसूरत, बेमिसाल जैसी फिल्में। यहाँ पर चले एक जवाब हमें मिला है देवी जी की ओर से, जो लिखती है कि शायद सुमी जी ऋषिकेश मुखर्जी है। चलिए आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है यहाँ पर। देवी जी, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो, चलिए यहाँ पर हेलो नमस्कार, कौन है लाइन पर? 4028085 है नंबर हमारा। चलिए यहाँ पर अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
2: हेलो
1: जी नमस्कार। Hello? आपका स्वागत है, कौन है?
2: हेलो
1: जी, आप हमें सुन नहीं पा रही
2: हैं?
1: आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए शायद लग रहा है कि शायद इनके फ़ोन में कोई तो ख़राबी है। अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते। हेलो, चलिए यहाँ पर एक और जवाब हमें मिला है शोभा जी की ओर से, वाकवा से। वो लिखती है कि मेरा जवाब है ऋषिकेश मुखर्जी। एक और कॉल को लेते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्ते। हेलो, 4028085 है नंबर हमारा। आज बॉलीवुड के एक पॉपुलर फिल्म मेकर का जन्मदिन है। हेलो नमस्ते, चलिए देखते हैं कौन है यहाँ पर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। लग रहा है कि लाइन में शायद थोड़ी सी खराबी है, लेकिन चलिए आपके मैसेजेस के ज़रिए हमें जवाब मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी ने जो जवाब दिया वो सही नहीं था, लेकिन देवी जी ने और वाकवा से जो है शोभा जी ने जो जवाब दिया वो सही है। बिल्कुल ऋषिकेश मुखर्जी का आज जन्मदिन है। ऋषिकेश मुखर्जी की हम बात करें तो इन्होंने अपने करियर के दौरान काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और अच्छी अच्छी फिल्मों की बात करें तो यहाँ पर कुछ फिल्मों के नाम हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। और यहाँ पर इनके करियर की बात करें तो इन्हें करियर अपनी फिल्मों के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। नौकरी इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर की ओर से अवार्ड मिला था। फिर अनोखी रात, आनंद इस फिल्म के लिए, फिर खूबसूरत इस फिल्म के लिए, और उसके अलावा जो है इन्होंने कई नेशनल अवार्ड भी जीते हैं कई फिल्मों के लिए जो इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि सत्यकाम, आनंद, आशीर्वाद जैसी फिल्में। तो चलिए, ऋषिकेश मुखर्जी की आज जन्मतिथि है। आज ऐसे तो ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनको हम याद कर रहे हैं इनके फिल्मों के ज़रिए, इनके गानों के ज़रिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, और इस गाने के साथ आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इस क्विज को समाप्त करते हैं।

चलिए, हंसना और मुस्कुराना अच्छी बात होती है, सेहत कहते हैं हंसना और मुस्कुराना अच्छी बात होती है क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि मुस्कुराते रहने से आधी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं, और अगर कोई आपको मुस्कुराते हुए देख लेता है तो सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। चलिए, अभी के लिए 8:41 हो चुके हैं। आज है 30 सितंबर और आज एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जाता है। श्रोताओं, आज जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। हर वर्ष 30 सितंबर को पूरी दुनिया में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, दुनिया भर में 30 सितंबर को ये जो मनाने वाला दिन है, ये उन लोगों को भी सम्मान देने का कार्य करता है जो ट्रांसलेटर के रूप में दुनिया भर में कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं अभी के समय में इस डिजिटल युग में बहुत से लोग अलग अलग पेशों से जुड़ते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं काम करने के लिए।

अलग अलग संस्कृतियों के साथ जुड़कर काम करते हैं तो भाषा और संस्कृति के बीच संवाद को बढ़ावा देना तथा ट्रांसलेटर्स को, भाषा पेशेवर को जो इसमें अपना योगदान देते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। तो चलिए भाषा की बात करें या संस्कृति की बात करें, हम हमेशा जो है उत्साहित रहते हैं अन्य भाषाओं के बारे में जानने के लिए, अन्य कल्चर्स के बारे में जानने के लिए, अन्य संस्कृति के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को जब हम जान पाते हैं तभी ना हम अपने ज्ञान को बढ़ा पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ गानों का ये सिलसिला हम आगे ले जाते हैं।

0: और चले इसी के साथ समय हुआ है हम बड़े हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की ओर और किरण जानकी जी से आइए इसे सुनते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, आज हमने लाबुदोने शक्कर प्रतिष्ठान पर बात करब जा जो बहुत ही बरिस आगे ऐसे नहीं रहल जैसे कि आप आज देखबा। आप आज हमने के ई जगह के इतिहास के बारे में हमने से सुनबा जहाँ बहुत कोई आज यहाँ पर विजिटर के रूप में आवेलन सा ई जगह के संरक्षण कैसे होल बा, आगे ई जो ढाका रहल वो कैसे रहल, ई शक्कर कोठी कैसे रहल, ई हमने आज एकर पर चर्चा करब जा। हाँ, हमने एगो बहुत ही सैबोलिक बहुत ही प्रतीकात्मक जगह पर बात करत है जा और एकर कहानी इंडेंचर सिस्टम यानी शर्तबंद मजदूरी के समय से जुड़ल बा, बल्कि ओकर से आगे भी यहाँ पर जो निर्माण कार्य होल बा, ई शक्कर कोठी ई चीनी मिल के निर्माण यहाँ पर गुलाम बनावल लोग कर ले रहलन सा। सब चीनी कोठी के इतिहास के अनुसार हर एगो जोन कौसुक्रिय रहल हुआ पर एगो ढाका रहल, एगो बस्ती जहाँ पर मजदूर लोग और साथ में उ लोग के प्रशासक उ लोग के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग संगे रहत रहलन सा, संगे तो नहीं लेकिन भिरी भिरी रहत रहलन सा। और यहाँ पर लाबुदोने में भी ऐसे ही एगो गाँव रहल, गाँव भी अलग अलग किस्म के रहल, गाँव लापाई जो 1950 में जरगल आग लग के और पीछे में रहल काफिया ब्लॉक और ई आज भी बा लेकिन एकर इस्तेमाल अब दूसरा उद्देश्य से हुआ था। कंपनी जो आज ई जगह के संचालन करेला वो अपन ज़रूरत खातिर एक बदल दे ले बा, एक ट्रांसफॉर्मे कर ले बा और आज यहाँ कितने दुकान बा यहाँ पर एक नाम देवल कर बा कौचे दे सेया। सेया कहे कि यहाँ ऑंचुरियम के एगो सेया एगो बाग रहल, ओकर से आगे यहाँ भारतीय मजदूर लोग के एगो बस्ती रहल, बहुत ही सुनियोजित बस्ती गांव की तरह। कितने ऐसा दस्तावेज और तस्वीर बा और एगो इंस्पेक्टर के रिपोर्ट भी बा 1847 के इमिग्रेंट लोग पर हुआ के

0: जोन रिपोर्ट बा उमें ई बोलल गल बा कि लाबुदने के जोन कां रहल वो बहुत अच्छा से व्यवस्थित रहल, साफ सुथरा एगो अस्पताल भी रहल मजदूर लोग के स्वास्थ्य खातिर। कितने मुसाफिर लोग जितना वयाजा लोग हवन सा जे लोग इधर से उधर घूमे लन सा उ लोग के भी गवाही बा तिमोयाज बा। जैसे सीमोने बोलेला कि 1970 में हिया ई जगह पर उ कौ में आल रहल और हिया एगो हाथी भी रहल, अपन साथी लोग संगे ई हाथी हैजे पर रहे हिया पर चले। और 1935 में हाथी के मॉरिशस में आना गल, एके आने के मुख्य उद्देश्य रहल सवारी के रूप में ट्रांसपो के रूप में एकर इस्तेमाल करे के। लेकिन फिर प्रशासक लोग सोचलन सा कि हाथी लोग के ट्रांसपो के तरह इस्तेमाल करला थोड़ा मुश्किल रही, तो उ लोग यहाँ पर ई जानवर के बस एगो सौत दथाक्सियों बस एगो मनोरंजन के केंद्र के तरह छोड़ दिलन सा। हाथी यहाँ पर घूमल करे और आज भी हुआ जाइबा ई लाबुदोने के शकर कोठी में ई सेया में ते देखबा हुआ पर जोन चिमनी बा ओकर ऊपर हाथी के एगो आकार के एगो मूर्ति बा। तो यही संकेत करेला कि मॉरिशस में यहाँ पर पहला हाथी यहाँ पर आनल गल रहल। और ई जोन कौ बा हर एगो ढाका के तरह यहाँ पर एगो कोविल बा। आगे के समय में हर एगो ढाका में कोविल या कालीमाई रहे, तो यहाँ के भी कोविल के ई सेया के निकट ओके शामिल करा कर बा। ई कोविल में सब कोई के आस्था बा, यहाँ के प्रशासक लोग के भी उ लोग सा कब्जा बोले ई जोन कोविल के जमीन बा ओके दान में दे देले हवन जा। और आज भी यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के साथ कोविल में जब पूजा पाठ होवेला कोनो बड़ा बड़ा प्रार्थना होवेला कावड़ी चलेला तो यहाँ के जोन प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिया लोग हवन जा कौ सुक्रिये दुमैन सुक्रिये के मालिक लोग फिर उकर मैनेजर लोग आज भी उ लोग यहाँ पर ई सब रीति रिवाज ई पूजा पाठ में भाग लेवे लन जा और एके बहुत माने लन जा। तो ई रहल दुमैन लाबुदोने पर आज के एगो छोटा कार्यक्रम। आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलब जा, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।
2: और चलिए हमारे धरोहर इस कार्यक्रम के लिए किरण जानकी जी को हम धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ समय हुआ है हम बढ़े अगले भोजपुरी गीत की ओर। और इस भोजपुरी गीत के साथ आज का हमारा सुबह का नजराना प्रोग्राम भी समाप्त हो जाएगा। सवेरे के 6 बजे से बड़े ही प्यार से आपने हमारा साथ दिया। आज का दिन आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं 9 बजे के समाचार की ओर और उसके बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस कार्यक्रम को रत्ना की प्रस्तुति में। तो हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है करुणा जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते करुणा जी।
1: नमस्कार रत्ना, सभी को नमस्कार। अब हमारी सड़कों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो चुकी है। मध्य रात्रि से नए रोड ट्रैफिक एक्ट के 8 प्रमुख प्रावधान आधिकारिक रूप से लागू हुए हैं। उद्देश्य है भारी जुर्मानों के जरिए सड़क दुर्घटनाओं और मौतों के बढ़ती संख्या पर रोक लगाना। वाहन चलाते समय आक्रामक व्यवहार रोड रेज अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और दोबारा अपराध करने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घातक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालकों के खिलाफ भी सजा कड़ी की जाएगी। पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर 8 साल तक की कठोर कारावास की सजा और 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने पर अब वाहन को तुरंत रोककर अधिकतम 6 महीने तक के लिए जब्त भी किया जा सकता है। इसकी घोषणा जो है कल परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने की। एक और बदलाव जल्द ही लागू होगा। 30 अक्टूबर से यातायात जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस आगामी पहली जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। फिलहाल वाहन चालक कोएक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी देख सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच भी कर सकते हैं। कल आंतरिक परिवहन मंत्री द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कानून व्यवस्था को और

मजबूत करने की घोषणा के बाद सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी एएसपी विजय भरोसी ने दी। उनके अनुसार पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी का उद्देश्य मुख्य रूप से नए प्रावधानों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने चालकों से भी अधिक सतर्क रहने की मांग की है। मॉरिशस कमर्शियल बैंक यानी कि एमसीबी ने 30 जून 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 20 बिलियन रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.3% अधिक है। डागुचेक एक मंदिर में कल एक हादसे में इसका फोल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि भारतीय मूल के एक दूसरे व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। दोनों मंदिर परिसर में स्वेच्छा से रखरखाव का काम कर रहे थे। सैंपियर पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों और इसका फोल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच शुरू कर दी है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल श्रम मंत्री रेजा उत्तम और स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव बुच्चित के साथ एक बैठक लगाई। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के लिए विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर चर्चा की गई। विदेशी श्रमिकों का पहला समूह दिसंबर में मॉरिशस पहुंचेगा। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर इन श्रमिकों के स्वागत, रहने और आवास से संबंधित निर्धारित शर्तों का पालन करें। आज 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने पेशेवर अनुवाद को देशों को जोड़ने, संवाद और समझ बढ़ाने तथा विकास और शांति को मजबूत करने वाला माध्यम माना है। और फ्रांस में मंगलवार को हाई स्कूलों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें अधिकांश नाबालिग थे। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर मैं हूँ रत्ना, उपस्थित हो चुकी हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। 30 सितंबर बुधवार का दिन, और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल कुछ ऐसी बातों को लेकर हम बात करेंगे जो स्वास्थ्य को लगकर है। और जैसे कि हम जानते हैं, आजकल आए दिन भूलने की बीमारी कुछ इस कदर बढ़ चुकी है, और ये जाते जाते कहीं ना कहीं हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन में डाल रहा है। आज दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पर, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने मनाया। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट SSRNH हॉस्पिटल के डॉक्टर उदन ऋत्विज जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बिल्कुल जानेंगे वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के अवसर पर, पहले तो हम ये बताइए कि ये कब मनाया जाता है।
2: तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव है लोग इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना। क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम लोग मरीज को देखते हैं, ज़्यादा समय वो लोग एडवांस स्टेज में पहुँच चुके होते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पब्लिक को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इस बीमारी का जो है सेवरल स्टेजेस होता है, 7 स्टेजेस होता है, और इस बीमारी को कैसे, इसका रोकथाम, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना इस इंटरनेशनल अल्जाइमर्स डे का मकसद है।
1: तो ये पहली बार कब मनाया गया था डॉक्टर जी?
2: ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। इंटरनेशनल अल्जाइमर्स डे एसोसिएशन ने मनाया था 1994 में
1: जी।
2: लेकिन इसका शुरुआत 1984 में हुआ था। ये हर साल पूरे सितंबर महीने में मनाया जाता था। तो फिर जब अल्जाइमर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का जो 10 साल का सेलिब्रेशन हुआ था, फिर उन लोगों ने 1994 में पहली बार 21 सितंबर को इंटरनेशनल अल्जाइमर्स डे को घोषित किया था।
1: और डॉक्टर जी, आप बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है इस वक्त विश्व भर का?
2: जो स्टैटिस्टिक्स को अगर देखेंगे तो बहुत ही अलार्मिंग है। अभी इस समय 57 मिलियन पीपल इस बीमारी से पीड़ित है
1: वर्ल्ड ओवर में,
2: वर्ल्ड वाइड। और फिर हर साल 10 मिलियन नए लोग इस बीमारी से पीड़ित होती है। और फिर हर 3 सेकंड में एक आदमी डिमेंशिया से पीड़ित होता है। तो ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग है, और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक 82 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे, और 2050 तक 152 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे। तो ये फिगर्स बहुत ही अलार्मिंग हैं, और इसके प्रति रोकथाम किया जा सकता है, इसके रिस्क फैक्टर्स को पहचाना जा सकता है। तो इसलिए इस मंथ को, पूरे होल मंथ को अल्जाइमर्स अवेयरनेस मंथ मानती है, और मैक्सिमम लोगों तक ये सब जानकारी पहुंचाती है।
1: तो डॉक्टर जी, जब हम रिसर्च कर रहे थे इन सारे सवालों के बारे में, तो हमें एक जैसे रंग, इसके लिए कोई खास रंग भी निर्धारित किया गया है?
2: जी हाँ, इसमें पर्पल रंग निर्धारित किया गया है। तो इसमें पर्पल का मतलब है ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन। ब्लू का मतलब है कॉमनेस, स्टिलनेस, और रेड का मतलब है एक्टिवनेस। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इससे पर्पल कलर मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमें कंस्टेंटली इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है। एक बार अगर किसी को ये बीमारी हो गया है
1: तो वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल,
2: प्रोग्रेस होता जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन डिले कर सकते हैं। तो इसलिए ये पर्पल कलर चुना गया है, ताकि हम इस पर एक्टिवली काम करें, उस मरीज को कंस्टेंटली सपोर्ट दिया जाए। तो इसलिए ये पर्पल कलर चुना गया है। और फिर पर्पल कलर क्यों, क्योंकि

0: पर कलर को डिग्निटी के साथ एसोसिएट किया गया है, रिस्पेक्ट डिग्निटी. तो जो लोग अल्जाइमर्स से पीड़ित है उन लोगों को रिस्पेक्ट करना, उन लोगों को उनका डिग्निटी देना, ये हम लोगों को बराबर देना चाहिए. और लोगों को सपोर्ट करना, ये सब कंस्टेंटली होना चाहिए. क्योंकि कभी कभी जब किसी को अल्जाइमर्स होता है तो कभी कभी ये लोगों को ये थोड़ा फनी दिखता है, क्योंकि वो भूल रहा है, किसी को नहीं पहचान रहा है,
1: तो उसका मजाक उड़ाया जाता है. जैसे
0: कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि वो लोग भूल रहे हैं लेकिन उन लोगों का इमोशन प्रिजर्व है. तो ये मजाक उन लोगों के लिए ये एम्बरासिंग हो सकता है, और ये उन लोगों का अल्जाइमर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको
1: बढ़ा सकता है.
0: वो लोग स्ट्रेस में आएंगे और ये अल्जाइमर्स और तेज़ी से बढ़ेगा. तो ये नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. बल्कि अगर किसी को डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो उसका मदद करना चाहिए, उसको कुछ हिंट देना चाहिए कि ये ऐसा हुआ है.
1: और अगर करना चाहिए उनके.
0: और अगर उसको याद नहीं आ रहा है तो हमको दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, या हम खुद उसको ये जवाब दे सकती है. लेकिन हम अगर वेट करेंगे कि कब वो ये जवाब देगा या देगी, तो तब तक वो एम्बरास होता रहेगा और वो स्ट्रगल करती रहेगी, और ये उसकी
1: हेल्थ के लिए ठीक
0: नहीं है.
1: बिल्कुल. तो डॉक्टर जी, पहले तो हमारे श्रोताओं को ये ज़रूर बताएं कि अल्जाइमर रोग होता क्या है.
0: अल्जाइमर रोग ये दिमाग का एक बीमारी है. इसमें दिमाग में कम से कम 10 बिलियन न्यूरोन्स होता है. तो अल्जाइमर्स में इसमें प्लैक्स डिपोजिट होता है, बीटा अमाइलॉइड प्लैक्स. न्यूरोन्स के बीच में बीटा अमाइलॉइड प्लैक्स डिपोजिट होता है, और न्यूरॉन के अंडर में न्यूरोफिब्रिलेट एंगल्स डिपोजिट होता है. तो ये ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्पेयर करता है. तो सबसे शुरुआत में ये हाइपोकैम्पस को अफेक्ट करता है, जो मेमोरी को कंट्रोल करता है. तो इसलिए अल्जाइमर्स डिजीज़ में सबसे पहला लक्षण जो देखा जाता है ये है याददाश्त का प्रॉब्लम. लोग भूलने लगते हैं, ठीक है. फिर जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है, ये जो प्लैक्स होता है, ये जो बीटा अमाइलॉइड प्लैक्स होता है, ये दिमाग में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है. फिर वो अन्य भागों को प्रभावित करता है. फिर याददाश्त के अलावा आप देख सकते हैं कि इन लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रहा है. फिर अंतिम स्टेज में वो लोग बेड रिडन हो जाते हैं, लेकिन अंतिम स्टेज तक पहुँचने तक बीच बीच में और अन्य सिम्टम्स होता है, जैसे कि वो लोग पैरानॉइड भी हो सकते हैं, उन लोगों को डिल्यूजनल आइडियाज भी हो सकता है, हैलुसिनेशन भी हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकता है, उन लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है, वो लोग अग्रेसिव भी हो सकती है. तो ये सब देखने को मिलता है. और अगर इन मरीजों को अल्जाइमर्स की बीमारी के अलावा और कोई कोमोर्बिड मेडिकल कंडीशन है तो ये इस बीमारी को और गंभीर बना देता है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि बहुत लोग जो अल्जाइमर्स बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को या तो स्ट्रोक हुआ है, या वो हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या डायबिटीज, या ओबेसिटी, या हाइपरटेंशन, या वो लोग अल्कोहल का सेवन करती है. तो जब ये सब साथ में आता है तो ये इस बीमारी को एकदम गंभीर बना देता है. और अगर आदमी अल्जाइमर्स से सफ़र कर रहा है और उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिलियल सपोर्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये इस बीमारी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है.
1: बिल्कुल. तो डॉक्टर जी, कई बार जैसे आप बता रहे हैं कि ये खासकर दिमाग के हिस्से को ज़्यादा प्रभावित करता है, और जैसे जैसे कोई भी अगर आपके शरीर में, जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का कोई प्रॉब्लम है, तो ये समस्या को और भी एक्सेलरेट कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक बना सकता है.
0: तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, हार्ट डिजीज, lack of physical activity, cigarette smoking, drug का सेवन करना, तो ये सब अल्जाइमर्स की रिस्क फैक्टर्स में माना जाता है, जो कि मॉडिफाइबल है.
1: ओके.
0: क्योंकि अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल नहीं है, और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल है. तो डायबिटीज अगर है, हाइपरटेंशन अगर है, तो ये इलाज से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है. तो अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये अल्जाइमर्स के रिस्क को और बढ़ा
1: सकता है. डॉक्टर जी, तो यहाँ पर हम कई बार डिमेंशिया का भी प्रयोग करते हैं, डिमेंशिया शब्द का. तो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स में क्या अंतर है?
0: जी हाँ, तो डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि डिमेंशिया ये भूलने का सिम्टम्स है, तो इसमें

0: अन्य प्रकार की बीमारी है, इसमें से अल्जाइमर एक प्रकार का बीमारी है जो सब जो मोस्ट कॉमन है. इसमें 70-80% केसेस ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर डिमेंशिया होता है. फिर दूसरे प्रकार की डिमेंशिया होता है वास्कुलर डिमेंशिया, अगर किसी को लकवा हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, उन लोगों को भी भूलने का समस्या हो सकता है. तो वास्कुलर डिमेंशिया नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है. फिर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, फिर डिमेंशिया ऑफ लिवी बॉडीज होता है, फिर हंटिंगटन्स डिमेंशिया, फिर डिमेंशिया एसोसिएटेड विद अल्कोहल यूज़, फिर ऐसे अलग अलग प्रकार का डिमेंशिया होता है. तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है डिमेंशिया. फिर इसके अंडर में अलग अलग प्रकार का डिमेंशिया होता है, और सबसे फ्रीक्वेंट वाला है अल्जाइमर्स डिजीज.
1: अच्छा.
0: तो इसको क्यों पहचानना चाहिए डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि इसका इलाज डिफरेंट रहता है. कुछ डिमेंशिया का केसेस हैं जो रिवर्सिबल होती है.
1: अच्छा.
0: जैसे कि किसी को विटामिन B1 या B9 या B12 का डिफिशेंसी हो तो ये इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो ये रिवर्सिबल है. तो मान लीजिए अगर किसी को हाइपोथायरायडिज्म भी हो तो ये भी डिमेंशिया के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट हो सकता है. किसी को न्यूरोसिफिलिस है, किसी को HIV है, तो ये सब डिमेंशिया के सिम्टम्स अल्जाइमर के सिम्टम्स दे सकती है. तो इसलिए हम लोगों को एक इनडेप्थ एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री टेकिंग ये सब करना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये किस
1: ट्रीटमेंट
0: प्रकार का डिमेंशिया है, ताकि उस आदमी को सही इलाज
1: तरह का इलाज मिल सके. यानी ये समझ में आ रहा है कि हर डिमेंशिया या हर अल्जाइमर का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत निरीक्षण किया जाता है और इसके बाद ही ट्रीटमेंट को शुरू किया जाता है. तो डॉक्टर जी, पहले पहले तो डिमेंशिया के लक्षण क्या है, सिम्टम्स कैसे पता चले कि एक इंसान को डिमेंशिया हो रहा है?
0: तो सबसे पहले इसमें भूलने का समस्या होता है. तो आदमी भूल जाता है कि उसने उसने चाबी कहाँ पर रखा. कभी कभी वो लोग सुपरमार्केट जाते हैं, फिर वो लोग भूल जाते हैं कि गाड़ी कहाँ पर पार्क किया. फिर कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई दवा लेना है, दवा लिया या नहीं लिया. तो ऐसे छोटी छोटी बातें वो लोग शुरू में भूलने लगती है, लेकिन ज़्यादा समय पर वो लोग ये जो भूलने का समस्या है इसको नज़रअंदाज कर देती है, इस पर अटेंशन नहीं देती है. तो ये प्रोग्रेस होता जाता है.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग कब आते हैं अस्पताल, जब मरीज़ एग्रेसिव होने लगता है, मरीज़ नहीं सो रहा है, मरीज़ का पूरा बिहेवियर जो है चेंज हो गया है, तब वो एडवांस स्टेज में आती है. तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको भूलने का समस्या हो रहा है तो आप शुरू से ही साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, अपना इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ताकि इसका प्रोग्रेशन जो है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बताया है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ये प्रोग्रेसिव है और इरिवर्सिबल है. अगर इसको शुरू से ही इसको इसका
1: सही समय पर
0: जो मेडिकेशन शुरू करना चाहिए वो शुरू नहीं हुआ, तो ये बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस हो जाएगा. इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे दवाएँ देते हैं, ऐसी थेरापी करती है जो इस बीमारी के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देती है. लेकिन अगर आदमी जो जिसको अल्जाइमर हुआ है वो बिना कोई ट्रीटमेंट की है, तो उसका जो अल्जाइमर्स है वो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है, और ये एक फैटल बीमारी है.
1: तो डॉक्टर जी, जैसे मान लीजिए 30-35 या 40 उम्र के जो लोग होते हैं, जैसे ज़्यादातर उस उम्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दैनिक तौर पर हम भूल जाते हैं, तो क्या ये भी डिमेंशिया का लक्षण हो सकता है?
0: जी हाँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत मरीज आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर मैं भूल रहा हूँ, क्या मुझको अल्जाइमर हो रहा है. लेकिन अल्जाइमर जो है ये नॉर्मली 60-65 ईयर्स के बाद शुरू होता है, और मैक्सिमम समय जब ये इसका ऑनसेट अर्ली होता है, तो उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. जो लोग जैसे कि एक जीन है अपोलिपोप्रोटीन E4 है, जिन लोगों में ये जीन पाया जाता है, उन लोगों में ये अल्जाइमर्स का रिस्क होने में ज़्यादा रहता है. और फिर जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम है, वो लोग भी, उन लोगों को भी अल्जाइमर्स होने का चांसेस कम उम्र में रहता है. लेकिन जो हम लोग देखते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, जो लोग 30

0: 35 साल की हैं, 40 साल की हैं, वो लोग जो कंप्लेन करती हैं कि वो लोग भूल रही है, तो ये मैक्सिमम समय में ये अल्जाइमर्स नहीं है ये, क्योंकि आजकल के दौर पर लोग बहुत ही तनाव लेती है, स्ट्रेस लेती है काम में, जैसे कि बहुत लोग मल्टीटास्किंग करती है,
1: जी
0: वो लोग सेवरल वर्क्स कर रहे हैं एक ही समय पर, तो वो एक काम कर रही हैं, ये काम पूरा नहीं हुआ, वो लोग दूसरा काम शुरू कर देती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर घर का भी देखभाल करना है, तो वो लोग जो है किसी एक चीज़ पर वो लोग ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो वो जो है दिमाग में अब्सॉर्ब नहीं होता है, तो वो चीज़ जो दिमाग में अब्सॉर्ब ही नहीं हुआ है, तो वो एक सिमांटिक मेमोरी की तरह जल्दी से निकल
1: वैनिश हो
0: जाएगा।
1: जाता है।
0: तो अगर लोग लोग जो है अपनी दिनचर्या जो है इसको बैलेंस रखे, किसी एक चीज़ पर फोकस रहे, तो भूलने का चांसेस जो है वो कम रहेगा। तो जब कोई किसी काम कर रहा है, अगर वो फोकस कर कर इस पर ध्यान दे, पूरा दिमाग लगाकर, तो भूलने का चांसेस जो है वो कम रहता
1: कम
0: है।
1: रहता है।
0: लेकिन अगर फोकस नहीं है, वो ऊपर ऊपर कर रहा है, तो उसमें भूलने का ये जो चांसेस हैं ज़्यादा रहता है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, मॉरिशस में कॉमन कारण कौन से बताए गए हैं? जैसे ज़्यादातर किस कारण की वजह से लोगों को डिमेंशिया हो रहा है?
0: तो डिमेंशिया एक मल्टीफैक्टोरियल, इसका कारण मल्टीफैक्टोरियल है। तो सबसे पहला जो है एज है, जो इरिवर्सिबल है, एज के साथ दिमाग में न्यूरो डिजनरेशन होता है, तो एज एक रिस्क फैक्टर है। फिर जैसे हम लोगों ने बताया है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है, ये सब फैक्टर जो है इरिवर्सिबल है। और फिर अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अल्जाइमर है, तो यहाँ पर भी अल्जाइमर होने का चांस ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि इसको होगा ही होगा, चांसेस
1: चांसेस ज्यादा
0: ज़्यादा
1: है।
0: रहता है। लेकिन अगर सही प्रिकॉशन लेने से, सही लाइफस्टाइल से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या इसको डिले किया जा सकता है। और फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि अल्कोहल कंसम्पशन, सिगरेट पीना, नशे का सेवन करना, या फिर अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ओबेसिटी, इशेमिक हार्ट डिजीज़, अगर ये सब हैं, तो इसको सही से इसका फॉलोअप करना चाहिए, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए, तो अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो
1: कम हो
0: जाएगा।
1: सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व अल्जाइमर दिवस पर, जो 21 सितंबर को मनाया गया। और बेशक आज हमारे साथ डॉक्टर उदन जुड़े हुए हैं, जो कि एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है SSRNH हॉस्पिटल के। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं। और हमारे श्रोताओं को ये भी याद दिला दें, पुनः इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। टेक्निक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूसुफ, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा, और हमारे साथ बनी हुई है शीतल लोबिन एज अ प्रोड्यूसर। तो बिल्कुल आज हमारे साथ जुड़े रहें, अभी थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी को याद दिला दें, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे या अल्जाइमर को लेकर है, डिमेंशिया को लेकर है, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा है जो जिसके बारे में आप जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हैं, या किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, तो बेशक आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं 402-8085 पर। एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर, एक ऐसी बीमारी जो विश्व भर में कई सारे लोगों को बड़ी उम्र होते ही होना शुरू हो जाता है। पर जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि आजकल देखा गया है कि ये जो आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसीलिए ये कार्यक्रम जिससे कि हम लोगों को इस बारे में जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, और किस प्रकार से अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट किया जा सकता है, क्या देखभाल की जा सकती है, किस तरह से हमें हमारे घर में, अगर हमारे परिवार में किसी को ये समस्या हो रही है तो इसका क्या इलाज है, किस तरह से हमें इसको देखना है, किस तरह से संभाल लेनी है, इस पर आज बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल चलिए डॉक्टर जी से बात करते हैं। डॉक्टर उदन आज हमारे साथ हैं जो कि एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, और जानते हैं कि डॉक्टर जी, अल्जाइमर जो है, क्या इसका इलाज संभव है या फिर केवल देखभाल ही एक इलाज हो सकता है?
2: अल्जाइमर्स का कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स अल्जाइमर से जुड़े हैं उसका इलाज हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है,

0: अगर किस जो कोई उदास हो रहा है या कोई इरिटेबल हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है उसको, या किसी को डिल्यूजनल आइडियाज आ रहा है, किसी को हैलुसिनेशन हो रहा है, तो इन सब सिम्टम्स का इलाज दिया जा सकता है. लेकिन आज सच अल्जाइमर्स का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है. हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और फिर मरीज को सपोर्ट करते हैं, उनके केयर गिवर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग अल्जाइमर्स से प्रभावित हैं उन लोगों का देखभाल करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट पर्सनल असिस्टेंस देना पड़ता है. और बहुत केसेस में केयर गिवर को भी बर्नआउट हो जाता है, तो केयर गिवर को भी सपोर्ट देना चाहिए.
1: यानी उनको भी काउंसलिंग दी जाती है, किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है कि उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए. ओके, तो जैसे डॉक्टर जी अभी आप बता रहे हो डिल्यूजनल आइडियाज आते हैं, तो इसका क्या मतलब है?
0: डिल्यूजनल आइडियाज मतलब उन लोगों को शक होता है, जैसे कि अगर किसी को अल्जाइमर्स डिजीज है तो उन लोगों को शक हो सकता है कि नेबर जो है, पड़ोसी जो है, उसका सामान चुराने आ रहा है, या वो किसी को अपने उसके किसी रिश्तेदार को ये हार्म करने आ रहा है, या कोई उसका प्रॉपर्टी चुराने आ रहा है, या उसको लगता है किसी ने उसके खाने में पॉइजन मिला दिया है, तो उसको शक की बीमारी होता है. तो जब उसको शक की बीमारी होता है तो उस समय वो अग्रेसिव भी हो सकता है. तो बहुत समय केसेस में देखते हैं कि मरीज लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, पुलिस को भी बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग चाकू ये सब निकालने लगता है. तो कभी कभी घर में बच्चे सब रहता है, तो जो सराउंडिंग लोग होते हैं उन लोगों का सिक्योरिटी जो है थोड़ा उस पर असर पड़ जाता है. तो इन सिम्टम्स को दवा के माध्यम से उन लोगों को काम किया जा सकता है.
1: तो डॉक्टर जी कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को मतलब भूलने की बीमारी, जैसे हम कहते हैं कि आए दिन, अब फॉर एग्जांपल हम लोग ही लेडीज लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्रिज के पास जाते हैं, खोलते हैं, पर पता नहीं होता कि अंदर से निकालना क्या है. कई बार ऐसी समस्या भी होती है, तो क्या ये भी एक शुरुआत है डिमेंशिया जैसी बीमारी की?
0: तो इसमें कभी कभी जो लोग ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, या मल्टीटास्किंग कर रही है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है. लेकिन कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग भूल रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों को पता है कि वो लोग भूल रही है, तो ये मैक्सिमम केसेस में ये अल्जाइमर्स नहीं है, या तो अल्जाइमर्स का बहुत ही शुरुआत स्टेज पर है. क्योंकि जो लोग अल्जाइमर्स, जिन लोगों को अल्जाइमर है, वो लोग भूलती हैं और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो लोग भूल गई है. वो लोग किसी चीज़ को भूलती है और उन लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि वो लोग भूल गए हैं. बाकी लोगों को उन लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आप ये भूल गए हैं, आपने ये. और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों को अल्जाइमर्स है, उन लोगों ने नाश्ता कर दिया, भोजन कर लिया, लेकिन जब उन लोगों से पूछते हैं कि आपने भोजन किया, नाश्ता किया, तो वो लोग कहते नहीं. फिर वो लोग कहते हैं किसी ने मुझे को नहीं दिया. तो वो लोग भूल जाते हैं, और उन लोगों को जब उन लोगों को याद दिलवाती है तब भी नहीं याद करती है. तो ये अल्जाइमर्स के लक्षण है. जैसे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अल्जाइमर्स का
1: मरीज है,
0: फॉरगेटफुलनेस है, या कोई स्ट्रेस वाला फॉरगेटफुलनेस है. तो अल्जाइमर्स में उन लोगों को ध्यान नहीं रहता कि वो लोग भूल रहे हैं.
1: तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल को, अगर मान लीजिए किसी को ये पता चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ आए दिन, तो उसे पहला क्या करना चाहिए?
0: जी हाँ, अगर कोई भूल रहा है तो उन लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेती है, मरीज़ को एग्जामिन करती है, और फिर भूलने का, जो लोग भूलते हैं केवल अल्जाइमर्स बीमारी में ये भूलने का समस्या नहीं है, कई मेडिकल कंडीशन में भी भूलने का समस्या है. जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर है, या जिन लोगों को सर में चोट लगा हुआ है, जिन लोगों को सब्जुरल हिमाटोमा है, या जिन लोगों को नोबल प्रेशर हाइड्रोकेफालस है, या जिन लोगों को कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म, या जिन लोगों को विटामिन डिफिशेंसीज हैं, विटामिन B1, B9, B12, जो कि रिवर्सिबल कंडीशन है. तो अगर कोई भूल रहा है तो आपको, आप जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाइए, आप अपना इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आप अपना इवैल्यूएशन करवाइए, फिर देखा जाएगा किसका रूट कॉज भूल

0: बोलने का रूट कॉज क्या है, स्ट्रेस में भी लोगों का कंसंट्रेशन घट जाता है, तो उसमें भी लोग थोड़ा बहुत बोलने लगती है। तो आपको अगर आप भूल रहे हैं या आपके यहाँ किसी सदस्य जो है परिवार का कोई सदस्य भूल रही है, तो उन लोगों को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास आप ले जा सकती हैं, तो वहाँ पर आपका पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा। और मॉरिशस में जितने भी अस्पताल हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस में, वहाँ पर अर्ली डिमेंशिया डायग्नोसिस क्लिनिक है, तो जो लोग भूल रहे हैं उन लोगों का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ताकि वो जो डिमेंशिया का कोज है वो पता लगे और उन लोगों का जो ट्रीटमेंट है या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।
1: ओके, तो डॉक्टर जी मान लीजिए अगर किसी को डिमेंशिया है तो उनको मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ मजाक किया जाता है, उनका अब्यूज़ किया जाता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि मान लीजिए किसी को भूलने की बीमारी है तो लोग उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या ये भी अल्जाइमर को एक्सेलरेट कर सकता है?
0: तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब जो लोग जिन लोगों को अल्जाइमर्स हैं वो लोग खुद नहीं आते हैं, वो परिवार लोग लोगों को लेकर आती है, फिर इंटरव्यू के दौरान जब हम लोग कुछ सवाल करती है तो कभी कभी देखती है कि कुछ सदस्य है जो कि उन लोगों को हंसी आता है कि जब भूल रहे हैं, जब हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब पूछते हैं कि ये जो आपके साथ आई है वो कौन है, तो अगर उसकी मान लीजिए अगर उसकी पत्नी के साथ आई है तो वो कह सकती, उसकी बेटी की नाम बोल सकती है, तो ये कभी कभी ये फनी दिख सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसके सिम्टम्स पर हंसेंगे तो उसको एम्बैरेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको याददाश्त की कमी हो रहा है लेकिन उसका इमोशन अभी प्रिजर्व है, उसको पता चल रहा है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और या तो उसको पता चल गया कि उसको सपोर्ट दिया जा रहा है, ये सब उसको फील होगा,
1: तो ये प्रभावित करेगा उनकी कंडीशन पर। बिल्कुल,
0: अगर उसको लगेगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं या लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये उसकी अल्जाइमर्स को और जल्दी एक्सेलरेट करेगा, उसको और कॉम्प्लिकेशन होगा, तो वो स्ट्रेस में भी आ जाएगा।
1: तो डॉक्टर जी क्या कभी ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे लोगों का उनका मतलब अब्यूज़ करें उनको?
0: कभी कभी ऐसा होता है कि जो अल्जाइमर्स वाला मरीज हैं वो लोग अकेले रहती हैं और उनके जो केयर गिवर है उनके बच्चे जो है वो एक ही घर में नहीं रहते हैं, वो किसी और शहर में रहते हैं या वो विदेश में हैं, वो लोग वो जो जिसको अल्जाइमर है वो अकेला है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग जो है उन लोगों को वो जो मरीज़ है उसका सिग्नेचर लेकर उसका जो प्रॉपर्टी है या बैंक में जो पैसे हैं वो लोग ले लेती है, तो इन मरीजों को हम लोगों को उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
1: तो मतलब जैसे ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान
0: रखना चाहिए,
1: बहुत क्रिटिकल हो सकता है,
0: ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब होता है
1: बिल्कुल
0: प्रैक्टिस में, इन रियल लाइफ में ये सब हम लोगों को देखने को मिलता
1: है, उनका मिसयूज मतलब
0: कभी कभी इन लोगों का अब्यूज होता है, और फिर कभी कभी हम लोगों ने देखा कि जो अल्जाइमर्स वाला मरीज़ है वो अकेला था, उसका प्रॉपर्टी भी किसी ने उसका सिग्नेचर लेकर उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी और के नाम पर,
1: क्योंकि वो याद नहीं रख पा रहे हैं,
0: क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि अल्जाइमर्स में उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाता है, तो उसको ये पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है।
1: और डॉक्टर जी आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोग स्क्रीन टाइम मॉनिटर जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या ये भी आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारी को
0: ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने पर ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर रहने पर ये दिमाग को डंप करता है, दिमाग को सप्रेस करता है, ये एक एडिक्शन की तरह बन जाता है, तो आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन मॉडरेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का स्क्रीन टाइम पर सुबह जागते ही मोबाइल चेक करती है, फिर दिन भर स्क्रीन पर रहती है, फिर रात को
1: अनवांटेड कई बार अनवांटेड इंफॉर्मेशन, जी हाँ कई बार अनवांटेड इंफॉर्मेशन इतना एक्सेसिवली वो लोग कंज्यूम करते हैं,
0: टू मच इंफॉर्मेशन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है दिमाग के लिए ठीक नहीं है, और ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी दिमाग को डंप करता है, तो आपको जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए, इसको ओवरयूज़ मत कीजिए, अब्यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से एक एडिक्शन बन जाता है और ये ब्रेन को डंप करता है, और ये ज़रूर ये बेशक ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है।
1: तो डॉक्टर जी, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, मान लीजिए एक अल्जाइमर का जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट है।

0: है या उसे कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उसका माइंड हेल्दी रहे? कौन सा आप किस तरह से उनको कंसल्ट करते हैं, किस तरह से?
1: जैसे कि अल्जाइमर्स बीमारी का प्रिवेंशन जो है,
0: हाँ,
1: वो यंग एज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब 60-65 ईयर्स की उम्र में अल्जाइमर हो गया है तो ये इरिवर्सिबल होता है। तो हम लोगों को ये प्रिकॉशन जो है बहुत ही
0: अर्ली स्टेज में, कम उम्र
1: में, जी हाँ,

0: तो ये सब जो है, ये लाइफ स्टाइल जो है हेल्दी होना चाहिए. और बहुत लोग जो आइसोलेशन में जीते हैं उन लोगों को भी अल्जाइमर्स होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. तो आप सोशलाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, आप खुश रहिए, और फिर अगर आपको कोई मेडिकल कोमोर्बिडिटी है उसका आप सही से आप इलाज करवाइए. आप दारू का सेवन मत कीजिए, अल्कोहल अब्यूज मत कीजिए, सिगरेट का सेवन मत कीजिए, नशे का सेवन, ड्रग्स सब से दूर रहिए. आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए, और फिर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ मतलब आप हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए. ठीक है, चाहे वो कोई नया गाना हो आप सीखिए, कोई डांस स्टेप हो वो सीखिए, ये डांस थेरापी, सॉन्ग थेरापी, या फिर गार्डनिंग भी कर सकती है. तो कुछ नई एक्टिविटी आप करते रहिए, और जब आप कोई नई एक्टिविटी कर रहे हैं आपको ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए जो आपको पसंद है. ठीक है, मान लीजिए आपका शौक है गाना गाना
1: जी,
0: डांस करना, फिर मैं आपको गार्डनिंग के लिए कह रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं रहेगा. तो इसलिए मरीज को जिन चीज़ में उन लोगों को इंटरेस्ट है उस दिशा में उन लोगों को पुश करना चाहिए, और उन लोगों को नई चीज़ें सीखने का मौका देना चाहिए. और जैसे कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं या इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, सब दिमाग के लिए अच्छा है. और जब आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इस समय आपका दिमाग भी चल रहा है, फंक्शन कर रहा है. तो अगर आप ज़्यादा आइसोलेशन में रहेंगे तो दिमाग शट डाउन हो जाएगा, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है. तो आप लोगों से मिलिए, आप एक्टिविटीज़ करते रहिए, तो आप अपने आप को बिजी रहिए और रखिए, और एक बैलेंस लाइफ स्टाइल जीना चाहिए. आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग ज़्यादा काम करते हैं, ओवरवर्किंग भी ठीक नहीं है. तो ज़्यादा ओवरवर्क हो जाता है, रेस्ट टाइम कम हो जाता है, और फिर खाने में भी फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
1: बिल्कुल.
0: तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. तो एक बैलेंस्ड वर्क, और फिर बैलेंस डाइट, और फिर लेजर एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए. क्योंकि जब मरीज़ लोग कंसल्टेशन के लिए आती हैं, ठीक है, तो जब वो लोग स्ट्रेस होती है, जब वो लोग भूलती है, वो लोग डिप्रेशन में आती है, तो हम लोग उन लोगों से पूछते हैं कि आपका क्या लेजर एक्टिविटीज़ है. तो ऐसा लगता है कि ये लेजर वाला शब्द जो है वो लोग पहली बार सुन रहे हैं. ये नहीं है, वो लोगों के से जो
1: वो जानते ही नहीं है, कई बार जानते नहीं, या कई बार उनके पास समय नहीं होता.
0: तो उन लोगों के से जो में ये जो लेजर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो केवल वो लोग रोज़ सुबह उठ कर जाकर काम के लिए जाती है, फिर दिन भर काम करती है, फिर
1: एक मोनोटोन लाइफ शेड्यूल हो चुका है, इसमें
0: कोई लेजर एक्टिविटी नहीं है. तो ये स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है. स्टूडेंट्स भी उन लोगों की एक्टिविटीज़ में केवल पढ़ाई, सुबह जागना, स्कूल जाना, दिन भर पढ़ाई
1: करना, ट्यूशन जाना,
0: फिर होमवर्क कम्प्लीट करना, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई लेजर एक्टिविटीज़ नहीं है. तो स्टूडेंट्स को भी बीच में कुछ लेजर एक्टिविटीज़ रखना चाहिए. कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो है बहुत ही तेज़ हैं पढ़ाई में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर सडनली उसको एक ब्रेकडाउन हो जाता है. ये ज़्यादा ओवरवर्क करने से ही ये सब होता है. इसलिए एक बैलेंस लाइफ का ये
1: होना बहुत ज़रूरी है. तो डॉक्टर जी, जितने भी लोग अल्जाइमर, यानी घर में चाहे किसी कोई ऐसा है जिसे अल्जाइमर हुआ है, तो इसमें फैमिली का रोल और केयर गिवर जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, और उनको क्या एडवाइस मिलनी चाहिए?
0: तो इसमें फैमिली का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. फैमिली को जब कोई भूल रहा है तो उसको, वो एक बच्चा की तरह हो जाता है, उसको सब कुछ याद दिलवाना पड़ता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, आप अपना ये दवा लीजिए. और फिर कभी कभी जो लोग भूलते हैं, जो लोग एडवांस स्टेज में रहती हैं, तो कभी कभी वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, वो लोग वापस आने का रास्ता भूल जाते हैं, वो लोग गुम हो जाते हैं. तो ये रिस्की भी हो जाता है. कभी कभी कुछ लोग घर पर कुछ बना रहे हैं किचन में, वो लोग उसको किचन पर लगा कर वो लोग भूल जाते हैं,
1: तो फिर छोड़ कर भूल जाते हैं
0: उसके ऊपर, तो उसमें फायर का रिस्क भी हो जाता है. तो ये कुछ रिस्की बिहेवियर भी हो सकता है. और एडवांस स्टेजेस में उन लोगों का जो मोबिलिटी है उसमें भी उन लोगों का कोऑर्डिनेशन जो है, लोगों का गेट जो है अनस्टेडी रहता है, तो वो लोग गिर भी सकते हैं. तो ये सब प्रिकॉशन

0: करना चाहिए।
1: तो क्या ये ट्रीटमेंट के दौरान फैमिली को भी वो काउंसिल किया जाता है, बताया जाता है कि क्या क्या एडवाइस का पालन करना?
0: जी हाँ, क्योंकि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट में ये केवल इसमें केवल दवा का यूज़ नहीं किया जाता, ये एक बायोसाइकोसोशल मॉडल की तरह इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। तो इसमें मेडिसिन दिया जाता है, फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिर फैमिली काउंसलिंग, सोशल सपोर्ट, ये सब एक पूरा एक सेटअप है जो इसमें केवल दवा नहीं है, इसमें पूरा फैमिली सपोर्ट भी है, रिहैबिलिटेशन भी है। तो मरीज को हर तरफ से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए।
1: तो ये मतलब ये ट्रीटमेंट के दौरान उनको तैयार किया जाता है कि मतलब हर स्टेज में उनकी जो कंडीशन होगी उसके लिए उनको प्री इन्फॉर्मेशन मतलब पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन के तैयार किया जाता है,
0: शुरू से ही उन लोगों को तैयार किया जाता है। हम लोग केयर गिवर को कहते हैं कि ये बीमारी जो है ये ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होता है, तो आपको इस चीज़ों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर आपको फोकस देना चाहिए, आपको ये सब देखना चाहिए कि मरीज को ये न गिरे, फॉल न हो, घर में कोई रिस्क फैक्टर न हो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, जिन लोगों को अल्जाइमर्स हैं उन लोगों का स्लीप वेक रिदम जो है डिसबैलेंस हो जाता है, फिर जब वो लोग रात को जागते हैं वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है, तो ये एक एक्सीडेंट प्रोवोक कर सकता है। तो ये सब हम लोग मरीज को बताते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी टिप्स जो है हम मरीज के केयर गिवर को बताती रहती हैं।
1: एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर जी, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ये जानता है कि वो डिमेंशिया का मरीज है, तो क्या ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके आसपास या उसके वर्क प्लेस पर या उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ ये बात वो खुद शेयर करे और खुद ये इंफॉर्मेशन दे, जिससे कि वो एक तरह से प्रिकॉशन भी ले पाए जो लोग उनके आसपास है?
0: जब किसी को डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स होता है, तो हम लोग उनके रिश्तेदारों से ही बात करते हैं, फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर केवल मरीज को दवा देंगे तो ये काफ़ी नहीं है, ये मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो है ये केवल 1/3 इसका ट्रीटमेंट प्लान का है, बाकी जो फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट जो है ये सब हम लोग मरीज के रिश्तेदार को बुलाकर उन लोगों को साइको एजुकेट करते हैं क्या करना चाहिए, उन लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को पता नहीं है तो मरीज जो है वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। और रिलेटिव्स को मरीज को सुपरवाइज करना चाहिए होल टाइम,
1: मतलब उनका कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसे समझना चाहिए। तो डॉक्टर जी, आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं, हमारे ऑडियंसिस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: तो अगर आपके परिवार में या किसी को ये अल्जाइमर्स का सिम्टम है, भूलने का समस्या हो रहा है, आपको किसी चीज़ पर डाउट हो रहा है, तो आपको एक डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जीराट्रिशन के पास आप जाकर अपना इवैल्यूएशन करवाइए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी इसका डायग्नोस्टिक होता है उतना जल्दी ही उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर आप लेट करेंगे, देर करेंगे, तो जितना देर करेंगे ये बीमारी प्रोग्रेस होता जाएगा और फिर बाद में इसको सपोर्ट देना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आप अगर आपको लग रहा है कि आपको या किसी आपके करीब की जान पहचान को ये अल्जाइमर का सिम्टम्स हो रहा है, तो आप किसी भी अस्पताल में जाकर, ये वहाँ पर अर्ली डिमेंशिया क्लिनिक है, वहाँ पर आपका पूरा इवैल्यूएशन होगा और उस हिसाब से आपका
1: ट्रीटमेंट
0: और सपोर्टिव थेरेपी भी दिया जाएगा।
1: बिल्कुल, तो इसके साथ जी हाँ, डॉक्टर उदन आज हमारे साथ जुड़े जो कि एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है SSRNH हॉस्पिटल में, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे डॉक्टर जी को, हमारे श्रोताओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम पर इस वक्त थे यूसुफ और हमारी उरूसा प्रोडक्शन असिस्टेंट, और साथ ही साथ बनी रही शीतल लुबिन जो कि हमारी प्रोड्यूसर, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। और इसी के साथ आज का दिन आप सभी के लिए शुभ रहे, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है और इस पर बिल्कुल अमल करें और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रावधान यानी प्रायोरिटी दे, ये बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
2: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। अब हमारी सड़कों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। मध्य रात्रि से नई रोड ट्रैफिक एक्ट के 8 प्रमुख प्रावधान आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं। मकसद भारी जुर्मानों के जरिए सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना है। वाहन चलाते समय आक्रामक व्यवहार यानी कि रोड रेज अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घातक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर 8 साल तक की कठोर कारावास की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने पर अब वाहन को तुरंत रोककर अधिकतम 6 महीने के लिए जब्त यानी कि चलने से रोका जा सकता है। इसकी घोषणा कल परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने की। डागुचिया के एक मंदिर में कल एक हादसे में स्कैफोल्डिंग्स गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य भारतीय मूल की का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मंदिर के परिसर में स्वेच्छा से रखरखाव का काम कर रहे थे। सैपिया पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों पर जांच शुरू की है। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कल श्रम मंत्री रेजा उत्तीम और स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव उचित के साथ एक बैठक लगाई। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के लिए विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर चर्चा हुई। विदेशी श्रमिकों का पहला समूह दिसंबर में मॉरिशस पहुंचेगा। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नियोक्ता इन श्रमिकों के स्वागत, रहने और आवास से संबंधित निर्धारित शर्तों का पालन करे। विदेश में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश के संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले इलाकों में खास सफाई और सुरक्षा अभियान की घोषणा की है। ये घोषणा जोहानसबर्ग के पूर्वी इलाके में केवल 2 महीनों के दौरान 12 महिलाओं के शव मिलने के बाद की गई। इन मौतों ने दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में लैंगिक हिंसा की दर दुनिया में सबसे अधिक दरों में शामिल है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने इन हत्याओं की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुविभागीय आपात प्रतिक्रिया अभियान की घोषणा की है। इस मामले में अब तक 4 लोगों

0: भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। नंबर 36 एवेन्यू स्मान सैंपल फिनिक्स में 82 साल के 82-year-old श्री देवचंद मती जो मनन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अनीता मती के मकान नंबर 36 एवेन्यू उस्मान सैंपल फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए आली बगियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:02 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर
1: बुधवार 30 सितंबर घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:05 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार, स्वीकार करें। भक्ति धारा ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और आपको ये भी याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी, डॉक्टर गंगू जी और पंडिता सिरतन जी की प्रस्तुति। तो चलिए, कहते हैं जीवन में जो भी हो रहा होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। तो चलिए, ईश्वर की इच्छा मानकर हम भी आगे बढ़ते हैं और भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारम्भ हम करते हैं।

0: जी हाँ, ईश्वर तो आते ही है, बस सच्चे हृदय से हमें उनको पुकारने की आवश्यकता होती है, सच्चे दिल से उनको पुकारने की आवश्यकता होती है। और चलिए, यहाँ पर दिन के 10:15 बज चुके हैं और अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम विनय अंजलि की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू और पंडिता सिरतन जी की प्रस्तुति में।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। हम शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का एक बहुत ही मधुर भजन से। गायक हैं कवि प्रदीप, आप इस भजन का आनंद उठाइए।

श्रोताओं स्टूडियो में उपस्थित हैं आदरणीय पंडिता प्रेमिला श्री रतन जी, हम उनका अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज किसी एक मंत्र का पाठ करें जिसे आप हमेशा किया करती हैं।

0: और उस मंत्र पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पंडिता प्रेमिला सिरतन जी।
1: ओम ये के चास्मच्छेया सो ब्रह्मणस्तिषां त्वया मनेन प्रशस्व सीतव्यम श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् भीया देयम् संविदा देयम् परम पिता परमे ब्रह्म ज्ञान से हो उत्तम संतान शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम।

श्रद्धा श्रद्धा भय प्रेम का ऐश्वर्य दे कृपा विश्वेश। सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमस्ते। श्रोताओं, श्रेष्ठ विद्वान जो ब्रह्मज्ञानी हैं, गुणों में उत्तम हैं, जो अनेक श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न हैं, वे पितर हैं, आयु में बड़े हैं, गुणों में सर्वोत्तम गुणी हैं, सुचरित्र हैं, वे अनिंदित कर्म करते हैं और सभी को उपदेश देते हैं, श्रद्धा अश्रद्धा का ऐश्वर्य देते हैं, जो कुछ बनता अपना सर्वस्व दान लोकलाज भय प्रेम से देते उसे स्वीकार करना अवश्य चाहिए। इसलिए पंच महायज्ञ में इन पितरों अर्थात माता पिता बंधु मार्गदर्शक मित्र और अच्छी शिक्षा प्रदाता की निस्वार्थ सेवा श्रद्धा से करती रहती हैं। हमारे धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना रहती कि ऐसे यज्ञ कर्म करने के लिए हम अनेक लक्षणों से संपन्न होकर रहे। ऐसे पवित्र कर्म श्रद्धा से खंडित तो न होवे। हमारे शुभ कर्मों को करने के लिए श्रेष्ठ विद्वान उपदेश कर प्रेरणा तो प्रदान करते, जिससे उनके प्रति प्रेम का व्यवहार होता रहे, जीवन में ऐसी श्रद्धा धारण करते कि सभी का कल्याण होता। गुरु हमें श्रद्धा से खुलकर गुण ज्ञान का मधु देते रहते, जिससे उत्तम संतान मधुरता से भरे रहे। हमारे जीवन के हर पड़ाव में श्रद्धा की ज़रूरत है। इसलिए हम प्रभु प्रार्थना करते, जो कुछ देवें हमें श्रद्धा से देवें, हम में अपनी शक्ति भरते रहें। जो कुछ देवें बड़े हृदय से देवें, जो कुछ करें हम निर्भयता पूर्वक श्रद्धा से करें, प्रीति पूर्वक सेवा करने योग्य बने रहने की कृपा चाहती, ताकि इस श्रद्धा के वरदान से प्रभु अपने ब्रह्म ज्ञान से हमें अधिक सबल बना सके। इसलिए हम अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते हैं। इस यज्ञ के माध्यम की श्रद्धा से न कमाया हुआ धन, न किया हुआ कर्म से चरित्र धर्म भाग्य नष्ट हो तो होता, विकर्म कर दुर्गति पाती। उन श्रेष्ठ विद्वानों को न सुनने से जीवन बिखर कर नष्ट हो जाता। इसलिए श्रद्धा से खाया पिया अंग लगता, दान किया संग चलता, बाकी बचा जंग लगता, तप किया निखार लाता। यह ब्रह्मा वेदादेश है। ये के चास्मच्छे यासु ब्रह्मणस्तेषां। जहाँ ब्रह्मज्ञानी वहाँ मानवीय एकता अहिंसक धर्म कमाया जा सकता है। उनके उपदेश को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। उनके ज्ञान से हमारे आदर्श जीवन का सच्चा बोध होता है। उच्च सिद्धांतों से नैतिक उत्थान की आध्यात्मिक दिव्यता भरते हैं। उनकी शिक्षा उपदेशक माता पिता श्रद्धापूर्वक व्यवहारिक आचरण में प्रभाव डालते हैं। शांति की व्यापक शक्ति के सद्गुण के बीज बोते, उसे अंकुरित करने के लिए पानी से सोम, वायु से प्राण शक्ति और ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिसका संग अति आवश्यक होता। हमें संतुलित जीवन प्रदान करने के लिए पारस संग लोहा भी स्वर्ण तो बने, मन का कलुष दूर हो, सच्चरित्र का लक्ष्य पा सके। हमें आत्मनिर्भर करने के लिए हर परिस्थिति से पार कर समृद्ध बन

बनाने में लगी रहती। हमें त्याग, सहनशील, समर्पण, सादा जीवन, उच्च विचार को चरितार्थ करने में लगे रहने की कामना करती हैं, ताकि अपने को पवित्र, शुद्ध, उच्च विचार से प्रेरित कर जीवन श्रेष्ठ एवं महान बनने की पवित्र आत्मसंग परिवार का अनुभव मिलता तो रहे। इसलिए परमात्मा उपदेश ध्यान से सुनती हैं, उनसे प्रार्थना सदा रहती, जो कुछ हमें देना है वाद विवाद रहित होए, जीने की कृपा चाहती हैं। जैसे मानवीय चरित्र निर्माण के कर्णधारों ने ऊंच विचार, अच्छे संस्कार धारण की इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, प्रियश्रीयादेयम, हीयादेयम का पाठ पढ़ाती हैं, ताकि हमारे जीवन सुचारू रूप से चलते रहने के लिए हमारी कामना है। बड़े महान सज्जन, पिता तुल्य विद्वान, जो कुछ हमें देना है श्रद्धा से दीजिए। हमें श्रद्धा पूर्वक पवित्र, शुद्ध, उच्च शिक्षा देने की कृपा चाहते, जिससे जीवन तप ज्ञान से निखर जाए। हमें उस अनमोल दान चाहिए, जिसे श्रद्धा से अपने हृदय में संकल्प की अग्नि जला सके। श्रद्धा देयम, अश्रद्धया देयम, हमें उत्तम दान की चाह है। आप दाता बनकर उत्तम भावना से दान करें, जिससे सबका भला, दया, कृपा बनी रहे। ऐसी भावना हृदय से पैदा होती रहे, जो निस्वार्थ प्रेम, आनंद और शांति में आत्मसुख और स्नेह समर्पण अंदर पैदा होती रहे। भौतिक और आध्यात्मिक धन पाकर आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन तो दिव्यता से सेवारत बना सके। श्रोताओं, हम श्रद्धालु के पितृयज श्रद्धापूर्वक सफल तो हो सके, इसलिए हम श्रद्धापूर्वक आपको हृदय से पुकारते, ताकि मन में वह श्रद्धा की अग्नि जागृत हो जाए कि हमारा सारा कर्म सिद्ध हो, हमारा यज्ञ सफल हो जाए। श्रद्धा का स्थान ऊंचा होता, जिससे विद्वानों के उपदेश, सत्संग और वेद विचार को स्वयं में श्रद्धा सत्य धारण तो कर सकें, जिसके अमृत से जीवन सरस रहता। मूर्धन्य विद्वान के ऐश्वर्य से हम वाणी में, सत्य व्यवहार में नम्रता से नमन कर सद्गुण, स्नेह, समान, सहयोग, श्रद्धा से पाते रहते हैं। श्रोताओं, सही जीवन जीने के लिए गुप्त युक्त श्रद्धा से पुरुषार्थ कर आदर्श तो रहते हैं, कर्म की कमाई कल्याणकारी तो रहते हैं। इसलिए अपने उत्तम कर्म के आधार पर श्री, यश, ज्ञान, गुण, चरित्र की कृपा पात्र कहलाते हैं। अंत में भिया देयम और संविदा देयम कहा गया है। जो भी लोक लाज से देना है, भय से देना है, प्रेम से देना है, श्रद्धापूर्वक अवश्य देना चाहिए, जिसे सभी के नज़रों में हम महान बन सकते हैं, ताकि पितरगण हमारे सरताज बने रहे। श्रोताओं, श्रम, श्रद्धा, अभयता के पुरुषार्थ की कमाई पात्र अनुसार देने से दुरुपयोग न होगा। जैसे दधीची ऋषि ने अपने अंग उपकार के लिए श्रद्धा से दिए थे, न समस्या, न रोग, न व्यसन, न अयोग्य पात्र ही पैदा होगा। सभी का संविदाधेयम समान की सद्भावना से पात्रता अनुसार दिया जाता, जिससे उलझने नहीं पैदा होगी। अपनी योग्यता को ज्ञान बूझकर प्रयोग कर लाभान्वित होते, न कि जड़ बनकर खोखले बन जाते। इसलिए संविदा देयम से वेद माता के आंचल की छाया में दिव्य विवेक पाकर करुणा का अभय पात्र कहला तो सके। स्वाभाविक गुण, संकोच, कोमलता, लज्जा, भावुकता आदि से लेना, जिससे मन न मारे, आत्मा हनन न हुए, भय से थरथराहट न पैदा हुए, हृदय से पश्चाताप न करें, बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए श्रद्धा से देना और लेना चरित्रवान बने की शुभ प्रेरणा है, जिससे पंच महायज के पितृ ऋण को चुकाने का महान कर्तव्य करते हैं। श्रोताओं, बड़े विद्वान बड़ी श्रद्धा से सबकी राहों पर सच्चे दिल की खुशी के फूल बिख

0: रहती जिससे सुगंध समान आशीर्वाद चहुं ओर फैल जाती। वे चाहती कि हमारे अंदर उनके उपदेश से सत्य प्रेम न्याय नीति धर्म विवेक साहस शौर्य आदि श्रद्धा से प्रकट हुए ताकि जीवन आशा उत्साह प्रसन्नता एवं श्रम की महानता से भर पा सकें। पितर की विद्या के उपदेशक सुख देकर संतुष्ट करते जिसे हम अच्छे कर्मों की उन्नति नित्य करते हैं उनकी श्राद्ध तर्पण सेवा प्रीतिपूर्वक होती रहे जो प्रतिदिन होनी चाहिए जिसे कर्म शिक्षक बने आचरण उपदेश बने और बोल सबका सहयोग बने। जो विनय अंजलि का संदेश रहा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं अभी आपने पंडिता प्रेमिला शिरतन जी को सुना। आशा है आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है टेक्नीशियन के रूप में श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने सुना धन्यवाद। अंत में आप आदरणीय पंडित वाल्मीकि महेश जी का एक भजन सुनेंगे और हमें अनुमति देंगे। पंडित जी को धन्यवाद करते हुए हम प्रस्थान कर रहे हैं। नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि, और इस कार्यक्रम में उनका साथ दिया पंडिता श्री रतन जी ने, तो आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। भक्तिधारा ये जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है भक्ति के इन कार्यक्रमों से, कहीं ना कहीं हमारी आस्था जुड़ी होती है। बहुत से हमारे श्रोता होते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों का जो है कह सकते हैं इंतज़ार करते हैं कि कब भक्ति गीतों का कार्यक्रम आरंभ होगा और वो कब इन भक्ति गीतों से जुड़ पाएंगे, क्योंकि कभी कभार दिन की व्यस्तता में हम अपने काज में इतने दिनचर्या में इस तरह से उलझ जाते हैं कि कभी कभार हम आराम से बैठकर ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाते हैं। वहीं पर काम करते करते जब इन भक्ति गीतों को सुनने का अवसर मिलता है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर हमें मिल गया।

श्रोताओं, कभी कभी यही श्रद्धा, यही ईश्वर के प्रति आस्था जो है हम खोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है हमारी तो बातें सुनते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के सारे दुख जो है वो हमें ही दे रहे हैं। क्या ईश्वर को हमारी दुख, हमारी परेशानी, हमारी कठिनाइयाँ दिखाई नहीं दे रही है और हम ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं, उस परम पिता परमेश्वर पर अविश्वास करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शायद जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी है, शायद हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है, शायद हमने जाने अनजाने में कहीं कुछ गलत किया होगा इसलिए हमें जो है सज़ा मिल रही है। इसलिए जीवन के हर एक क्षणों को बहुत ही बारीकी से निहारना चाहिए, बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि क्यों होता है, किस लिए होता है, कोई तो कारण होगा जो भी हो रहा है इसके पीछे। और तब जाकर कहते हैं हमें जीवन में हो रही सभी घटनाओं के जो है उत्तर मिलने लगते हैं, सभी चीज़ों को हम समझने लगते हैं। और यही समझ को तो हम ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं ना, क्योंकि ईश्वर जो है हमें कठिनाई में जब डालते हैं तो उस कठिनाई का समाधान भी हमें देते हैं। बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना होता है, थोड़ा सा उस पर कार्य करना होता है, लेकिन ईश्वर पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए।

चलिए, भगवान गणेश का नाम अपने आप में मंगलकारी है, कल्याणकारी है। भगवान गणेश जो है सबका कल्याण करते हैं, सभी विघ्नों को दूर करते हैं। इन्हीं के नाम से हमने कार्यक्रम का आरंभ किया था और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं गणेश चालीसा की ओर और भगवान गणेश का नाम लेते लेते हम कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। भगवान गणेश सबका कल्याण करे ऐसी कामना हम करते हैं।

और श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ, इसी भगवान गणेश की चालीसा के साथ हमारा आज का भक्ति धारा कार्यक्रम समाप्त होने को चला। आपने इतने प्रेम से हमारा साथ दिया, आज भी इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। श्रोताओं, 11 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। हम आपसे मिलेंगे कल आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।

0: चले सुनते संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी को नमस्कार। मॉरिशस कमर्शियल बैंक यानी कि MCB ने 30 जून 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 20 बिलियन रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 11.3% ज्यादा है। बैंक का कर पूर्व लाभ 27.6 बिलियन रुपए रहा, जबकि कर के रूप में करीब 6.8 बिलियन रुपए का योगदान दिया गया। कृषि उद्योग मंत्रालय मॉरिशस में रोपे जाने वाले फलों और सब्जियों के लिए एक डिजिटल ट्रेसबिलिटी प्रणाली विकसित कर रहा है। इसके तहत भविष्य में उत्पादों के साथ एक QR कोड जोड़ा जाएगा। इसके जरिए उपभोक्ता उस उत्पाद के उत्पादक प्रमाणन संबंधी जानकारी और अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अभी विकसित किए जाने बाकी हैं। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल श्रम मंत्री रेजा उद्दीन और स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव उचित के साथ एक बैठक लगाई। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के लिए विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर चर्चा की गई। विदेशी श्रमिकों का पहला समूह दिसंबर में मॉरिशस पहुंचेगा। पोल्ट्री में चूहों के खिलाफ अभियान अब एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। गुरुवार 1 अक्टूबर से नगर पालिका एक व्यापक चूहा नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर रही है, जो केवल सड़कों के किनारे तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बगीचों और यहां तक कि घरों के आंगनों तक भी चलाया जाएगा। नगर पालिका के कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा चूहों को पकड़ने की तकनीक, सही चारे के चयन और चूहों को खत्म करने वाले नए उत्पादों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि भविष्य के अभियान अधिक प्रभावी हो सके। विदेश में फ्रांस में मंगलवार को हाई स्कूलों में हुए छात्र प्रदर्शनी के दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें अधिकांश नाबालिग थे। प्रदर्शन पेरिस में शुरू हुए थे और कई दिनों से छात्रों ने अपने स्कूलों के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध किया। छात्रों की मुख्य मांगों में कक्षाओं में अधिक भीड़ और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार के प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 10 शिक्षक, कई छात्र और 48 पुलिसकर्मी तथा अन्य सुरक्षा अधिकारी घायल हुए। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन प्रदर्शनों का असर कम से कम 400 स्कूलों पर पड़ रहा है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ ही समय बाद शुभ समाचार। डिस्पेंसरी गली पिचराफे में 58 साल के 58-year-old श्री महादेव सोहर जो प्रदीप महादेव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थिया उस दिन के 2 बजे इनके भाई महात्मा राम सोहर के मकान डिस्पेंसरी रोड पिचराफे से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस्ट्रियोली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 36 एवेन्यू उस्मान सैं पुल फिनिक्स में 82 साल के 82-year-old श्री देवचंद मुत्ती जो मनन से जाने जाते थे।

0: की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अनीता मुती के मकान नंबर 36 एवेन्यू उस्मान सैंपल फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए आले भैयाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM और प्लाटो रोड गुडलैंड में आजागिर दुकान के सामने 89 साल की 89-year-old श्रीमती धर्मावती राम बनुही पैदाइश नाम बिहारी जो धर्मावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे मनोज राम बनुही के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआगोज गुडलैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

उसी के नाम से आगाज़े गुफ्तगू करते हैं, उसी के नाम से आगाज़े गुफ्तगू करते हैं, जो दिल के हाल से वाकिफ़ है उसी को याद करते हैं, जो दिल के हाल से वाकिफ़ है उसी को याद करते हैं। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फ़रोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द, बयान, नात सलाम और आपके पैगामात। तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल माईदा की तिलावत से। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, अपने मुआहिदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है।

0: मोमिनों, अल्लाह के नाम की चीजों की बेहुर्मती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तआवुन न करो, और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है।
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए और जो जानवर गला घुट कर मर जाए और जो चोट लगकर मर जाए और जो गिर कर मर जाए और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले जबह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर जबह किया जाए, और ये भी कि पासों से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम है। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हां, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।

ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीजा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।

आज तुम्हारे लिए सब पाकीजा चीजें हलाल कर दी गईं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो और निकाह से इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा।

मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्त किया करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाया करो, और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो फिर तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो।

और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो, और उसके अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है।

ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही न करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वो जहन्नमी हैं।

ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए।

0: और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज पढ़ते और जकात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया।
1: सदक़ल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अल-माईदा का एक हिस्सा बमय उर्दू तर्जुमा। कुरान करीम सिर्फ पढ़ने और सुनने की किताब नहीं है बल्कि ये हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई और पैगाम हिदायत है। इसकी हर आयत हमें अल्लाह ताला की अतात, नेकी, तकवा और अपनी ज़िंदगी को इसके अहकामात के मुताबिक गुजारने की दावत देती है। पाक परवरदिगार हमें कुरान पाक को समझने, उस पर गौर व फ़िक्र करने और उसकी तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:28 हो चुके हैं। बुध का दिन है, सितंबर की 30 तारीख है और आज माहे रबीउल सानी की 18 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह।

अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात की ज़िंदगी का मुताला करते हैं और क़ुरान पाक की जब ये आयात मुबारक तिलावत करते हैं तो मालूम होता है कि निकाह अम्बिया इकराम की सुन्नत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलकद अरसलना रुसुलम मिन क़ब्लिका व जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, और बेशक हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और उनके लिए बीवियाँ और बच्चे बनाए। इस आयत मुबारक में मालूम होता है कि अज़वाजी ज़िंदगी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात की ज़िंदगियों में भी मौजूद रही है। निकाह इंसान की इंसानी फितरत के मुताबिक एक जायज़ और पाकीज़ा रास्ता है जिसे शरीयत ने नज़्म और ज़ब्त और हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों के साथ मुकर्रर फरमाया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैस मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत में से है, जो मेरी सुन्नत पर अमल न करे वह मुझ में से नहीं है। ये हदीस करीमा सुनन इब्ने माजा किताबुन निकाह में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में मुहद्दिसीन इकराम की तहकीक और तखरीज को अगर हम देखें तो वो बयान करते हैं कि यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि निकाह की तरगीब अहादीस सैया से भी साबित है और निकाह के शरई अहकाम इंसान की हालत इस्तेआत और ज़िम्मेदारियों के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह पाकीज़गी और इफ़्फ़त का ज़रिया है। इस्लाम ने इंसान को इज़्ज़त और शराफत अता फरमाई, उसकी फितरी ज़िंदगी के लिए पाकीज़ा रास्ते मुकर्रर फरमाए हैं। निकाह उन्हीं पाकीज़ा रास्तों में से एक अजीम रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वानकुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम वइन यकूनू फ़ुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसका तर्जुमा किया। और निकाह करो, निकाह दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हों, और अपने लायक गुलाम और कनीज़ों का अगर वो मोहताज हों तो जो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। इस आयत मुबारक में निकाह की तरगीब दी गई है और अल्लाह ताला के फजल व करम पर एतिमाद की तालीम दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान माली मंसूबा बंदी और ज़िम्मेदारी और ज़रूरी अखराजात को नज़रअंदाज कर दे। इस्लाम निकाह की तरगीब के साथ साथ हुकूक़ की अदायगी और इस्तेआत का भी लिहाज सिखाता है। निकाह इंसान को हराम से बचाने, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करने और एक ज़िम्मेदार ख़ानदानी ज़िंदगी इख्तियार करने में मदद देता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशरस सवाबी मनिस्ता शबाबी मनिस्तता मिनकुमुल बाता फलयतजव्वज़ फ़इन्नहु अक़्दु लिबसरिह व अहसन लिलफ़रज व मन लम यस्ततीफ़ अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू वजाह। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की इस्तेआत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निकाह को ये निगाहों को ज़्यादा झुकाने वाला और शर्म गाहों की हिफाजत ज़्यादा हिफाजत करने वाला है। और जो इस्तेआत ना रखता हो उसे रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़ा उसके लिए ढाल है। ये हदीस पाक के सही बुखारी किताबुन निकाह और सही मुस्लिम किताबुन निकाह में दोनों में मुत्तफ़क अलैह हदीस है। इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को निकाह की तरगीब दी और उसके ज़रिए इफ़्फ़त और पाकीज़गी की हिफाजत की तालीम अता फरमाई। ये तालीम आज के दौर में भी नहायत अहम है, क्योंकि मुसलमानों को अपनी निगाह, अपनी किरदार, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करनी चाहिए। निकाह सिर्फ खूबसूरती ही की बुनियाद पर या माल की बुनियाद पर नहीं होता। आज हमारे मुआशरे में बाज़ औक़ात निकाह के लिए माल, दौलत, ख़ानदान, ज़ाहिरी हुस्न और माशरती नमूदो नुमाइश की बुनियाद पर इसको मियार बना करके जो है पसंद किया जाता है, जबकि इस्लाम का कानून इस हवाले से भी मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अगर देखें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी जो सही बुखारी किताबुन निकाह और सही

मुस्लिम किताब और रज़ा में ये हदीस का ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका फरमाते तुन की हुल मरातु लि अरबईन लिमालिहा वली हसबिया वली जमालिया वली दीनिया फजफर बिजात दीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत से चार चीज़ों की वजह से निकाह किया जा सकता है, उसके माल की वजह से, उसके हसब और नसब की वजह से, उसके हुस्न और उसके दीन की वजह से। मैं तुम्हें दीन वाली को इख्तियार करने को कह रहा हूँ। इसका मतलब ये साफ हुआ कि चार चीज़ों की वजह से किसी खातून से निकाह किया जा सकता है। नंबर एक, उसके माल की वजह से, माल और दौलत की वजह से भी निकाह किया जा सकता है। नंबर तीन, उसके आला हसब और नसब आला ख़ानदान की वजह से भी किया जा सकता है। नंबर तीन, उसके हुस्न और जमाल को देख करके भी उससे निकाह किया जा सकता है। और नंबर चार, उसके दीन को देख करके। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का मुकद्दस फरमान है जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है बल्कि उससे भी ज़्यादा अजमत रखता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा इरशाद फरमाया, और इरशाद मुस्तफावी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखें और इस पर गौर करें तो ये बात बिल्कुल साफ सुथरी हमारे जहन में आ जाती है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर किसी औरत में ये चार चीज़ें मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी मिले तब भी उससे निकाह किया जा सकता है। लेकिन पहली तीन के बारे में मेरे आका ने फरमाया इनकी वजह से, इसकी वजह से, यानी माल की वजह से, हसब की वजह से, जमाल की वजह से, और चौथी चीज़ नबी ने फरमाया दीन, और फिर आगे फरमाया फज फर तो बिजात दीन, और मैं कहता हूँ तुम दीनदार को पसंद करो। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर किसी खातून माली एतबार से कमज़ोर हो, हसब और नसब के एतबार से भी कमज़ोर हो, और हुस्न और जमाल की भी बहुत ज़्यादा मलिका ना हो, और उसके पास दीन और तकवा और तहारत और पाकीज़ा ज़िंदगी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम उस पाकीज़ा और मुत्तकिया और परहेजगार खातून को अपने लिए निकाह के लिए चुनो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बरकत रखी है, और उस माल और हसब और नसब और जमाल से ज़्यादा अल्लाह ने इसमें तुम्हारे लिए बरकतें रखी हैं। अगर ये चारों चीज़ें मिल जाएं तब तो सोने पर सुहागा नूर नला नूर बात है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा पसंद और देखने वाली जो चीज़ है, तुमने हुस्न को भी देखा, हमने माल को भी देखा, हमने हसब और नसब को देखा, अगर किसी चीज़ को हमने नहीं देखा नहीं पूछा तो फ़कत दीन और तकवे को। आज ये जो बीमारियां हैं निकाह के बाद, जो बात बात पर हमारे मुआशरे में तबाही पैदा होती है, और बात बात पर मियां बीवी की बातों में झगड़े पैदा होते हैं, और औरत शोहर के सामने खड़ी हो जाती है, उसकी अजमत और मकाम को नहीं समझ पाती और शोहर उसके मकाम को नहीं समझ पाता, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास दीन का इल्म और तालीम नहीं है। अगर दीन को हमने चुना होता तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से हमारे लिए बरकत फरमाता, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली दीन यहाँ फज फर्त बिजात दीन। मैं कहता हूँ दीन को पसंद करो, दीनदारी को इख्तियार करो और उसको ज़्यादा अहमियत दो। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर फरमाया कुल मता दुनिया इमरातुन सालिहा, औरत की सबसे ज़्यादा दुनिया की अजीम नीमत और कीमती चीज़ और उसकी जो सबसे ज़्यादा अहम पूंजी है उसका नाम नेक साले बीवी है। नेक साले शोहर शोहर हो और नेक साले सालिहा बीवी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जोड़े में बरकतें अता फरमाता और उनके घरों में रहमतें उतरती हैं, नूर उतरता है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो शादी तो बहुत धूमधाम से और बहुत खर्च करने के बाद सब कुछ हो जाता है, आला तरीन होटल भी हो जाते हैं और मेरिज हॉल बुक हो जाते हैं, अच्छे खाने भी हो जाते हैं, बेहतरीन कपड़े सब कुछ होता है, लेकिन ना हमें यह तौफीक होती है कि निकाह के इस्लामी तरीका क्या है और उसके अहकाम क्या हैं। ये बच्ची बीवी बनेगी तो शोहर के अहकाम के हुकूक क्या हैं, और शोहर को भी ये नहीं मालूम है कि बीवी के हुकूक क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की तालीम की समझ अता फ़रमाए और इस्लाह मुआशरा की तौफीक अता फ़रमाए। ज़रूरी है कि जब कोई भी शख्स लड़का या लड़की निकाह के लिए तैयार हों और उनका रिश्ता हो जाए तो किसी आलिम से, किसी इमाम से, किसी अपने जानकार से दीनी तालीम सही जगह से हासिल करें और अज़वाजी ज़िंदगी के हुकूक क्या होते हैं वो उसे पढ़ें और समझें
اور پھر اس کو بعد میں اپنی زندگی بھر جو ہے استعمال کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ

0: उस घर में बरकत अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्ला البلاغ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: मौजूद सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मासपावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए इसी के साथ समात फरमाइए चंद ऐलानात। सनीचर 3 अक्टूबर, जी हाँ सनीचर 3 अक्टूबर दिन के 1:30 बजे आईसीसी में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख्वातीन और बच्चों को शिरकत की दावत है। इसके अलावा 1 अक्टूबर, जी हाँ जुमेरात 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे महफिल ज़िक्र का अहतमाम किया जा रहा है बैतुल नूर सिद्ध मौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा समीमा सुब्राची की सरपरस्ती में। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। ये जो कलाम अब आप समात फरमाएंगे इसकी फरमाइश हमसे की है आसिया ने।

मोहतरम सामईन, आज हम मौलाना शमीम अशरफ अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह साहब को याद करते हुए हम बारगाहे इलाही में दुआगू हैं कि अल्लाह ताला उनकी दीनी खिदमात को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, उनकी तमाम लग्जिशों से दरगुज़र फ़रमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जी हाँ, मौलाना शमीम अशरफ अज़हरी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इल्म, नेकी और दीन की खिदमत की सूरत में छोड़े हुए इन नकूश मुद्दतों बाकी रहते हैं। लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन याद रहते हैं, चिराग बुझ भी जाएं तो उजाले याद रहते हैं। अल्लाह पाक उनके अहले खाना, मुतालिकीन, शागिर्दों और चाहने वालों को सब्र जमील दे और उनके ज़रिए फैलाए गए इल्म दीन के फैज़ को जारी सारी रखे, आमीन। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं चंद पैगामात की तरफ। लावेनिया से हाफिज़ बाबा साहिब ने एक कलाम की फरमाइश की थी। इसके अलावा सर कलीलुर रहमान, जो कि काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए दुआए शिफा की गुजारिश की जा रही है। अल्लाह पाक सर कलीलुर रहमान को शिफाए कामला अता फरमाए। फोग साइड से नुशरीन अपने वालिदैन नाजिमा कादिया और शोहर अजमल, उनके दो बच्चे अनीस और युशरा के लिए एक कलाम की फरमाइश कर रही हैं। इसके अलावा दुआ शिफा की गुजारिश कर रही हैं नानी ताहिरा के लिए। और आसिया तमाम सुनने वालों के लिए खैर आफियत की दुआ मांग रही हैं। इसके अलावा तमाम मरहूमीन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक सबको अजाब कब्र और से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाएं और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन।

तारे भावता भोजन याने मीठा पकवान तारे नेंदुरु खुवाने ढोलिया मा जड़शे एवा हेत ने हर के तारा मन ने बेजाऊ तने बेजा वरसाद कट कोरा पड़शे तने हैया मा पूरी ने माथे प्रेम केरू ताळो मारी जावा नहीं दऊं मैं घड़ी के पळ बात आखा जग ने भले ने मापी आवे लखी आपू तारा

दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है, स्वागत है। और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ देने के लिए। दोस्तों, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-8085-402-8085 और अपनी अपनी फरमाइश कर सकते हैं और यहाँ पर मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं 5251700। हमें आपका इंतज़ार है। चलिए, आज का पहला गाना सनम तेरी कसम फिल्म से लिया गया, हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो जुड़ चुके हैं और इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए तैयार है।

चलिए प्यारे दोस्तों, अगला गाना हवस फिल्म से लिया गया आशा जी की आवाज़ में, और ये गीत आज की पहली फरमाइश रीताज के लिए जो रहते हैं पोम्पलमूस और इस समय हमें सुन रही हैं। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। ये गाना आपके लिए और आपके परिवार के लिए है।

2:43 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है मोडालबिया से अनीता जे, और वो हमें सुन रही है, बहुत धन्यवाद आपको। गाना आप मांग रही है करुणा अमृता कविता और हम सभी परिवार के लिए। चलिए रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हकीकत, मस्ती में छेर के तराना।

प्यारे श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हमें सुन रही है विश्वानी दुमन जी और वो रहती हैं वाक्वा और गाना वो खास मांग रही हैं अपनी बहन इंदिरा, शारदा, सहेली जो है नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, साथ देते रहिए।

2:55 हुए हैं श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। यहाँ पर हमें सुन रही है सिमला जी। जी हाँ, वो रहती हैं बेलरोज। गाना वो मांग रही हैं अपनी बहन रोमा, आरती, इंदिरा, मेरा भाई जो है राकेश, धीरज, बच्चे, बेटा जो है नमलेश, बेटी कीर्तिना के लिए, और चलिए उनके लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये गाना आपके लिए है।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पढ़िए सभी को, मेरा नमस्कार। वर्ल्ड हार्ट डे 2026 के अवसर पर मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल रही है। मॉरिशस टेलीकॉम के 3 शोरूम में जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया और पीक अक्टूबर की शुरुआत कल से हो चुकी है, ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारी न्याय प्रणाली की रक्षा करने के लिए हमारे पास अच्छे अधिकारी और अफसर हों। आईसीटी मंत्री ने राष्ट्रीय संघ की महासभा में चर्चित विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार अब काबू से बाहर हैं ये। अविनाश रामतोहल ने पुष्टि की कि सरकार एआई के प्रयोग को लेकर बड़े और ठोस नियामक संस्थाओं की स्थापना करने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि हमारा देश एआई के विकास के पक्ष में है, फिर भी सावधानी पर खास जोर दिया जाता है। विदेश में 6 वर्षीय अल बलावी

के घायल होने के बाद से गाजा में उसकी 20 से अधिक सर्जरी हो चुकी है। वो जुलाई के अंत में हुए एक इजरायली हवाई हमले में घायल हुई थी। वहां पर अधिकारियों का कहना है कि अल मवासी कैंप में उसका टेंट एक इजरायली हेलीकॉप्टर से किए गए हमले की चपेट में आ गया था। अब उसके घावों में होने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उसे बार बार सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार।

Kongshanet de Shimeghanyemi, 54 years old, Shri Ananda Nayarana Sani. Shri Ananda Nayarana Sani, jinhe log Ananda naam se zyada jante the, ki mrityu ho gayi hai, inki arthi aaj sham 4 baje inki patni Vedi Nayarana Sani ke makan. कौशाने तेश में घनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. मोसेलमो वीओएस ब्रह्मस्थान में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन, जिन्हें लोग प्रसाद नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे आनंद सुब्रन के मकान मोसेलमो वीओएस ब्रह्मस्थान से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM. और साचुकुलेन रोड बोनाकई में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री बालकरण जीत दियाल, जिन्हें लोग मून नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे इनकी विधवा कृष्णावती जीत दियाल के मकान जाचुकुलेन रोड बोनाकई से उठाकर मिजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है. Your news on NBC Play.

Ah, ये सुनिए, सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति, वालोंचिना और पेचिकॉन फिनिक्स के आसपास के इलाके, CWA पेचिकॉन विलेज के कुछ इलाके, फिनिक्स बेवरेजेस, ग्लॉस गैलरी और जेस के आसपास के इलाके, उन रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 दोपहर, जी हाँ, शाम के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक, जी हाँ, शाम के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

आपकी पसंद। तीन बजकर 5 मिनट हुए हैं श्रोताओं, हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, और इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं, धन्यवाद। और यहाँ पर हमें सुन रही है, इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं, मैं उषा कौर, यहाँ पर नंबर है 4028085402808 और मैसेजेस आप कर सकते हैं 1525170005। तो चलिए, यहाँ पर त्रिवेणी जी जो रहती हैं गुडलैंड से गाना वो मांग रही हैं अपने लिए, आज उनकी शादी की सालगिरह है और शादी जो उनके लिए और उनके पति अनिल के लिए, जी हाँ, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद शुभकामनाएं दे रहे हैं उनकी बहन गीता दीक्षित, गीता जिसिक जीजा, अजय, अनिल देवरानी, लयका, भाई कैलाश, उनके देवर जो

है विनोद देवरानी, सुरेखा और बेटी अनुष्का, दामाद विकास, सभी लीलाधारी मोहन परिवार की ओर से चलिए आपको और आपके पति अनिल को हार्दिक शुभकामनाएं। गाना चल पड़ा आपके नाम।

0: आपकी पसंद।
1: 3:11 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है नारायणी फ्रॉम लॉन्ग माउंटेन और गाना वो मांग रही हैं उनके लिए और अपने परिवार के लिए, मेरा नाम जोकर फिल्म से लिया गया। चलिए प्यारा सा तराना सुनते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

की पसंद। मिलते ही रहेंगे हम सातों जन्म। और यहाँ पर अभिनेत्री फिल्म से लिया गया महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में और साथ में है लता जी। ये गाना जाएगा हमारी प्यारी संगीता जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम क्यूपिप, और साथ में अक्षय और रीना भी जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर हमें सुन रही है ज्योति जी फ्रॉम यूनियन पार्क, और गाना वो मांग रही है प्रीति मयूर आदर्श वेदना विमला विवेक और केनिता के लिए।

आपकी पसंद। सारे 3 बज चुके हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर बेस्ट विशेस, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अनित के तहराम पोसाद, उनके 19 साल की सालगिरह के मौके पर, और वो रहते हैं कब मालूम, और उनका जन्म दिवस के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं मामा, उनकी मामा की ओर से, पापा जो है अभय, उनकी बहन और उनके

दोस्तों की ओर से दादा दादी पुप्पू चाचा चाची सभी कजन्स और सभी सुबों और रामप्रसाद फैमिली की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और साथ ही साथ भी यहाँ पर आशा जानू जी गाना मांग रही है अपनी सहेली नंदिनी के लिए। नंदिनी ओकलू, आज आपका जन्मदिन है और बेस्ट विशेज फ्रॉम मामा कुमारी आशा और पूरे जानू परिवार की ओर से, और उनकी माँ जो है उनको बेस्ट विशेज दे रही है, उनकी बहन जेनिता, रीना रीना परी प्रेमिला और सभी दोस्तों की ओर से। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

आपके पसंद प्रोग्राम आपके नाम, और यहाँ पर हमें सुन रही है माधुरी जी, धन्यवाद साथ देने के लिए और गाना जो है खासकर आपके लिए, और साथ में मेबक के रहने वाली अमृता जी इस समय हमें सुन रही हैं, गाना वो मांग रही हैं अपने लिए और पति देव के लिए, साथ ही बच्चे जो हैं करण और तरुण, और स्पेशल गाना जाएगा उनकी माताजी सावित्री के नाम।

ऐसे ही खूबसूरत तराने आप लोगों के लिए हम चलाते ही रहेंगे. और यहाँ पर आकाश चेतन मनसुख जो हमें सुन रही है फ्रॉम बॉम्बू, और आप गाना मांग रहे हैं आपके नाम और पूरे मनसुख परिवार के नाम. 3:40 होने को है. चले अर्जुन पंडित फिल्म का ये खूबसूरत गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में.

फिल्म का नाम है रास्ते का पत्थर, मुकेश साहब की आवाज़ में। और ये गाना हम चला रहे हैं खासकर शाफिक जी के लिए, वो रहते हैं सैपिया। गाना उनके लिए और हमारे सभी रेडियो MBC टीम, ओरिएंटल रेडियो टीम के लिए।

0: की पसंद।
1: 3:55 हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर अगला गीत लीडर फिल्म से लिया गया, हमी से मोहब्बत, और ये गाना हम चलाएंगे रियाना के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम फिनिक्स। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको, और गाना आपके लिए, और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गुनगुनाते रहिए हमारे साथ, 4 बजे शिरीष की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम, और भूलिएगा नहीं आज शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम हमारे साथ आप सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए और इस गीत को आप लोग एंजॉय कीजिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग।
3: वेलकम बैक श्रोतृंनो, परत एकदा तुमचे खूप खूप स्वागत। श्री सोबत आपण आहात रेडिओ मॉरिशसवर, परत एकदा

7:17 हुए हैं। श्रोताओं नमस्कार, आप सबको स्वागत है आप सभी का आज के एक सुरेले और मस्ती भरे कार्यक्रम अंताक्षरी में, जहाँ जहाँ हर सुर के साथ जुड़ी है एक याद और हर गीत के साथ जुड़ा है एक एहसास।

जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 6 बजे तक। और ये आज भी आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो रोशन भाई है वो कहाँ है। आज भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर आपका साथ दूंगी अंताक्षरी प्रोग्राम में। और आज का दिन दोस्तों बहुत ही खास संदेश लेकर आया है। आज विश्व हृदय दिवस। जी हाँ, हमारा दिल सिर्फ धड़कता नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की हर खुशी को महसूस करता है, इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपनों का ख्याल रखना। तो चलिए दिल को खुशियों से भरते हैं और गीतों की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ करते हैं। तैयार हो जाइए, अंताक्षरी के लिए सुरों का खेल शुरू होने वाला है। और आपको क्या करना है, आज विश्व हृदय डे है, हार्ट डे, आपको एक गाना गाना होगा दिल पर, एक गाना जिसमें दिल शब्द है और एक गाना आपकी पसंद। हमें आपका इंतज़ार है 4028085 4028085। और आप घर पर बैठे बैठे भी आप अगर इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं तो आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं 5251705।

0: जी हाँ प्यारे श्रोताओ, चलिए हम सुनते हैं आज। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी हाँ जी, आपका नाम?
1: मैं निर्मला हूँ फौजी साक।
0: निर्मला जी फौजी साक, नमस्कार आपको। हम आपको यही मांग करते हैं कि रेडियो सेट वॉल्यूम को आप कम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें दिक्कतें हो रही हैं।
1: कर दिया है।
0: तो चलिए, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ जी।
0: अच्छा, तो आपको गाना होगा, दो गाने होंगे। एक दिल पर, जिसमें एक गाना जिसमें दिल शब्द हैं, और दूसरा गाना एक आपकी पसंद।
1: अच्छा जी,
0: शुरू कीजिए।
1: पुराने गाने हैं,
0: शुरू कीजिए।
1: दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। अच्छा है ना?
0: बस ओके। चलिए, दूसरा गाना आपकी पसंद।
1: हमने तुझको

0: चलिए,
1: कौन करेगा
0: हम
1: इतना।
0: करेंगे आपको प्यार।
1: हम भी एमबीसी से बहुत प्यार करते हैं।
0: जी हाँ, आप अपना नाम फिर से याद दिला दे।
1: निर्मला
0: निर्मला, आप कहाँ से हैं?
1: फौजी साहब।
0: फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।
1: थैंक यू।

0: चलिए एक और कॉलर है। हेलो
1: हेलो ईशा बहन, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपको कैसी हैं आप? आप हैं अमृता जी ना, फ्रॉम ओकुले?
1: यस, मैं अमृता ओकुले से।

0: भाई रोशन को भी मेरी नमस्कार।
1: नमस्कार, वो आपको सुन रहे हैं
0: जहाँ भी है उसको मेरी प्रिय प्रणाम।
1: जी बिल्कुल। चलिए अमृता जी, आपको गाना होगा एक गाना दिल पर आधारित, जिसमें दिल शब्द है, और दूसरा गाना एक गाना आपकी पसंद।
0: दिल की गिरह खोल जो चुप ना बैठो कोई गीत गाओ, ओ दिल की गिरह खोल जो चुप ना बैठो कोई गीत गाओ। मेरे दिल में है अब कोई अजनबी, दिल की उसमें वादे प्यार वफा सब बात है बातों से क्या।
1: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको अमृता जी।
0: शुभ सप्ताह, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। नमस्ते। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अंताक्षरी प्रोग्राम, और अमृता जी जो रहती है वो कुले, और उनका गाना बहुत ही प्यारा गाना, हर इंसान के दिल के करीब कोई ना कोई गीत होता है ना दोस्तों।

0: जी हाँ, दिल ने एक बेवफा से प्यार किया। बहुत ही प्यारा गाना ये रफ़ी साहब का गाना। और यहाँ पर हम देखते हैं किसकी आवाज़ हम सुनेंगे। हेलो।
1: हेलो उषा जी, मैं बेवफा नहीं हूँ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, हमने कभी आपको बेवफा नहीं बोला।
1: हाँ
0: नमस्कार आपको,
1: तो
0: आप कौन?
1: नमस्कार जी, मैं राधा हूँ मौसीदा से।
0: जी राधा जी, सुनाइए पहला
1: हाँ
0: गाना। विषय आपने सुना?
1: हाँ सुना।
0: ओके चलिए सुनाइए पहला गाना।
1: दिल ऐ दिल, बहारों से मिल, सितारों से आंखें मिला, ये समा ये रंगी समा।

0: जी, और दूसरा गाना?
1: एक सुनहरी शाम थी, एक सुनहरी शाम थी, भूल गई तो भूल गई आगे क्या है।
0: लेकिन दिल शब्द है इसमें।
1: नहीं दिल, मैंने बोला ना दिल, ऐ दिल बहारों से मिल।
0: अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद आपको राधा जी,
1: आपको भी बहुत बहुत
0: मिलते
1: धन्यवाद
0: हैं
1: जी।
0: बहुत जल्द, बाय बाय।
1: हाँ।

0: जी हाँ दोस्तों, दिल को खुश रखिए क्योंकि खुशी भी जीवन की एक खूबसूरत दौलत है। तो चलिए यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: जी मैं देवी हूँ।
0: हो देवी जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है
0: ठीक है ठीक है, आप ठीक है, हम भी ठीक है।
1: ओके।
0: सुनाइए पहला गाना, और दो गाने हैं, एक गाना दिल शब्द
1: दिल।
0: के साथ, हाँ जी,
1: हाँ
0: और दूसरा आपकी पसंद। चलिए सुनाइए।
1: ओके। तो दिल दिल का

0: करिश्ता बड़ा प्यारा है।
1: दिल का रिश्ता बड़ा बड़ा ही प्यारा है। चले सुनाइए दूसरा गाना।
0: अभी इसी महीने में हमने लता दी जी का भी बर्थडे मनाया ना, तो उन्हीं पर ही गाना, ये रातें नई पुरानी।

चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, शुभ संध्या। चलिए तो ये थी एक और श्रोता, और कहते हैं ना अपने दिल का ख्याल रखिए क्योंकि जिंदगी की हर धड़कन अनमोल है दोस्तों।

0: जी हाँ, एक दूसरे पे मरते हैं और ये जो सुकून भरा जीवन है, सहमत की तरफ एक कदम है। तो चलिए, यहाँ पर कौन आया है? हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते, आप लीला जी हैं फ्रॉम बाशेरी, है ना?
1: जी हाँ, आपने पहचान लिया।
0: सही पहचाना
1: सही पहचाना आपने।
0: हाँ चलिए, गाना सुनाइए लीला जी।
1: जी हाँ, और रोशन जी भी जहाँ भी है उसको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: चलिए, धन्यवाद आपको।
1: जी हाँ, तो पहला गाना मैं गाऊंगी,

0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, दिल तो है दिल। और दूसरा गाना एक आपकी पसंद?
1: मेरी पसंद नहीं, आपके लिए ये गाना मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सुनाऊंगी, ये गाना आपके लिए है।
0: अच्छा, चलिए सुनाइए। थैंक यू सो मच।
1: चांदी जैसा चांदी जैसा
0: रंग है तेरा।
1: देखा, मैं भुला गई
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी,
1: मैं कीर्तन में जाती हूँ ना,
0: हाँ
1: तो ये गाना मैंने माँ पर गाई है, तो ये माँ पर गा
0: अच्छा,
1: रही है।
0: सोने जैसे बाल
1: चांदी जैसा।

0: चलिए, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद लीला जी, हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द, आपने फोन किया, धन्यवाद। चलिए
1: धन्यवाद आपको, और आपको भी कहेंगे शुभ संध्या, शुभ
0: शुभ
1: रात्रि।
0: संध्या।

0: जी हाँ दोस्तों, अंताक्षरी में एक ही अक्षर से कितने गीत याद आ जाते हैं, है ना?
1: पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा।
0: दिल का रिश्ता बहुत ही प्यारा है और आप लोगों के साथ ये जो रिश्ता है और भी गहरा है। चलिए, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, आपका नाम?
2: संगीता, मोडल बेस।
0: अच्छा संगीता जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं।
2: आज मन लगती है एक गाना गाने को अंताक्षरी में।
0: अच्छा, और दो गाने गाने होंगे आपको, एक

0: जिसमें दिल शब्द शामिल हो और दूसरा आपकी पसंद।
1: हाँ,
0: और चलिए सुनाइए।
1: फूल तुम्हें भी चाहे कत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भी चाहे खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? क्या
0: चलिए धन्यवाद आपको।
1: क्या
0: सुनाइए दूसरा गाना।
1: दिल का रिश्ता।
0: अभी तो किसी ने गा लिया और ये गाना चल रहा है यहाँ पे।
1: हाँ,
0: बहुत
1: दिल
0: सारा गाना है।
1: हाँ बहुत है। दिल का हाथ नहीं आते नहीं ना। दिल को देखो, सपनों को देखो, दिल दिल को देखो, को देख, दिल आ नहीं आते ये
0: चलिए
1: गाना है।
0: बहुत धन्यवाद आपको, आपने फोन
1: आपको
0: किया। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।
1: बाय।
0: तो आपने सुना संगीता जी की आवाज। और कहते हैं ना, हर गीत में कभी खुशी, कभी याद और कभी दिल की कोई बात छुपी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो,
1: हेलो हेलो, नमस्कार उषा जी। नाइस टू मीट यू।
0: नमस्कार। हाँ जी सुभीर
1: नाइस
0: जी,
1: टू मीट
0: कैसे
1: यू।
0: हैं आप?
1: ठीक है ठीक है। आप कैसे?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं।
1: रोशन जी कैसे?
0: वो भी
1: नहीं
0: ठीक
1: सुना
0: है,
1: है
0: वो सुन रहे
1: दो
0: हैं
1: वीक। हाँ
0: जी। बहुत जल्द वो भी आने वाला है, लेकिन तब तक हमारा और आपका ये
1: हाँ
0: जो कार्यक्रम है, हम उसको
1: वो
0: आगे
1: जारी
0: ले जाते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: जारी
1: हाँ
0: करते हैं।
1: या
0: सुनाइए पहला गाना।
1: ओके, पहला गाना। ओके

0: ये पहला है
1: जी। दूसरा गाना
0: और ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए रे तेरा आशिक पुराना, ओ जाना न जाना।
1: हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी जाएंगे, हाँ ज़रूर, लेकिन आएंगे अगले सप्ताह एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। बहुत धन्यवाद आपको सुबीर जी, मिलते हैं जल्द, बाय बाय।

0: ओ मेरे दिल के चैन। जी हाँ दोस्तों, जब गीत दिल को पसंद आता है ना, तो ऐसे धड़कन भी उसके सुर में चलने लगती है। और यहाँ हम देखेंगे कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते उषा बहन।
0: नमस्ते, आप कौन?
1: मैं ज्योति हूँ,
0: ज्योति जी कहाँ से? बॉबू से। ज्योति जी बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: आपको भी धन्यवाद,
0: चलिए सुनाइए
1: आपने
0: पहला
1: मुझे अवसर
0: गाना।
1: दिया है।
0: ऑफ कोर्स, पहला गाना सुनाइए ज्योति जी।
1: गला कुछ खराब है लेकिन मैं कोशिश करूँ।
0: कोई बात नहीं, कोई बात
1: जी। दिल से शुरू ना।
0: हाँ।

0: बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपकी आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है ना। बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद उषा बहन
0: जी। चलिए हम वादा निभाएंगे और जरूर आएंगे अगले सप्ताह एक और प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद आपको, शुभ संध्या।

0: चलिए, ये दिल तुमको ही चाहता है, हम क्या कर सकते हैं। और जब ये दिल को पसंद आता है ना, तो चलिए क्या करें, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना और अपनों के साथ समय बिताना, ये जीवन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कौन है। हेलो
1: जी। हेलो जी, नमस्कार उषा जी।
0: नमस्कार, आपका नाम
1: जी? मैं संध्या हूँ, पारूपी मोह से।
0: प्यारी संध्या जी, बोलिए, सुनाइए।
1: कैसी हैं आप? ठीक है?
0: बिल्कुल ठीक।
1: ओके, सो दिल पे ये गाना। दिल

क्या बात है, ये जो लास्ट सुर आपने सुनाया मेरा दिल बहुत ही बढ़िया। चलिए सुनाइए दूसरा गाना।

0: चलिए संध्या
1: संध्या
0: जी,
1: संध्या
0: संध्या जी, आपको बहुत धन्यवाद।
1: जी,
0: नूरी
1: आपको भी
0: और ये
1: जी
0: गाना हमें बहुत पसंद है। धन्यवाद आपको,
1: जी ओके,
0: मिलते हैं
1: आपको
0: बहुत
1: भी मौका
0: जल्द।
1: देने के लिए ओके,
0: शुभ
1: थैंक यू, बाय
0: शुभ
1: बाय
0: शाम आपको।
1: जी, आपको भी बाय बाय।

0: जी हाँ श्रोताओं, अपनों के साथ खुशियाँ बाती, प्यार, हंसी और अपनापन जिंदगी को और खूबसूरत बना देते हैं। दिल दीवाना बिन सजना के, चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो
1: उषा जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: हाँ जी, आवाज हमने पहचान लिया है कौन है
1: अच्छी
0: और ऊपर से उसकी हंसी, प्रभा जी कैसी है आप?
1: हूँ ओके,
0: चलिए
1: तो
0: आज पता चलेगा कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं
1: ओके है।
0: सुना ये पहला गाना।
1: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी।
0: बहुत बहुत
1: होमवर्क
0: बढ़िया,
1: किया
0: होमवर्क किया, हाँ किया चलिए दूसरा गाना सुनाइए।
1: तुमसे मिलना, बातें करना बरा

0: अच्छा लगता
1: ठीक ठीक। चलिए प्रभा जी, हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप अपना ख्याल
0: थैंक
1: रखिए, बाय बाय।
0: बाय।
1: ये थी हमारी प्यारी हस्ती मुस्कुराती प्रभा जी, जो कभी मुस्कुराना नहीं भूलती है और सबके दिलों में प्यार लेकर आती है हमेशा। और यहाँ पर हम देखेंगे कौन है। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्ते उषा जी, मैं कहते आशा जाने बोल रही
1: हूँ। आशा जी चलिए, नमस्ते आपको। सुनाइए पहला गाना।
2: मैं दोनों गाने दिल पर ही गाऊंगी।
1: चलिए सुनाइए।
2: दिल में जागे धड़कन ऐसे पहला पहला पानी, ऐसे ऐसा था या मुझ में जादू, हाँ ही हे हो, बोली में सब आना जाना, गाना वाना खोना पाना किसके

0: झूमे दिल में जागे धड़कन, और
1: दिल में जागे धड़कन बहुत ही बढ़िया। दूसरा गाना,
0: दूसरा गाना शीशा।

0: चलिए, धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद। दोनों के दोनों गाने आपने दिल पर गाया, और अगर रोशन जी होते वो आपको ये बोलते कि आप बनते हैं स्टार ऑफ द वीक।
1: थैंक यू सो मच,
0: टेक केयर, बाय बाय,
1: बाय, शुभ संध्या।
0: दिल में बन के लहू नस नस, क्या बात है, कैसी कैसी लाइन सुनने को मिलते हैं उन गानों में। और यहाँ पर कौन है? हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: आप कौन?
2: पहचाना नहीं?
0: मैंने नहीं पहचाना, क्या करें, क्षमा कीजिए।
2: आली
0: जी, सलाम आपको।
2: सलाम सलाम आपको।
0: अली जी सुनाइए पहला गाना।
2: पहला गाना, दिल ने चाहे आसमां पे लिख दू, फूलों से लिख दू नाम तेरा, ठीक है ना?
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया। दूसरा गाना सुनाए।
2: दूसरा गाना हाजिस खाना है। हे नादिर रंग, कब मुझे चोरेगा मेरा हम, कब चलक तू मेरा दिल तोड़ेगा, क्यों, ठीक है ना?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलते हैं बहुत जल्द आली साहब, सलाम आपको।
2: सलाम।

0: जी हाँ दोस्तों, अंताक्षरी का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब यादें भी गीतों के साथ जुड़ जाती हैं। आपके दिल के करीब भी ज़रूर कोई गीत होगा। और यहाँ पर कौन अपनी आवाज़ सुनाने आई है? हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते, आपको कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप ठीक हैं ना?
0: हम भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं, हम सब ठीक
1: हैं,
0: आपकी आवाज़ भी ठीक है
1: जी
0: तो सुनाइए पहला गाना।
1: ओके okay.

0: जाने से पहले फिर मिलेंगे सनम।
1: 100 साल हम जिएंगे
0: जी।
1: चलिए इससे पहले आप दूसरा गाना सुनाइए।
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है।
1: चलिए बहुत बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। बाय
0: बाय।

0: चलिए विश्व हृदय दिवस पर एक छोटी सी बात, अपने दिल को सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं खुशियों का एहसास भी दीजिए। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: हाँ जी नमस्ते, शोभा जी फ्रॉम वाक्वा।
1: हाँ, रोशन जी हमें सुन रहे थे, उनको भी नमस्ते।
0: बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं, धन्यवाद।
1: हाँ जी हाँ, तो पहला गाना दिल पे ना
0: जी

0: दिल जो ना कह सका आपने गा कर सुना लिया।
1: जी हाँ,
0: चलिए सुनाइए दूसरा गाना।
1: तो और एक गीत गा सकती हूँ दिल पे?
0: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
1: ओके दिल से दिल मिलने का कोई कारण होता, बिना कारण कोई बात नहीं होती, शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होता, वरना हमारी मुलाकात नहीं होती।
0: चलिए बहुत धन्यवाद
1: हाँ
0: आपको।
1: उषा जी, उषा जी,
0: जी
1: उषा जी, जाने
0: जी
1: से पहले ये गाना गा देना प्लीज। मैं जानती हूँ ये गाना आपकी भी फेवरेट है।
0: बताइए।
1: ओ मेरे शाह खुदा,
0: अच्छा कर
1: ओ
0: मौका
1: मेरे,
0: मिले क्योंकि हमें हमारे
1: ओके
0: हमारे पास और फरमाइशें हैं,
1: जी हाँ,
0: बेशक हम ये गाना गाएंगे आपके लिए। अगर
1: ओके
0: इस बार नहीं गा पाए तो
1: ओके
0: ज़रूर नेक्स्ट टाइम
1: ओके
0: आपका
1: अच्छा
0: हम आपके लिए हम गाएंगे। धन्यवाद
1: जी हाँ,
0: आपको।
1: धन्यवाद आपको भी, शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

5:52 हुए हैं दोस्तों। जब ये दिल को छू जाए तो उसे सिर्फ सुनिए मत, उस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ गीत सीधे दिल तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ

जुड़े हुए हैं प्यारी श्रद्धा जी, जी हाँ, और वो रहती हैं कौजाब। आज उनका जन्मदिन है और ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी बेटी पूजा, दामाद बाबू और उनकी प्यारी विहान की ओर से उनको ढेर सारी।

तुमको हमारी उम्र लग जाए। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा गाना लता जी की आवाज़ में। चलिए, दिल है कि मानता नहीं, अभी जाने का समय आ गया है, लेकिन क्या करे, मिलेंगे अगले सप्ताह एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभरात्रि। लेकिन भूलिएगा नहीं, 6:30 हम फिर से आएंगे RM Free रेडियो पर दिलों की आवाज़ और नई सोच कार्यक्रम के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम की 6 बजे है। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस से करीब 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व हिंद महासागर के नीचे फैला हुआ है सयाद माल्हा, एक विशाल समुद्री क्षेत्र जिसमें काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। मॉरिशस और सेशल द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित इस क्षेत्र की वैज्ञानिक क्षमता को समझने के लिए वर्ष 2022 में एक वैज्ञानिक अभियान चलाया गया था। चार साल बाद एक्सप्लोरेशन दु मोनाको ने इस वर्ष इस अभियान की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक की है। कुदो में आयोजित समारोह के बाद अटोर्नी जनरल गेविन ग्लोवर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इनमें शागो से जुड़ा मुद्दा शामिल। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार कूटनीतिक प्रक्रिया को बिना सार्वजनिक टिप्पणी के आगे बढ़ने देना चाहती है। नेशनल क्राइम्स एजेंसी के संबंध में गेविन ग्लोवर ने स्पष्ट किया कि इससे किसी भी तरह से पुलिस कमिश्नर की भूमिका कम नहीं होगी। फ्लैक स्थित डॉक्टर ब्रिनो चोंग मेडिकल सेंटर में बहुत जल्द ड्रग्स की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नया रेजिडेंशियल सेंटर शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्थल का दौरा किया और इस परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। विदेश में मोरक्को के राजा मोहम्मद छह ने फातिमा एजाहला एल मंसूरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 50 वर्षीय फातिमा एल मंसूरी इस पद पर आसीन होने वाली मोरक्को की पहली महिला और अरब जगत में प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी महिला है। मॉरिशस से करीब 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व हिंद महासागर के नीचे फैला हुआ है सयाद माल्हा, एक विशाल समुद्री क्षेत्र जिसमें काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। समुद्री संसाधन, असाधारण जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और ब्लू इकोनॉमी, इन सभी क्षेत्रों में ये इलाका मॉरिशस और सेशेल के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। मॉरिशस और सेशेल द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित इस क्षेत्र की वैज्ञानिक क्षमता को समझने के लिए वर्ष 2022 में एक वैज्ञानिक अभियान चलाया गया था। चार साल बाद एक्सप्लोरेशन दु मोनाको ने इस वर्ष इस अभियान की अंतिम रिपोर्ट आम की है। सयाद माल्हा के बारे में बढ़ी ये वैज्ञानिक जानकारी अब इसके संभावित

0: संसाधनों और अवसरों की खोज में मदद करेगी। साथ ही इसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने पर भी जोर दिया जाएगा। कुडो में आयोजित समारोह के बाद अटोर्नी जनरल गैविन ग्लोवर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इनमें शागोस से जुड़ा मुद्दा शामिल था। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार कूटनीतिक प्रक्रिया को बिना सार्वजनिक टिप्पणी के आगे बढ़ने देना चाहती है। नेशनल क्राइम्स एजेंसी के संबंध में गैविन ग्लोवर ने स्पष्ट किया कि इससे किसी भी तरह से पुलिस कमिश्नर की भूमिका कम नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं और ज़रूरत पड़ने पर एनसीए में संशोधन किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि एक बात निश्चित है, नेशनल क्राइम अस्तित्व में आएगी। मॉरिशस और रीयूनियन ने सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत किया है। ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए दोनों टापुओं के बीच आज पोर्टलिस में एक नए तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग के तहत दोनों क्षेत्रों की संबंधित एजेंसियां अपनी विशेषज्ञता, खुफिया जानकारी और आपसी समन्वय को मजबूत करेंगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सक्रिय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाना है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ता ये सहयोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब्दुल बुला की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण रजनी बिकर के साथ।
1: मॉरिशस और रीयूनियन सुरक्षा के विषय को लेकर अपने सहयोग में एक नया चरण पार कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सरोजवाली और रीयूनियन टापू के एक प्रीफेक्ट पैट्रिस लात्रों ने दोनों टापुओं के बीच गैर कानूनी ट्रैफिकिंग के खिलाफ संघर्ष बढ़ाने के मकसद से एक तकनीकी सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रावधान मादक द्रव्य और सिकोट्रोप पदार्थों से संबंधित हैं। कई स्तरों पर सहयोग बढ़ाए जाएंगे, जैसे संबंधित अधिकारियों के बीच जानकारियों और समन्वयन के बेहतर आदान प्रदान को लेकर। पैट्रिस लात्रों ने कहा, तस्करों के लिए कोई सरहद नहीं है।
2: Les trafiquants n'ont pas de frontières.
1: वे नए नए तरीके अपनाते हैं, नए पदार्थ भी, अपने पदार्थों को देश में लाने के नए नए माध्यम भी तलाशते हैं। इसीलिए संयुक्त रूप से काम करना चाहिए, जानकारियों का आदान प्रदान होना चाहिए। अंदरूनी मामलों के सचिव कान ओई फोंग वंशुरन ने कहा, नई चुनौतियां हैं, मादक द्रव्य, अंदरूनी सुरक्षा, अब मनी लॉन्ड्रिंग भी है। इस साल FCC औपचारिक रूप से ग्रुप में शामिल, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में साइबर अपराध भी लाना चाहते हैं। इस समारोह में मौजूद अटॉर्नी जनरल गैविन ग्लोवर ने 2011 से कायम इस सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में हेरोइन और एम्फेटामिन के लिए एक ट्रांजिट रूट नहीं, ये बेहतर रूप से निगरानी वाला इलाका बन सकता है और साथ में पूरे महासागर का सबसे कोऑर्डिनेटेड इलाका भी। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पोर्ट लुइस में मॉरिशस और रीयूनियन के बीच सुरक्षा पर 9वीं कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बैठक के सिलसिले में ये हस्ताक्षर किए गए। रीयूनियन के सैंडिनी में अपील कोर्ट के महाभियोजक फाबियन अज़ोरी भी न्यायिक सहयोग के लिए मॉरिशस आए हुए हैं। दोनों पक्षों के पुलिस अधिकारियों ने एक समान स्ट्रैटेजी से संबंधित अपना आदान प्रदान जारी रखा, जैसे सीमा पार अपराध के साथ जुड़े खतरों का बेहतर तरीके से सामना करना।
0: फ्लैक स्थित डॉक्टर ब्रूनो चोंग मेडिकल सेंटर में बहुत जल्द ड्रग्स की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नया रेजिडेंशियल सेंटर शुरू किया जाएगा। इस केंद्र में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतों के अनुसार उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्थल का दौरा किया और इस परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। इस नए केंद्र का उद्देश्य ड्रग्स पर निर्भर लोगों को उचित चिकित्सा देखभाल, सहायता और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्ल्ड हॉट डे 2026 के अवसर पर मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल रही है। मॉरिशस टेलीकॉम के 3 शोरूम में जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। साथ में ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पिंक अक्टूबर की शुरुआत भी हो चुकी है। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर

0: पेश है ये विवरण याचना मिशा के साथ।
1: इलाज से बेहतर है बचाव, इसी उपलक्ष्य में देश के कुछ कंपनियों में हृदय संबंधी बीमारियों की जांच और जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। गतिविधियों की शुरुआत मॉरिशस टेलीकॉम के साथ हुई। अगर आप जागरूकता अभियान चलाते हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हम लगभग हर घर तक पहुंच सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए। मोबाइल एप्लीकेशंस या छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। ये अभियान अक्टूबर महीने के दौरान देश की अन्य कंपनियों में भी चलाया जाएगा। साथ में पिंक अक्टूबर की शुरुआत भी हो रही है ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीमारियों से बचाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती का जिक्र किया। कैंसर के मुद्दे पर जितना जोर आज दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। हर महीने करीब 250 से 300 कैंसर मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं, जबकि देश में हमारे पास केवल एक ही राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल है। इसके अलावा देश में ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन्स की भारी कमी है। इसी वजह से मॉरिशस सरकार भारतीय पेशेवरों को मॉरिशस आने के लिए आमंत्रित कर रही है। वहाँ मौजूद आईसीटी मंत्री ने बताया कि ई हेल्थ कार्यक्रम के तहत निजी क्लिनिक्स और सरकारी अस्पतालों के बीच स्वास्थ्य संबंधी डेटा के आदान प्रदान को लेकर चर्चा चल रही है। ई हेल्थ का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है।
0: एनटीसी में सोमवार को हुई अव्यवस्था ने नए रोस्टर को लेकर जारी विवाद पर बात की, मतलब इस पर बात करते हैं। ये नया रोस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से तैयार किया गया है। ट्रेड यूनियनों ने खास तौर पर इस कार्य शेड्यूल को लागू करने के तरीके और इसके कारण ओवरटाइम के घंटों पर पड़ने वाले असर पर सवाल उठाए हैं। सीटीएसपी ने प्रबंधन के साथ बातचीत की मांग की है। इस विवाद को लेकर परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और खबरों को हम जारी रखते हैं। अंतानानारिवो मेडागास्कर में बसे मॉरिशस में तुर्की गणराज्य की राजदूत हालिमेर एब्रू डेमिरजान ने स्टेट हाउस रेज्यू में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इनमें व्यापार, स्वास्थ्य, हवाई परिवहन और समुद्री सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। ये मुलाकात मॉरिशस और तुर्की के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधिमा सिबुरन।
2: मॉरिशस और तुर्की के बीच संबंध करीब 200 साल पुराने हैं। ये संबंध दोनों देशों के बीच आधुनिक राजनयिक संबंधों की औपचारिक स्थापना से भी काफी पहले से चले आ रहे हैं। तब से दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग करते आए हैं। तुर्की की राजदूत के रूप में अपना कार्यभार आधिकारिक रूप से संभालने के बाद हाल ही में एब्रू डेमिरजान ने स्टेट हाउस में गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक मुलाकात रही जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। वे बताती हैं,
3: Turquie et Maurice disposent d'un grand potentiel pour renforcer leurs relations dans de multiples secteurs.
2: तुर्की और मॉरिशस के पास बहुत बड़ी क्षमता है ताकि दोनों देश विभिन्न सेक्टरों में अपने संबंधों को मजबूत कर सकें, जैसे व्यापार, पर्यटन, हवाई परिवहन, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि। आज की मुलाकात का उद्देश्य रहा मौजूदा सहयोग को मजबूत करना।
3: Et moyens de renforcer notre coopération existante dans des diverses d'intérêts mutuels.
2: बैठक के बाद राजदूत ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उनके साथ अंतानानारिवो में तैनात कमर्शियल सलाहकार सेल्सुक मर्ट और मॉरिशस में तुर्की के होनोरेरी कंसल आश्वानी सूद भी मौजूद थे।

0: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, फ्लैग स्थित डॉक्टर ब्रूनो चोंग मेडिकल सेंटर में बहुत जल्द ड्रग्स किल्लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नया रेजिडेंशियल सेंटर शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्थल का दौरा किया। इस नए केंद्र का उद्देश्य ड्रग्स पर निर्भर लोगों को उचित चिकित्सा देखभाल सहायता और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है। खिस्तल विभाग से यचना मिश्रा।
1: ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र के हार्म रिडक्शन यूनिट में नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज और देखभाल जारी है। इन मरीजों में यह युवती शामिल हैं। कम उम्र से ही वह नशे की लत के कठिन दौर से गुजर चुकी हैं। कुछ ही हफ्तों में एक रेजिडेंशियल रीइंटीग्रेशन सेंटर भी इसका हिस्सा बनेगा। इसका उद्देश्य मरीजों को एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां उन्हें पुनर्वास की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग मिले और धीरे धीरे समाज में दोबारा वे अपनी जगह बना पाएं। जब हम सिंथेटिक ड्रग्स की बात करते हैं तो इसके लिए खास इलाज हैं, जैसे हेरोइन के लिए मेथाडोन है, रिहैबिलिटेशन भी इसके लिए जरूरी है। नाडेक की कोशिश यही है कि हम ज्यादा रिहैबिलिटेशन केंद्र खोल पाएं। एनजीओस, सिविल सोसाइटी, स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच तालमेल भी बढ़ाना चाहते हैं। हम ये भी विचार कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र को कैसे इसमें शामिल किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस केंद्र का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न इकाइयों की व्यवस्था और मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे अलग अलग स्थानों का जायजा लिया। इलाज करने वालों को डॉक्टर की सलाह पर भर्ती किया जा सकता है। यदि वे चाहे तो यहाँ एक दो हफ्ते इलाज के लिए रह सकते हैं। नई इकाई आने वाले हफ्तों में कार्यरत होगी।
0: और शिक्षा और मानवीय मूल्यों के माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, महात्मा गांधी संस्थान मोका में आज संस्कृत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसी विषय पर बात की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने एक आचार संहिता के जरिए इस क्षेत्र को स्वयं नियंत्रित करने का वादा किया है। वे कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर व्हाइट हाउस में एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसी बाध्यकारी नियम व्यवस्था के विरोध में है जो चीन के मुकाबले इस उद्योग की प्रगति को धीमा कर सकती है। और उधर मोरक्को के राजा मोहम्मद छीन फतिमा इजहरा अल मंसूरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 50 वर्षीय फतिमा इजहरा अल मंसूरी इस पद पर आसीन होने वाली मोरक्को की पहली महिला और अरब जगत में प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी महिला हैं। रॉयल पैलेस ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि शहरी नियोजन मंत्री और मराकेश की मेयर फातिमा इजहरा अल मंसूरी को नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

6:17 हैं। देश विदेश के इन खबरों के बाद चलिए अब जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम अच्छा रहेगा और कल भी धूप खिली रहेगी, सिवाय कल शाम को बादल कुछ घिर आएंगे। देश के पश्चिम में हवा हल्की रहेगी और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। कल दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 5:51 पर होगा।

6:18 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

शोक समाचार सुनिए। नंबर 13, डॉक्टर मोपले बुबासे में। नंबर 13, डॉक्टर मोपले बुबासे में 90 साल की, 90 years old, श्रीमती दयवंती पदारथ। श्रीमती दयवंती पदारथ पैदाशी नाम रामचरण, और जिन्हें लोग चंदा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, कल दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 13 डॉक्टर मोपले बुबासें से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांलियो व्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलव्यू मोहल में 66 साल के, 66 years old, श्री राम कृष्णा रामांजुलू। श्री राम कृष्णा रामांजुलू, जिन्हें लोग देव नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे इनके मकान मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलव्यू मोहल से उठाकर बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। मोसलमा VOS ब्रह्मस्थान में 88 साल के, 88 years old, श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन। श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन, जिन्हें लोग प्रसाद नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ कल सुबह 9:30 बजे, कल सुबह 9:30 बजे इनके बेटे आनंद सुब्रन के मकान मोसलमा VOS ब्रह्मस्थान से उठाकर बो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। जाचुकुलेन रोड बोनाकोय में 76 साल के, 76 years old, श्री बालकरण जीत दियाल। श्री बालकरण जीत दियाल, जिन्हें लोग मून नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 9 बजे इनकी पत्नी कृष्णावती जीत दियाल के मकान जाचुकुलेन रोड बोनाकोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउंडमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। टेम्पल रोड खैवकोया में, टेम्पल रोड खैवकोया में 72 साल के, 72 years old, श्री प्रेमचंद पदारथ। श्री प्रेमचंद पदारथ, जिन्हें लोग राजन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी रंभा पदारथ के मकान टेम्पल रोड खैवकोया से उठाकर खैवकोया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। ब्रांच रोड फोजूसाक में 56 साल की, 56 years old, श्रीमती नम्रता देवी रामजीतन। श्रीमती नम्रता देवी रामजीतन, जिन्हें लोग सुबेरा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे इनके भाई भावेश रामजीतन के मकान ब्रांच रोड फोजूसाक से उठाकर फोजूसाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। बिहारी रोड पिचिगाफ्री में, बिहारी रोड पिचिगाफ्री में 53 साल के श्री जय कृष्ण रामलखन। श्री जय कृष्ण रामलखन, जिन्हें लोग मंगल नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे इनके मकान बिहारी रोड पिचिगाफ्री से उठाकर दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। पालमा जंक्शन बैसे रोड कैटोबोन में 74 साल के, 74 years old, श्री पतिदेव परसीद। जिन्हें लोग रामेश नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। वे पहले समाज सुरक्षा मंत्रालय में काम करते थे, मतलब वे पहले सोशल सिक्योरिटी में काम करती थी। इनकी अर्थ थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान पालमा जंक्शन बासें रोड कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। और नंबर 321 एवेन्यू ओलिये कैटोबोन में 56 साल के, 56 years old, श्री जवाहरलाल जगेसर। श्री
जवाहरलाल जागेसर जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ कल दिन के 1 बजे इनके मकान नंबर 321 एवेन्यू ये काठोबोन से उठाकर गांधी पालमा कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: BBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 1 अक्टूबर को दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वैलेंटिना और पेटिकॉन फिनिक्स के इलाकों में CWA पेटिकॉन और पेटिकॉन विलाज, फिनिक्स बेवरेज, ग्लास गैलरी और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सिर्फ भी अपनी ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

收音机前的你，大家好，我是张大卫，很荣幸今天能继续主持这个节目，希望接下来的歌曲能陪伴你好好享受这半个小时。

心情不好的时候，给自己一点时间，慢慢就会好起来。

0: NBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। तो चलिए रात्रि के हम सफर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और चन भक्ति गीत आपकी सेवा में हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेकर। कहते हैं शक्ति हमें साहस धैर्य और आत्मविश्वास देती है। तो आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

ज्योति है जो अंधकार में भी मनुष्य को सही राह दिखाती है। जिस हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ शक्ति कभी कम नहीं होती। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओ, शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य के साथ खड़े रहने का साहस भी है। जब मन कमजोर पड़ने लगे तब हम भगवान का स्मरण जो है हम करते हैं ताकि हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो ये कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रही है।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। हम शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। शक्ति हमें यह संदेश देती है कि अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानिए और विश्वास के साथ आगे बढ़े। और भक्ति शक्ति को दिशा देती है और विश्वास उसे दृढ़ बनाता है।

श्रोताओं, मन में शक्ति, हृदय में विश्वास रखें, हर कठिन राह पर प्रभु का साथ महसूस हम करेंगे। तो आइए इसी के साथ जो है हम भजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबिनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस पुरनूर नशरियात का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। सलफ़ सालहीन समझते थे कि तदब्बुर कुरान का सबसे अजीम तरीका ये है कि हर आयत में अल्लाह को तलाश किया जाए। यहाँ अल्लाह की रहमत कहाँ है, इसकी हिकमत कहाँ है, उसका लुत्फ कहाँ है, उसका अदल कहाँ है, उसकी कुव्वत कहाँ है, उसका करम कहाँ है।

खां उतार के हमारे लिए ईद हो हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिस्क दे और तू सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। हम आपकी तवज्जो के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: कमल कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

सब संगतियों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल एम टू रेडियो मॉरिशस 719 के हर्ट्ज पर यानी कि एम मोड पर और 94.95 मेगाहर्ट्ज एमबीसी रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर आईएम और एफएम पर दोनों पर चलता कार्यक्रम एमबीसी रेडियो मनोरंजन एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तहर काबी से लेकर रात के 11 बजे ले थोड़ा मन करता को भोजपुरी गीत सुन के मरवा घुमावा का जगह जगह पर। और आज है बुधवार की रात 30 सितंबर 2026 तो जुन महीना है सितंबर का महीना समाप्त हो गया हुआ था और बेशक काल से अक्टूबर के महीना शुरू होते ही अंतिम तारीख सप्ताह महीना का अंतिम तारीख अंतिम रात किस संगे बिताओ अभी से लेके रात के 11 बजे ले और जी प्रताप सिंह सीतालू के साथ नाच गाना

म्यूजिक धूम धड़ाका और अभिषेक हमने के प्रोग्राम चला था रेडियो के लहरों पे, साथ में टिकटॉक और रेडियो मॉरिशस पर भी चला था। टिकटॉक पेज पर हमने सकबर देखे, वहाँ पर सकबर गीत मांगे SMS के जरिए हमने के टिकटॉक पेज पर। अच्छा सुर कर रजा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के एगो बहुत ही धमाकेदार गीत के साथ मुकेश चेरी की गावल गीत के बोल है गायक।

इतने सबको जाना कि दुनिया भर में आजकल बड़ी महंगाई बा और महंगाई के ज़माना में चेहरा थोड़ा बहुत बचत करेगी। अब देखा जैसे आगे रोज के जाते मॉल में खाई हुई तो अब रोज के नहीं सकबा उसे करे। हाँ एक सप्ताह में एक दिन चक्कर जरा जाए मना नहीं बा जाएगी, पर आगे धीर कोई रोज के जाते मॉल में रात के वक्त डिनर करे। पर अब जब महंगाई का ज़माना रह रहा था चेहरा थोड़ा बहुत सैक्रिफिस करेगी ना। हाँ इन्फ्लेशन तो बढ़ ही जाला और ऐसे में दाम जो है दूसरे देश के भी सर चारों ही हाल बाए कहे कि जब दूसरे देश से आवेला तो महंगा वहाँ रहेला था या मॉरिशस में आवेला तो महंगा भी रहेला। तो महंगाई का ज़माना में भैया थोड़ा सुन का पर उपजा चेहरा थोड़ा सैक्रिफिस करे के और ढेर डिपॉन्स नहीं करे के। मान लीजिए 10 रुपया कमावत हुआ तो 5 रुपया इस्तेमाल करिए, 5 रुपया रखिए आगे दिन थोड़ा काम आई हो कि नहीं। अब जो पैसा मिली सब पैसा गास्पी कर दे बस, सब पैसा डिपॉन्सी कर दे बस, पोस्ट में कबू को फुटल सुने रहेला। एक खुद कोई परिवार में सकेला बीमार हो जाए है या कोई दुर्घटना हो जाए तब पैसा चहला, तब पैसा के सदुपयोग हमेशा चाह करेंगे। और जब महंगाई के ज़माना इसे बढ़ ले जाला तो चहला अच्छी तरह से सोच समझ के शॉपिंग करे के या घूमे में जाए के है और चेहरा सोचे के कि जो पैसा हमने के मिला था वो पैसा के सही इस्तेमाल कैसे करल जला। रात के 9:14 हमने के साथ देखा थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला खा ले पी ले जी ले भैया अगी तो हमें चलावत ऐसे ही सब संगतिया के नाम जो हम के साथ जुड़ल हवन जा स्वीति संजय देरपोल किशन वनिश्री बंधु का देर खुदा दिन।

0: na Rita Usha Daya Atish Fazana Gulamasen Zaina Vishal Lakshman Sushi Malakunj Rampa Nitusha Shobha Pamplemuse Petam Mahmood Alex Jaya Subi Rohi Manin Pandya Vijay Kishore Limbu Kushwaha Ji Dimitar Pebota Karishma Jahage Gita Devi Raji Fir Yagla Gichalapsa Sandhya Uriya Priti Khate Kiara Mala or Kishore or Mala Mki Namaste Bata Namaste Mala Vaison Bell Hello Agi Torunam Manisha Tarawanti Raja Agi Torunam Tarawanti Raja Ram Agi Tor Khatir Asha Lakhnot Agi Torunam Boss Kaise Ba Premila Agi Toru Khatir Abhi Ego Sangat Yawala NP Ukase Milabja Hello Hello.
1: Hi, Pratap. Namaskar.
0: Namaste, ji. Tohar shubh naam.
1: Surya Dev, Lal Mati se bolat hai, bhaiya.
0: Haan, bhai Surya Dev. Tohar swagat ba, su swagatam. Bola.
1: Haan, jane ke ego geet sun le, Santewa ke nama jana, Bhojpuri bhasa gaavela. Bhojpuri bhasa.
0: Santewa ke naam nahi jana tawa?
1: Nahi.
0: Bhojpuri bhasa. Ali chalao ab sahabhi.
1: Haan, kaun naam hai Santewa ke bhaiya?
0: देखा भोजपुरी भाषा जब लापाकर में कंप्यूटर में डाला थे इसा तब इनके ढेर मना गीत देवा था भोजपुरी भाषा बोलिया भोजपुरी की मिठास अब तू कौन सी खोता सुने के
1: हाँ वो अब एक बार सुन ले रात के तक सुने के लिए नहीं मिला लाल
0: पाफे ना यार भी भोजपुरी भाषा बायो गीत विशाल बुधा गए लग बाय गीत वाके कर कहते
1: सुना दे परिवार के हमारे हमारा पत्नी सभी था
0: और आज के दिन कैसे बीता भैया
1: दिन सब ठीक पे भी ठेला गते गते
0: तो तोहर लगे गरम करा था कि ठंडा कैसे बा लेता
1: हम लाल माची रे लाल माची
0: होने लेता कैसे बा हवा हवा
1: लेतो हवा हवा बहुत हवा
0: पानी नहीं
1: पानी या दोता नहीं मिलल बस में हवा ठंडी ठंडा गरम
0: हाँ
1: अभी पानी रोज मिलते रहला
0: अभी निमन से गरम नहीं करा था होने नहीं
1: नहीं नहीं नहीं कबो गरम कबो ठंडा आज देखा
0: ठंडा में जो कहते आम फरता तो बाजार में जीवे तो बड़का बड़का पहिया आम ढोल बुझाला ना जैसे देखा भी जैसे जैसे हम बाजार जाते हैं हम के बड़ा बड़ा आम मिला था बाजार में बोलते हैं तो लीबिया पे गए मांग तो बोलते हुई बोले कौन सीजन के मांग है मुझे अच्छा बात
1: आंटे
0: आंचार मिला था
1: डाली थी हाँ लीबिया में हुआ था
0: तो दौड़ नहीं पाई लिखियो हो लगी क्या जाना था अरे भैया तुम्हारे गीत भोजपुरी भोजपुरी भाषा होता है तुम्हारे खातिर भौजी खातिर सब सूर्य देव परिवार खातिर बहुत धन्यवाद हमने के सुने कर ला नमस्ते और उनको संगत वाला बेगोल से मिल अब जा हेलो आदाब आफिज कैसे हवा हाँ बोला अभी रेडियो पर बात करते हो अगला गीत के घर खातिर कौन गीत है
2: हेले साबुन हेले
0: लुंडा गिकर खातिर
2: हमरे जे हमरा के लिए मत कोई नहीं
0: बा हां जेकर कोई नहीं बा कर खुदा रहला ठीक बा एमबीसी तक परिवार तो तू भी हमें के परिवार हो तो खातिर गीत चली बहुत धन्यवाद आफेज हेले साबुन हेले लुंडा है गीत जे हम एथिक तेते एथिक गए लगबा नीरज गुप मधु हेले साबुन हेले लुंडा खजब सा गीत है गीत बा हाँ मिला मिला मिला मिला मिला मिला गीत ओके आरोग्य संघ जब लाइन पे ओगर से मिला जा हेलो
3: हेलो
0: नमस्ते हेलो
3: हेलो
0: हाँ नमस्ते बात कर
3: नमस्ते प्रताप जी
0: तोहर राजू के वॉल्यूम ढेर जोर दे लो माता जी राजू आ कमती कर दे नहीं नहीं नहीं बोली हमने के कान निकला था माता जी गीत
3: कम आली बोला
0: आली बेसी कर दे
3: रो तो हर खीसा सुनी ला
0: हो कैसे लगे ला हमने की
3: खीसा तो हर खीसा तो हर चटनी तो हर तकारी तो हर दवाई पता जी
0: अच्छा वाना माता जी थोड़ा थोड़ा कुछ सीखे के भी मिले ला
3: अच्छा
0: का होल माता जी कुछ होल
3: हाँ
0: तो लाज में तो हाई होला ना
3: लाज में हो गया
0: डॉक्टर का बोला था दवाई

0: ख्याल के
1: आ यो डॉक्टर त दवाई दे के जा ला जा बे त छो दुले सबके
0: सब महाराज जी रहेला
1: रोज पीहेला बेटा
0: नै त का कर बा माता जी कुरास ये न
1: अब से रुलत ने रहेला
0: ए त आगे जाते गीत गावे सगरो
1: हां हो
0: ए त
1: नहीं बोली टेलीविजन में गई ले रही
0: हां तुम बोलते तो करते जो मैं देख ले रही
1: हां जे बोला खूब जोली
0: बा ए त सन जोली से जोली सारी जाके सन सब कोई आ रहा लग
1: हां
0: एगो ग्रुप में आ रहा है एगो ग्रुप में आ रहा है गावे ना
1: हां आप जाने का बोला था
0: हां बोला बोला
1: हमर पतो के लानी दिया से बात बेटा
0: ए ता को नाम बा पतो के
1: ओके नाम बा किरण
0: ओके किरण के भौजी की वजह से हैप्पी बर्थडे
1: हां अरे लिखा ना मन तो
0: हां हां बोला बोला बोला
1: ओके नाम बा किरण
0: हां
1: ओकर पति के रविन आर ओकर एगो देवर बा सुदेश
0: हां
1: एगो अशोक एगो सुजीत
0: All right.
1: आर एगो ओकर बेटा है प्रवेश आर ओकर बेटी संजना
0: हाँ
1: हम ओकर सास हैं
0: ए ता सासु माँ देखा अपन पतो के कितना
1: संता सुकारी
0: प्यार से खुशी रहेला गौ भाई से जन सास अपन पतो के
1: हाँ अभी आउरी फामी बाकी इतना वो बोल बोल नाम बहुत बा बोला थे हम हमार हमार पतो हमार संगे रहेला
0: ए ता
1: बसंत सुपुर
0: मिठाई के ऊपर बा ना ना ना ए कागे चाची बसंत सुपोल है बोले मिठाई के ऊपर मोमबत्ती बा हम जानी ना आली चला दियो अब से चाची बहुत
1: जान दिया कहते हैं बसंत सुपोल हाँ हाँ हाँ
0: हम डाल दे फिकर नहीं करिया बहुत धन्यवाद चाची
1: बहुत धन्यवाद तोहरो तब तो हर टीम खाती तो हर खातिर
0: सब अरे सुनिया भी कहानियां अब से बॉलीवुड न्यूज हाँ डाल दे आली बहुत धन्यवाद और एक श्रोता हवन जा लाइन पे हेलो
2: हेलो भाई जी नमस्ते
0: नमस्ते भैया के हवजा
2: विजय जेनी फासा जा सामुनी से
0: हां हाय तुम के बरकत संगत है राजू के कैसे समझ
2: भाई जी हाल चाल कैसे
0: एकदम हम तक जब आए तक गमत कभी टिकटॉक पर हमने के लिखा था टिकटॉक पर ऐसा
2: हां हाय सुना ना तो गप्पो गमाल एती देख सुना था ये तो हर डायलॉग सुना था 9 बजे से
0: देखिए बोला था ए है ना सुना ट्रांसफर का होता आंख मारेला ए भौजी के आगे को ना भौजी के आगे को ट्रांसफर के आंख नहीं मारिए भौजी बेलना से दे
2: बेलना अब तक डाल गोटनी सब बात
0: हो देखा अरे बोला था भाजी कौन गीत सुन बा
2: हाय सुना ना जाना तो ये की सोचे जी की एगो गीत पा ना लेनो से आवे गो बुढ़ावा
0: मुकेश चेदी
2: लेनो से आवे गो बुढ़ावा हम तो झुमर नाचिला
0: हाँ हो जानी जैसा हाँ बोला बोला
2: गीतवा डाल दिया सब बेटवा सात परिवार
0: हाँ
2: अभी हमार दोस्त बाटे ये थी ये गणेश जगनारायण जी अभी हमार दोस्त जाते ला तो हर गांव में रहिला
0: सासरी बनो माली हाँ जी तो
2: फजीर के बेटा रहल
0: कैसे अच्छा बना
2: वजीर के बेटाली जमा रे भाई उठा बिहार बिहार गीत से सुल्ला काल
0: हां सुन रहा हां अवे रे रा माता बा रही ला वे परी
2: माता बा रही ला हां डाल दिया भाई जी
0: आले हां डाल दो सर
2: हां बोला जा ना आले शुभ रात्रि नमस्ते
0: शुभ रात्रि भैया सुनते रह 11 बजे ले और को संग दिया बा हेलो हां त चला भी तेरा सुनब जब भी भोजपुरी भाषा के गीत एगो श्रोता मंगलक और बाग टू बाग टू गाना रही आफेज मंगलक बा हेली साबुन हेली लुंदा और एगो श्रोता मंगलर भोजपुरी भाषा बाग टू बाग टू को गाना पहला गाना विशुल बोझा के भोजपुरी भाषा और दूसरा है नीरज गुमधु के हेले साबुन हेले लुंदा और इस सब दोनों गीतों जो हम चलावा दी से सब संगत यालो के नाम और आप हवन जा ए आर आशा लखनऊ तो हेलो वेन लवना और ओके फिर विज कुनाय सुमन जलसा ग्रुप नूरज हाय नूरज नमस्ते नुसा दलम और अगला गीत चली सुमन जलसा ग्रुप के नाम अगला गीत सुनीता और परमानंद खातिर बबीता भी सा देवतन कमला भी अमन और अगला गीत चली माता जी

रीता और मौसी रेणुका खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। चल एक साथ सुने गीत, भोजपुरी भाषा और हेले साबुन हेले लुंडा, बैक टू बैक दुगु गाना।

0: रात के 9:34 मिनट होता है संगत लाइन पे। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्ते प्रताप जी।
0: आशा जानू जी नमस्ते, कैसे समाचार?
1: अच्छे बा, हमें लागे तो सब बढ़िया से रहता, कहा लागे?
0: एकदम ठीक ठाक। और आज खाना खजाना सेक्शन में कौन सी अन्य हुआ?
1: सबसे

0: पहले सबस्त श्रोता लोग के आशा जाने के उसे सादर नमन और बड़े जन लोग के सादर प्रणाम का तंदे रनी बिसन के लड्डू आता सोचा ते तनिसन तो लोग के पसादी किया दे
1: हाँ ग्रेओ के पसादी ग्रेओ
0: ग्रेओ के
1: सूजी सूजी बोला से ना
0: हाँ
1: सूजी के पसादी अरे बोला था अभी आजकल पूजा हुआ था गोविंदन बा फिर वेंकटेश्वरा भी पितरपक भी है और साथ में भी दुर्गा नवमी भी हो तजन पसादी है सब में हो सब में भोग लगे रहे हैं
0: सब में और जैसे नवरात्रि में तो देवी माँ के प्रिय
1: है हाँ आली तो बोला आशा जी कैसे बनेगा पसादी
0: तो सबसे पहला हमें आवाज सामग्री की ओर पहला लिया अभी तो सुप्रिया मौसम सब में जेबा तो पाके हुए से तोहरा सूजी मिली तो लिया सूजी और चीनी और दूध पिसल हुआ इलायची
1: हाउ जन ग्रियो बोला तो ग्रियो ग्रिये कि बिना ग्रिये होला
0: नहीं जाने लाना हरियो में जो कालते हैं कोनो कोनो ग्रियो ग्रिये होला और जो ऑलरेडी भुंजार गल बा
1: तो जन भुंजार गल जैसे अच्छा ना
0: जन भुंजा कर बा हाउ अच्छा है पर हयो के थाका नहीं करिया जब तक जन घयो देख बा नहीं भुंजा बा तनी एक कुए घी डाल के भून दे बा तो एगो बढ़िया खुशबू रही हो
1: हाँ बोला
0: तो ये जैसे अपने पहचान ले बा जन घयो घये हो कर रहेला वो अपने से एगो ब्राउन कलर रहेला और जन घयो नहीं घये है वो उजर कुलेट में रहेला तो और ले बा हाँ दूध चीनी इलायची बादाम और सबसे जरूरी घोलानी देखे हमें के पुरानिया लोग सॉन्ग बोली लाज और तहसुन लावानी कोको कापे और है सब सामग्री वा लेके जो सबसे पहला तो अपन कढ़ाई चढ़ाइय कढ़ाई चढ़ा दे बट दलिया दो चम्मच घी जब दो चम्मच घी डाल दे तो ओकरे में डलिया तोहर घोलानी और रेजेसिक पिसल हुआ इलायची और है सब डाल के तरसन भुंजिया हवे में तब भून दे
1: कैसन आग में धीमा आग में कि बड़ा आग में कैसे क्या कर
0: नहीं अभी के लिए तनी धीमा आग कर
1: हाँ ढेर गर्म नहीं तो नहीं तो जर जाए
0: जर जाए सही बोल रहा है जर जाए तो हवे रेजेसिक घोलानी और इलायची है सब डाल के ओके तनसुन भून दे पर तब ओकर में डलिया पानी तो ढला चार कप पानी डलिया चार कप पानी डाल दे बा तब ओ में डलिया दो कप चीनी तो चार कप पानी डाल बा तो दो कप चीनी और जे ढेर मीठा नहीं खोज बा तो एक एक कप चीनी सब डाल दे जब अब हाउ सब डाल दे बा अपन यहाँ हाउ सब संगीत डब के तब डलिया तीन कुए दूध तब वो कर में सब बच्चे स्वाद छाती इलायची के साथ लवानी वो डाल
1: बोला तीन कुए दूध गाय के दूध रही थे सकब से डाले या लापू जी रही हो सकब से डाले
0: जान तो हर इच्छा गाय वो के दूध सकब डाले लापू जी ले वो सकब डाले और वो कोको रापे है सब डाल के ओके तनी डब के दिया अब देख बा टेंशन दबकता तो चलाइते जाइए और अपन जो तोहर घयो बा भुंजल घयो ओकर मैं चलाइते जाइए तो चलाइते जेबा अपन घयो डालते जेबा जैसे देख बा तोहर कढ़ाई अब समेट लेवा तो हाउ घयो बा सब चीज मिलाओगे हो गली मन से तनी सूख गल जिमन से सूख गल जब सूख गल तो गैस बुता देबा तो ओकर में ऊपर से वैसे टेंशन एक कुया घी डाल के चला दिया ये घीवा काहे में जैसे डाली ला
1: जब कोले नहीं हुई कहावा में
0: हाँ कहावा में एक तक कोले नहीं हुई ऊपर से ओकर में गुजुली खुशबू रही और ओकर स्वाद दूसरे हो जाना
1: ओके
0: स्वादिष्ट हो जाना तब सब तोहरे से ऊपर से तरसन घी डाल देबा तब लिमन से चला उला के लिमन से तबरे से ओकर में तरसन डेकोरेशन करने खातिर जैसे कोको रापे बादाम खाजे और सब दाल उल के लिमन से सब चला दिया संगे तब तोहर प्रसादी तैयार अब एक सब भोग लगा के और जाने ला प्रसादी तो गरम गरम चाखो दिला गरम गरम इलायची भोला चाह बना देबा और अपन प्रसादी टेंशन ले लेबा बहुत स्वाद।

0: और सब परिवार संगे बैठ के निमन से ओकर सेवन करबा तो एक संगे प्यारो बढ़ेगा,
1: तो एक दिन प्रसादी
0: प्यार और
1: कितना दिन
0: मिठास
1: सकल
0: बढ़ेगा।
1: जरा फ्रिजडे में रखे?
0: प्रसादी फुसदिया में सब एगो पास उमे घी डाला गोदा ना ता एगो 4 दिन 3 दिन तीन
1: हाँ,
0: दिन रह
1: तो
0: जाए,
1: जिसे
0: 3 दिन
1: बतेला
0: रह के
1: आशा जानू,
0: जैसे
1: बड़ी आसान है प्रसादी बनाए के?
0: हाँ प्रसादी बनाए के बहुत आसान है। जैसे तू जैसे तोहरा समय मिली तो मन कर ल, जैसे जब पानी बरसे रहता देखबा पानी बरसता तो काहे नहीं तनी गर्मा गर्म प्रसादी पका
1: प्रसादी
0: देबा
1: की बात
0: चाय
1: बताओ, फजीर
0: संगे।
1: के आज फजीर के 5 बजे हम उठ के प्रसादी पका के खैरी और चाय पी ऐसा मजा लगता है खाए के प्रसादी। आशा जानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रसादी की रेसिपी जो देला हमने के संगतिया लोग गोविंद
0: और
1: जैन
0: हाँ
1: के पूजा
0: प्रसादी
1: करते।
0: एगो
1: हाँ
0: आर एगो बात तोहर से बोला था, अभी हमार आज हमारे एगो सहेली के जन्मदिन है
1: को नाम
0: नंदिनी
1: बा, को नाम
0: उकलू,
1: बा।
0: नंदिनी उकलू।
1: हाँ, तो नंदिनी उकलू के ढेर मना प्यार आशीर्वाद, हैप्पी बर्थडे बानी वैसे।
0: हाँ वो कालबा सहेलन तो के जन्मदिन के बधाई देवर तुरंत हमारे माताजी कुमारी और पूरा जानू परिवार और
1: हाँ
0: हमारे बहन आरती भांजा लुबा शुभम ऋषभ बुनेराज और उनकर माताजी उनकर बहन जेनिता रीना प्रेमिला परी सब परिवार के संगे हम लोग के जन्मदिन के बधाई देवर तेंजे और उनकर खातिर एगो बर्थडे सॉन्ग चला दिया।
1: जरूर चलाओ सर।
0: और आप सभी सुने होला श्रोता लोग के बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद
1: हाँ जी,
0: और शुभ रात्रि और प्रताप जी के प्रोग्राम भोजपुरी तड़का सुनते रहिए, मस्ती में
1: रात
0: झूमते
1: के 11
0: रहिए।
1: बजे लेता जब जब हम प्रोग्राम हुई रात के, तो खाना खजाना सेक्शन में आशा जानू से सुनब सर नया नया रेसिपी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: शुभ
0: प्रताप
1: रात्रि।
0: जी,
1: ओके
0: शुभ रात्रि,
1: बाय।
0: बाय।
1: और ऐसे में चला सुनब जा आशा जानू की बहुत बहुत धन्यवाद देवते सर कि कालू हम की रेसिपी दिला का आज जो दिला खाना खजाना सेक्शन में। तो आज भी बात कही सर सूजी के प्रसादी कैसे पकाएला सर, और आजकल पूजा हुआ था जैसे कि बोली अभी गोविंदन हुआ था, अभी फिर वेंकटेश्वरा पूजा रही, अभी पितर पक्ष, ओकर बाद दुर्गा नवमी रही। तो ये सब पूजा पाठ के दिन प्रसाद धर्मी चढ़ाला से भगवान के भोग लगाएला से तो बहुत आसान बन, जैसे आशा जी बतैलन, कोशिश करिए देखिए तो हर प्रसादी एकदम ही स्वादिष्ट बनी। और ऐसे में सुनब जा अगला गीत, सनी बॉयज ग्रुप गैले वन गीत, गीत के शीर्षक है खरगोश। आगे चली मेविन की ओर से जानवी के लिए जोन रहेलन बनते, और आई गाना चली साराती जी के नाम रहेलन रिव्या जी पोस्ट। और है कि जो हम चलावती सा विकास नारायण खतेर लोंग चिबुग राजा स्टीव और प्रवीण भैरव श्याम मंगल राज मन्ना जिमी दुखिया सुदेश जसवाकर बेटी और महाराज कुमारी और सब उनकी संगत यालो के नाम जे कोई खुशी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुने के। और एक गीत चली सकीना जफर अली के नाम माधुरी, एक गीत और नाम विजय रघुनाथ, एक गीत तो नाम विजय नीलंबर और मंजूरा कौली सर, एक गीत और पति संदीप कौदे मास पावे रहेलन लवना की ओर से और प्यार केविन सुखी खातिर, फिर एक गीत आध्या गोकुल जा नीलिमा और सब रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन के हमने के रेडियो फैंस के नाम से एक साथ सुना जा है गीत, गीत के शीर्षक है खरगोश।

तभी संजय गोविंद यानी किसानी बॉय से सुनाते इस खरगोश सुरा गाना बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर गीत रात के 9:50 और संगत्यारो गात कर हमने पितृपक्ष देर कोई पितृपक्ष बोलेला मनावत है अब पितृपक्ष कौन छ पितृपक्ष कौन छ हमने के लड़का लोग नहीं जाने रह आज के नौजवान लोग तो पितृपक्ष जो है हिंदू परंपरा में अपन स्वर्गीय पूर्वज लोग के अपन माए बाबूजी अपन दादा दादी अपन नाना नानी और इनके पितर लोग के याद करे के एगो अवसर है वो लोग के सम्मान करे के श्रद्धा तर्पण करे के समय माना जा रहा ये आमतौर पर भादव कुंवर महीना के कृष्ण पक्ष में पड़ेगा लगभग 15 दिन चलेगा और इस समय ये लोग मानेगा कि पितर लोग के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता और स्मरण विशेष रूप से करल जला अब भाई श्रद्धा कौन सी श्राद्ध कौन सी है श्राद्ध शब्द के संबंध में श्रद्धा से माना जला मतलब अपन पूर्वज लोग के प्रति श्रद्धा या सम्मान के कई गए धार्मिक कर्म श्राद्ध में परिवार के लोग अपन परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार पितर लोग के नाम के तर्पण करे रहस पिंड दान जबकि पिंडा बोली जा सर पिंडा देवे रहस भोजन बना के ब्राह्मण साधु संत जरूरतमंद और अतिथि के भोजन करावे जा कौवा गाय कुत्ता आदि जीव जंतु के भोजन देवे के परंपरा भी होला पूर्वज लोग के याद करके प्रार्थना करी रहा सर और तर्पण कौन का होला ऊ तर्पण में जल तिल आदि अर्पित करके पितर लोग के स्मरण करल जला जितने हम के परिवार गुजर कर बा उन लोग के एक लोटा जल जब नहा रहा सर एक लोटा जल चढ़ाए रहा सर परिवार के लोग अपन पितर के नाम लेके श्रद्धा से जल अर्पित करेगा लोक परंपरा में माना जला कि ऐसे पितर लोग के शांति मिलेगा और परिवार पर

आशीर्वाद रहेगा। पिंडदान में आमतौर पर चावल, तिल और जौ आदि से बनल पिंड पितर लोग के समर्पित करी रजा। अलग अलग क्षेत्र या परिवार में पिंड के विधि अलग हो सकेला। और पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि सर्वप्रीत अमावस्या में पितृपक्ष के अंतिम दिन के सर्वप्रीत अमावस्या कहल जाला। और भोजपुरी समाज में इस दिन की खास महत्व बा। अब जेकर परिवार में केवल पितर की मृत्यु तिथि ठीक से मालूम ना हो के उनकर श्राद्ध कई परंपरा में एक दिन कल जाला, इस कारण से दिन उन सभी पितर लोग के सामूहिक स्मरण के दिन के रूप में देखा जाला। और पितृपक्ष में का करे के चाहें, परंपरा के अनुसार लोग इस समय पूर्वज लोग की श्रद्धा से याद करेला, तर्पण और श्राद्ध अपन कुल परंपरा के अनुसार करेलन से जरूरतमंद लोग के दान पुण्य करेला जा। परिवार में आपसी प्रेम और सम्मान बनल रहेला। पूर्वज लोग से जुड़ल संस्कार या पारिवारिक इतिहास के अगला पीढ़ी के बतावेला। और का न करे के परंपरा बा, कई हिंदू परंपरा में पितृपक्ष के समय शुभ मांगलिक काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि टाले की परंपरा बा। हालांकि इन नियम क्षेत्र, जाति, पारिवारिक परंपरा और संप्रदाय के अनुसार अलग अलग बा। और पितृपक्ष के असली संदेश कौन सी है, तो पितृपक्ष यानी कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड के रूप में ना दिखल जला, कृतज्ञता और स्मृति के पर्व के रूप में भी समझल जाला। जे लोग हमने से पहले परिवार या समाज खातिर मेहनत करके उनकर योगदान के याद करेला, अगला पीढ़ी तक पहुँचावेला, तो पितृपक्ष उस समय है जब हम अपन पुरखन लोग के याद करी राजा, ओकर प्रति श्रद्धा जताए राजा, तर्पण श्राद्ध करी राजा और माना जला कि वो लोग के आशीर्वाद हम के साथ रहे। तभी जैसे पितृपक्ष बा, त जब स्नान करवा त भूले न एक लोटा जल हमने के पितर लोग के नाम अवश्य दिया जा। रात के 9:50 होता हमने के साथ देवत हुआ रेडियो मर्चेंट्स रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम। और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे रे ठाकुर प्रशांत के होगी। चलिए भी मौसम खराब बा, अभी मौसम तो बढ़िए ठीक बा यहाँ पर ही, पर गीतवा के टाटल ऐसा बा। और एक गीत चलिए शोभा जी के नाम हेलो, और जोसेफ भी हमने के साथ देवत हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। गौरंगा हरे कृष्णा प्रभु राधे राधे है गीत तौर खातिर। गौरंगा तोहर सब परिवार के नाम। प्रियापुरन है गीत तौर खातिर। श्याम मंगल कैसे भाई श्याम सब ठीक ठाक। माधुरी सकीना जफर अली और है गीत चलावत ऐसा लवना के नाम। फिर है गीत चली हंसले जोसेफ के नाम। मोहानी रामरोच हंसले जोसेफ और एक गीत चरावती सब सब श्रोता लोग के नाम जो कोशिश करता तोरा लाइन नाम ही रहता, तो कोई बात नहीं आओ हमने के टिकटॉक पेज पर और हमने के सकबा SMS करे, कॉल नहीं करिया SMS करिया। सुना गीत प्यारा संगीत ठाकुर प्रसन्न की आवाज़ में मौसम खराब भा।

0: Continuous music. RM3.
1: Heat enter the 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
4: रात के 10:03 होता है। तू सुनाते हुआ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन MBC के दोनों रेडियो चैनल है और तो लोग चकाचक कार्यक्रम चलाता है प्रोग्राम भोजपुरी तड़का और जी प्रताप सिंह सीतालू के साथ रात के 11 बजे ली। और बेशक टिकटॉक पर भी हमने के प्रसारण सकत हो हमने के देखे टिकटॉक पर टेलीफोन ने करिया वीडियो कॉल ने करिया टिकटॉक पर जो है सकबा हमने के देखे और गीत मांगे बेशक टिकटॉक पर तो गीत नहीं मांगे लाइव वीडियो कॉल नहीं करिया टिकटॉक पेज पर बस हमने के सकबा देखे और गीत की फरमाइश करे ठीक बा। तो चला अगला गीत चला बुझावन हम बोलीला और गीत है राजकुमार चिंतामणि जो है गीत गैली हवन बहुत बहुत प्यार के साथ बुझावल और है गीत हमने राजकुमार चिंतामणि के आवाज़ में गीत चली उदय दहीराम के नाम उकर पत्नी उकर लड़का सब उकर परिवार के नाम केशव अभिलक है गीत और नाम अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार के जीपस से किशन गुड़िया प्रीतम राज मिला है गीत और नाम पूनम और विशाल भैरव पोज दे फ्लाक से हवन है गीत और खातिर भी चरावत और है गीत चली MGI कॉलेज जिन मुकाम सीधा हुआ के एक्स अध्यापक लोग के नाम मिसेज बंधन मिसेज जमन मिसेज ओकल मिसेज रघुबर मिस्टर कितारत मिस्टर रामफल और सब जो एक्स अध्यापक लोग रन जा लोग खातिर और है गीत चरावत बुझावल के गीत राजकुमार चिंतामणि के गावल गीत चलावती सा सब की संगतियालों के नाम जो हम की लिखा था टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर और जितना को हम की सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर देवयानु जादू

दुनिया में तू कोई से कोनो उम्मीद ना रखिया। अगर तू कोई की सहायता करी चाहत हो देखत हो तुम्हें कैपेसिटी बा सामर्थ्य बा कर मदद करे के सहायता करे के तो सहायता जरूर करिए, पर ओकर बदले में कोनो भी उम्मीद नहीं रखिया। नेकी कर दरिया में डाल है, नेकी कर दरिया में डाल। और बेशक यहाँ पर है सामने तुमके साथ देखा थे रात के 11 बजे अगला गीत खाली पीले जिले भैया जिंदगी में काबा। और गीतवा खासम खास चलावा दी सब श्रोताओं के नाम देवयानी जादू दावेद दीक्षा बीना देवीन नातीश शीला और उजुहनी फिर अमदुसाई मुजाहिद एआजो देविका बटन मुमुन जी और मिला प्रिंस आशा तिलाना और धर्म सुनीता सुब्राय जय प्रियंका राय योको देवी अनवर उमा फुलचंद विदुला जारा माया रामदोस श्याम मंगल दिशा दुकोरन ललिता ललिता और मेधा रामचंद सुरेश महातो स्वीट एंजल बेनी मोहम्मद शाहरुख मालिनी विश्राम गीत तोरो राम बहुत बहुत प्यार के साथ सुनीता जी शिरीन रामजन और क्रिस्टाबेल दयाना फिर दया भाई दया जी कैसे बस समाचार रनिता पे अतब हरिदेव राम जी और सब राम जी परिवार के नाम। और जितना कोई हमने के देखा था टिकटॉक पेज पर जितना कोई रेडियो पर सुना था अगला गीत के नाम खाली पीले चिरे भैया जिंदगी में काबा।

और आजकल की दुनिया में जिए खातिर चेहला सब कोई के पढ़ लिखल रहे के इट्स ए मस्ट, बहुत जरूरी है पढ़ लिख रहे के। अब जो व्यक्ति के कबो मौका नहीं मिलल बा पढ़े के लिखे के, और अगर देखा तो 40-50 साल हो गए बा और तुम्हारा मन बा पढ़े के, तो जरूर सब प्राइवेट ट्यूशन के पढ़े। और पढ़ाई के कोनो उम्र नहीं रहले, आदमी लोग 100 साल तक ले पढ़ते रहे राजा। पढ़ाई की कोनो उम्र नहीं बा, कोनो सीमा नहीं बा, जब भी तोरा मन करी पढ़े के सब पढ़े। गर्मी के जहाँ जाने के पढ़े लिखे के, अपन नाम कैसे लिखल जला, और कहूँ लाभों जीब तो कैसे गो कगो फीस बॉन्ग भरल जला, कैसे पैसा निकाले के, कैसे पैसा रखे के, तो चाहे आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है पढ़ा लिखल रहे के, हाँ कि नहीं। तो अगला गाना जो है अल्लाह दे हमर झुमका ऋषिराज रामफल गैले वन, और है गीता चरावती से इस सब संगतियारों के नाम फैजाल को दिए, फिर वीना जी, रेशमा लक्ष्मण, इंद्रा, साधना चमन, यलो धर्मरिया, तनुजा देवी, रघु, आरती जंधु, सदना लुलुआ, सीता, फरी लक्ष्मी, और जतादेन मीला। फरी लक्ष्मी की ओर से गीत चाहिए नाना सुभाष, और उनकी ग्रांड डॉटर जानशी के नाम भी। धनराज चेतू, मिकाइल सुपेर, जूलियस, और ईगल, छविलाल, भावना है गीत और नाम सुनी, मनीलाल जुमंगो है गीत और नाम जया। तो जितना कोई टिकटॉक पर हमने के लिखा था और हमने के लाइव के शेयर करा था, हमने से संपर्क रखा था उनसे, जितना कोई रेडियो पर हवन जाओ लोग खातिर भी अगला गीत चलावते स। और है गीत चली जी हाँ, सरिता की ओर से कर घरोला, कर सब बैजू परिवार के नाम, बैजू परिवार, बाशेरी और बांका परिवार, लाफलोगा, एंजल एंजल गीत तौर नाम वंदना।

तो कब अपन आपसे पूछते हवा कि तू एगो अच्छा इंसान हवा कि नहीं। एगो अच्छा इंसान रब त सब कोई तोरा प्यार करी, सब कोई तोरा चाही, सब कोई तोरा संगे रही। पर बुरा इंसान रब त कोई भी तोरा खुशी नहीं रही। तो जान ही सकब एगो अच्छा इंसान बनिया और अच्छा इंसान होने के नाते इंसानियत नहीं भैया। अगला गीत बोल दे कौन सी बात और मन में नीरज कुमार धुकी तो गए वन और गीत चली लिंस के नाम लिंस, गीत चली मिहिर गुडाल के नाम। और आज जन्मदिन बामा सुनीता के त बधाई और प्यार यूजर 8743 की ओर से। और सही गीत चली सीता मोती।

फिर दया, दया जी के नाम राजन हमने के साथ वन राम हेम्स एन ऋषि शिवमय मनीषा राजन सजवन सुमन थापा वंदना शैलोक और हैचरी पूजा जी के नाम पूजा की ओर से कर पिताजी कर माताजी और कर सब परिवार के नाम सविता लक्ष्मण नमस्ते सुस्वागतम गीतों खातिर पूनम और अजय चिंताराम श्रेया सेवन और सब चिंताराम परिवार मॉरिशस में जानकी परिवार गुडलैंड में और इंदिरा चिंताराम के ओर से कर बेटा अजय बहु पूनम चीज़ों फल खातिर भी और जितना चिंताराम परिवार बा किरण घूरा है गीत तोहरो नाम और हेलो शाह नमस्ते चरा है गीत तोहरो नाम चलावती सर बोल दे कौन सी बा तोर मन में और अगर मन में कौन सी बा ये जाने की मुश्किल बा पर अगर मन में अच्छा बात हुई तो अच्छा है मन में बुरा बात हुई तो बुरा बात के साथ निकाल दे कि मन में छेला हमेशा अच्छा अच्छा बात रखे के

संगे तालोग विजय सुगनपत गावल है गीत के संगे भोजपुरी तर का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था और चार मिनट में रात के 11 बज जाए, 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए। रात के 9 बजे से अभी हम के साथ रह जाए। टिकटॉक पेज पर हमने देख ला रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर सुन ला तो लोग ऐसे में सर फोन कॉल का जी शुक्रिया। हमने के तो लोग की मुलाकात हुई अब शाम के फजर के 6 बजे से 9 बजे ले MBC रेडियो मॉरिशस पर। तो और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दें और जय प्रताप सिंह सितारु की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनेशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस ज़रा थाम लीजिए और दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफ़र लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाज़ें ऐसे होती है ना जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। वो गीत जो हमारे माँ बाप ने गुनगुनाए होंगे किसी ज़माने में, जो हमने बचपन में रेडियो पर सुने और जो आज भी दिल को उतने ही सुकून देते हैं। आज की ही रात उन्हीं अनमोल नगमों के नाम हैं। अगर आप कहीं सफ़र में हैं, घर पर हैं या काम पर हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर लीजिए।

हर गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उससे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी के जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहां भी हैं बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन

MBC Radio 24 hours a day. You're listening RM Free Radio.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।

0: हैं। रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Welcome to Mauritius.
4: Namaskar.
5: ஸ்ரோதரந்திருக்கி ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
7: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी

फूल कार्ड अंगूठी रुमाल देते हैं, ये पढ़ा और सुना था। पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस

0: MBC Radio, your music companion.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।